सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 50 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, राम नाम का आश्रय लिए बिना जो लोग मोक्ष की आशा करते हैं अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों परमार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे मानो बरसते हुए बादलों की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ जाना चाहते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार पानी की बूंदों को पकड़कर कोई भी आकाश में नहीं चढ़ सकता, वैसे ही राम नाम के बिना कोई भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता।

कृपा करो मुझ पर हे प्रभु, जीवन भर मैं करूं तुम्हें प्रणाम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आइए अब सुमिरन करते हैं बजरंग बली को।

हे प्रभु, ऐसी कृपा करें कि हम सब आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहें और हमें आपकी भक्ति का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे।

ईश्वर सत्य है, जीवन का प्रकाश है और हर मुश्किल से हमारा सबसे बड़ा आसरा है। वही हमें हर मुश्किल से निकालने वाला है और हमें सद्बुद्धि देने वाला है। आइए हम सुमिरन करते हैं उस परमपिता परमेश्वर को।

हनुमान जी की हर सांस और हर रोम में केवल श्री राम का नाम बसता है। जब वे राम की पूजा करते हैं तो संसार की हर मोहमाया को भूलकर प्रभु के चरणों में खो जाते हैं। उनकी आंखें प्रेम और भक्ति के आंसुओं से भर जाती हैं और उनका मन पूरी तरह शांत रहता है। वे अपने हृदय में राम सीता की छवि बसाकर निरंतर उनकी सेवा करते हैं।

राम नाम का सुमिरन करके ध्याते हैं छवि प्यारी, दास हनुमान झुकाकर मस्तक करते पूजा न्यारी, हृदय चीर कर दिखा दिया है राम बसे हैं अंदर, ऐसा भक्त न कोई दूजा इस पूरी दुनिया के अंदर। आइए हम भी सुमिरन करते हैं हनुमान जी को।

0: अनुराधा पौडवाल और साथियों के गाए इस भजन के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर है श्रीकांत पारगांवकर के और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड नंबर 245 245।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर थे श्रीकांत पारगांवकर के, संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन, अहंकार तो मिथ्या है।
1: अहंकार तो मिथ्या है, उसे जानना होगा। ये तभी संभव है जब मनुष्य सभी में परम पुरुष के अंश को पहचान ले। इससे हिंसा, द्वेष, लालच, ये सभी दुर्भावनाएं स्वतः ही न्यून हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है कि सृष्टि के सभी छोटे बड़े परमाणु स्वतंत्र होते हुए भी आपस में इस तरह बंधे हुए हैं कि वे एक ही वस्तु के बन गए हैं। अनेकता में एकता ही विश्व का रहस्य है। इस विश्व रहस्य का ज्ञान ऐहिक जीवन का चरम उद्देश्य है। भिन्न भिन्न धर्म पृथक होकर भी एक समन्वय स्वरूप विश्व धर्म की पुष्टि करते हैं। मां आनंदमयी कहती हैं कि ईश्वर के साथ मनुष्य की चिरंतन एकता है, वो कभी टूटती नहीं है। लेकिन मनुष्य बाहर की ओर देखता है, भीतर की ओर नहीं, तभी उसे एकता की अनुभूति प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि भौतिक उपलब्धि ही सब कुछ नहीं है। जब तक मनुष्य में दिव्य दृष्टि नहीं होती, उसका जीवन एक मशीन के समान है। मनुष्य के भीतर एक आत्मा है, जो इस आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता, उसका जीना व्यर्थ है। यदि हम अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हुए अपनी समस्याओं को शांति और सद्भावना के साथ सुलझा लेते हैं, तो यही हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि प्रेम के रूप में ईश्वर की उपलब्धि ही भक्ति है। वह प्रेमानुभूति वासना या आसक्ति के रहते नहीं प्राप्त हो सकती। उसी तरह एकत्व की अनुभूति और आत्मस्वरूप का दर्शन ही ज्ञान है, और ये ज्ञान अहम बुद्धि के रहते संभव नहीं है। वस्तुतः भक्ति एवं ज्ञान एक ही है। मन को एकाग्र चित्त कर ध्यान करने के लिए किसी विषय का आधार आवश्यक है। बाहरी अवलंबन तो मन को स्थिर करने के लिए है। भाग्य पर भरोसा, ये तो मृत्यु के चिन्ह है। कायरता की पराकाष्ठा और क्या होगी। कर्म को ही तपस्या का अंग मानना चाहिए। दूसरों के कल्याणार्थ कर्म के फल से मन का टेढ़ापन भी सीधा हो जाता है, और वो मनुष्य निष्कपटता में औरों के मंगल के लिए प्राण भी देने को तत्पर हो जाता है। तभी अनेकता में एकता का आभास प्राप्त होता है। दूसरों का कल्याण ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। जाति पाति का मिथ्या अभिमान ही हमें उद्यमशील नहीं बना पाता है। शिक्षा के व्यापक प्रसार से ही अंधविश्वास और अज्ञानता दूर की जा सकती है। धर्म, अंधविश्वास, अतिशय भावुकता से मुक्त होना चाहिए। बौद्धिकता एवं करुणा का अपूर्व समन्वय ही उच्च दर्शन है। हम सभी आपस में प्रेम से रहें, यही उचित है। परंतु आत्मीयता के अभाव में पारस्परिक प्रेम उत्पन्न होने में संशय है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि संस्कृति मनुष्य के विकास में अधिक सहायक होती है। देश के विकास में अपने रचनात्मक कार्यों का सहयोग दें, तभी हम अपनी एकता को पहचान पाएंगे।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत रचना देवी का काव्य पाठ।
2: आज मित्रों, जिस तरह की हमारे समाज की स्थिति हो रही है, हमारी मानसिकता हो रही है, तो मुझे लगता है कि वेद चतुष्टयी अपना अर्थ खो चुकी है, तो ऐसे में आवश्यकता है एक पंचम वेद की। तो ये पंचम वेद कहाँ से रचा जा रहा है, कौन इसका रचयिता है, मैं अपनी एक कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पंचम वेद, सुनिएगा। सुनो मेरी प्राण, मैं देख रही हूँ उसे, उसके सधे हुए हाथों को, जो रच रहे हैं जीवन एक कोरी पुस्तिका पर बहुत सधे ढंग से। प्रथम पृष्ठ पर वह उकेरती है एक स्वस्तिक का चिन्ह, जिस पर धरा है सरस जल भरा आम्र पत्रों से सुशोभित कुमकुम रंजित मिट्टी का मंगल कलश, और दूसरे पृष्ठ पर हल्दी से रंगे दो कोमल हाथों की छाप है, जो सूनी दीवारों पर सलीके से अंकित की गई है। तीसरे पृष्ठ पर हैं आलता और मेहंदी से रचे दो पांव, जिनमें झनकती है चांदी की पायल, लजाती बिछिया और रुनक झुनक की मधुर ध्वनि। आगे के पृष्ठ पर देखती हूं एक सुखद दृश्य, रसोई में बन रहा है महाप्रसाद, जिसके भोग को स्वर्ग के देवता भी द्वार पर प्रतीक्षारत हैं। इसकी हर पंक्ति हर चित्र प्रेम और करुणा से रंगा एक जीवंत कथानक है। अंतिम पृष्ठ पर किसी गहरे घाव पर हौले से फूंक मारते चित्रित हैं दो निष्प्रह अधर। इसकी लिपि है चित्रों की लिपि, इसकी भाषा है मौन की भाषा, इसका निघंटु है अनुराग का बोधक, इसकी अनुभूति कैवल्य की अनुभूति। यह हृदय से हृदय को संप्रेषित होगा, यह बांचने का नहीं समझने का शास्त्र है। मेरी प्राण जाओ कह दो वेदों के रचयिताओं से, मधुछंदा अथर्वा ऋचाओं के ऋषियों से, कि हो जाएं सावधान, संसार में पंचम वेद रचा जा रहा है और उसकी रचयिता है एक अनपढ़ स्त्री। हाँ मेरी प्राण, अब वही स्त्री रचेगी पांचवा वेद। सुन रही हो न तुम, संसार में पंचम वेद रचा जा रहा है, संसार में पंचम वेद रचा जा रहा है। मित्रों, प्रेम का मार्ग बहुत सुंदर है, इस पर चलना हर किसी का भाग्य नहीं होता, बड़े बड़े सौभाग्यशालियों को ही ये प्रेम के मार्ग पर चलने का अवसर मिलता है, और इस मार्ग पर चलते हुए अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें उन बाधाओं से भयभीत हुए बिना इस मार्ग पर अनवरत चलना है। ऐसी ही सीख देती हुई मेरी एक अगली छंदमुक्त कविता सुनिएगा। सुनो मेरी प्राण, निंदंतु नीति निपुणः, इस संसार में कुछ नीति कुशल और चतुर्जन निंदा करेंगे तुम्हारी, स्तुवंतु वा, अथवा हो सकता है स्तुति भी करें कुछ तुम्हारी, पर तुम्हें चलना है अविचलित प्रेम के मार्ग पर, ठीक उसी तरह जैसे चलते हैं धैर्यशाली, एक पग भी विचलित हुए बिना न्याय के मार्ग पर, न्यायात पथे पदम न प्रविचलंती धीरः। हाँ मेरी प्राण, तुम्हें चलना है, क्योंकि प्रेमिका हो तुम, तुम्हें चलना होगा अंतिम श्वास अंतिम क्षण तक, चाहे वह क्षण आज ही आए या युगों के बाद आए। अद्यैव वामर नमस्तु युगांतरे वा, सुन रही हो न प्राण, तुम्हें चलना होगा, तुम्हें चलना होगा। आइए मित्रों, आपको कुछ दोहों से जोड़ती हूँ, श्रृंगार के दोहे हैं, श्रृंगार के बिल्कुल सर्वथा नए और कोमल से कुछ बिंबों के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। सुनिएगा पहला दोहा। सुघड़ सुकटी मृग गामिनी, श्वास मदिर मकरंद, अंग अंग से झर रहे मधुशाला के छंद। सुघड़ सुकटी मृग गामिनी, श्वास मदिर मकरंद, अंग अंग से झर रहे मधुशाला के छंद। और अगला दोहा सुनिएगा। वदन मत मधुज्वाल सा दृग साकी लबजाम, रुचिर रुबाई बैन है सुने चकित खयाम। मधु मकरंद सुमन भरा पुलकित है हर पात, मधु मकरंद सुमन भरा पुलकित है हर पात, मत वल्लिका चूमती नवल तरु का गात। और अगला दोहा सुनिएगा। संदल सांसों में घुला झरे नैन से नह, संदल सांसों में घुला झरे नैन से नह, मेघ दूत मानस हुआ शाकुंतल सी देहे। और यदि कोई कवि अपनी प्रिया के उपमान दे, अंगों के उपमान दे, तो वो कैसे उपमान देगा, सुनिएगा। कि काव्य कला सी कामिनी, छंद रसी ले बैन, अधर सवैया से लगे दोहे दोनों।

0: अधर सवैया से लगे दोहे दोनों नैन। आइए मित्रों कुछ मुक्तक आपके समक्ष रखती हूं, चार पंक्तियां सुनिएगा। पद साकार सूर सागर के ये मानस की चौपाई हैं, सरस्वल्लिका घनानंद की कामलता सी लहराई हैं। पद साकार सूर सागर के ये मानस की चौपाई हैं, सरस्वल्लिका घनानंद की कामलता सी लहराई हैं। और दृग द्वार धैर्य से यूं खुलते जैसे पृष्ठ खुले सतसैया के, वे दो आंखें क्या हैं रचना, वे दो आंखें क्या हैं रचना, श्लाघित विधि की कविताई हैं, श्लाघित विधि की कविताई हैं। और देखेगा चार पंक्तियां और। जड़ भावों में जीवन का संवेदन ढूंढ रही हूं, जड़ भावों में जीवन का संवेदन ढूंढ रही हूं, अदृश्यता के गोपन में कुछ दर्शन ढूंढ रही हूं। और स्मृति शेष अभी तक जिसकी शुचिकर तल पर मेरे, स्मृति शेष अभी तक जिसकी शुचिकर तल पर मेरे, रचना इन फूलों में मैं वही छुअन ढूंढ रही हूं, रचना इन फूलों में मैं वही छुअन ढूंढ रही हूं। और जब मन प्रेम को स्वीकार कर लेता है, प्रेम में पूरी तरह से डूब जाता है, तब मन की दशा क्या होती है, चार पंक्तियों में देखेगा कि मिटे अमंगल सारे अब जीवन में शुभ मंगल है, मिटे अमंगल सारे अब जीवन में शुभ मंगल है, द्वंद्व सभी दूर हुए हैं, शांत हृदय की हलचल है। और प्यार भरी एक छुअन ने कुछ ऐसे बदला मुझको, प्यार भरी एक छुअन ने कुछ ऐसे बदला मुझको, पात अनादृत विजया का रचना अब तुलसी दल है, पात अनादृत विजया का रचना अब तुलसी दल है। और इसी छुअन का चमत्कार और चार पंक्तियों में देखिएगा कि अनादृत घूंट विष का सोम कर डाला, दिया विस्तार रजकण को व्योम कर डाला, अनादृत घूंट विष का सोम कर डाला, दिया विस्तार रजकण को व्योम कर डाला। और शिला थी एक मैं निष्प्राण पाहन की, शिला थी एक मैं निष्प्राण पाहन की, छुआ तुमने मुझे जब मोम कर डाला, छुआ तुमने मुझे जब मोम कर डाला। और चार पंक्तियां देखेगा। नैन उमगी सलिल धार जब झिलमिली, अश्रु सिंचित प्रणय वल्लिका फिर खिली। और मंत्र जैसे जपा आपके नाम को, मंत्र जैसे जपा आपके नाम को, प्रीत में सिद्धि रचना मुझे तब मिली, प्रीत में सिद्धि रचना मुझे तब मिली। लेकिन ये मन का बांधना बड़ा कठिन है, ये मन किस तरह से बंधता है, चार पंक्तियों में सुनिएगा कि दुष्कर मन का निग्रह रचना तुम कैसे इसको बांधोगे, दुष्कर मन का निग्रह रचना तुम कैसे इसको बांधोगे, अंबर अवनी अंबु अनल अनिल किन सीमाओं में आकोगे। और शब्द गंध रस रूप स्पर्श हैं इंद्रिय गोचर विषय विषम, ये आकर्ष भूत लिपि अनुभव की वाणी से कैसे बांचोगे, वाणी से कैसे बांचोगे। चलिए मित्रों आपको एक गीत से जोड़ती हूँ। कभी कभी मन यूं ही उदास हो जाया करता है, कोई सूत्र हमारे हाथ नहीं आता, तो इसी उदासी के सूत्र को मैंने खोजने का प्रयास किया है इस गीत में। अन मनासा आज मन है, वे वजह घिरती उदासी, कोर पलकों की छलकती, कंठ भी अवरुद्ध सा है, सांस जैसे अटकती, रिक्त कर ले सोचती हूँ, जो लुटा है कौन धन है, अन मनासा आज मन है। बात एक ठहरी अधर पर, यों व्यथित सी कप कपाती, फूल को छू कर लहर ज्यों ले हताशा लौट जाती, धड़कनों में शोर मचता, मौनमय अंतःकरण है, अन मनासा आज मन है। रंग धुंधले हैं क्षितिज के, सांझ थक कर ढल रही है, मूंद दृग सोता विहग दल, दीपिका थिर जल रही है, कैद पलकों में टूटते नित, नव सुहाने से सपन है, अन मनासा आज मन है। भूल मत तू सत्य अपना, आत्मधन अनमोल मन का, विश्व क्रीड़ा का पटल यह है न शाश्वत मेल तन का, मोह का तज भार दे।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य धारा के अंतर्गत रचना देवी का काव्य पाठ, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:55 हो रहे हैं, अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार।
2: सूर्यंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवकूटनीतिज्ञान् स्वनियुक्ति देशेषु जनस्तरे दृढसम्पर्कं स्थापयितुं तथा स्थानीय समुदायैः सह भारतस्य सम्बन्धान् अधिकं सुदृढीकर्तुं च प्रेरितवान्। सेवातीर्थे भारतीय विदेश सेवायाः गतवर्षीय समूहस्य प्रशिक्षु अधिकारिभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी तान् पारम्परिक कूटनीतिक वृत्तेः परे स्वसंपर्क जालस्य विस्तारं कर्तुं अथ जनैः सह संपर्कं च सुदृढीकर्तुं प्रोत्साहितवान्। असौ भारतस्य रिक्त सम्बद्ध शक्तीनां प्रौद्योगिक्या नवोन्मेषेण प्रभावी सम्प्रेषणेन च सह संयोजनं कृत्वा भारतस्य वैश्विक सम्पर्कं अधिकं सुदृढीकर्तुं प्रेरितवान्। असौ भारतीयोपक्रमाणाम् अंकीयोपस्थितिं सुदृढीकर्तुं महत्त्वमपि प्रतिपादितवान्। विश्वस्य युवकेषु भारतं प्रति अधिक रुचिं जनयितुं भारत को जानिए इत्येतस्य प्रश्नोत्तर कार्यक्रमस्य उपयोगस्य असौ परामर्शं प्रदत्तवान्। प्रशिक्षु अधिकारिभिः स्वप्रशिक्षणस्य भारत दर्शनस्य च अनुभवाः अभिव्यक्ताः। अस्मिन् समूहे देशस्य विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च आगताः 50 भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षुअधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सर्वेभ्यः संस्थानेभ्यः अन्तः प्रवेशस्य विरुद्धं कठोर पदक्षेपानि स्वीकर्तुं निर्देशं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् ऐषमः नवम राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीशाहः निर्देशितवान् यत् बहुसंस्थान केन्द्रस्य मञ्चे उपलब्धानां सूचनानां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः आधारेण विश्लेषणं करणीयं येन विविध राष्ट्रिय सुरक्षाह्वानानां प्रतिकाराय मानक संचालन प्रक्रियाः निर्मातुं शक्यन्ते। सम्मेलनस्य प्रथमदिने राष्ट्रिय सुरक्षायाः महत्वपूर्णेषु पक्षेषु चर्चा अभवत्। तेषु आतंकवाद विरोधी आह्वानानां प्रतिकारः बहुसंस्थान केन्द्र माध्यमेन गुप्त सूचनानां एकीकरणं विश्लेषणं कार्यान्वयनं च मादक द्रव्याणां नियन्त्रण सम्बद्ध दृष्टिपत्रम् अवैध प्रवासिनां परिचयः निर्वासनं च तथा तेषां प्रतिकाराय नीति निर्माणम् इत्यादयः विषयाः सम्मिलिताः आसन्। विदेश मन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः क्रेमलिन इत्यत्र रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। उपवेशने द्विपक्षीय व्यापारः आर्थिक सहयोगः अथ आगामि उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि चेत्यादिषु विषयेषु चर्चा अभवत्। रूस स्थितः भारतस्य राजदूतः विनय कुमारः एवञ्च संयुक्त सचिवः मयंक सिंहः अपि भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य सदस्यौ आस्ताम्।
1: सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने उन्हें पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। दो दिन की इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधान

0: विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। टोरंटो में अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपानियो के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद में भाग लेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। इसमें शिक्षण संस्थानों में खेलों को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने और युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने पर बल दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान SLR, राइफल, बीजल लॉन्चर और थूथन लोडिंग बंदूकों सहित 23 हथियार बरामद किए गए। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत जानकारी। विषय है जल ही जीवन का आधार है।
2: हजारों वर्षों के अनुभव के आधार पर भारतीय शास्त्रकारों का ये कथन सर्वथा सत्य है। शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्या नारायणो हरि, अर्थात वृद्धावस्था से जर्जर या रोगग्रस्त शरीर के लिए जल ही औषधि है और ईश्वर ही वैद्य है। हमारे शरीर के असंख्य सेलों में जल भरा हुआ है। कोई सेल नहीं, कोई तंतु नहीं जहां जल का कुछ न कुछ अंश न हो। शरीर में प्रोटीन, वसा और कार्बोस के ऑक्सीकरण से जल उत्पन्न होता है। रक्त और लसिका का अधिक भाग जल ही होता है। हमारे शरीर की रचना में जल की विपुलता है। शरीर के वजन का 2/3 भाग जल तथा केवल 1/3 भाग ठोस है। दांत शरीर का सबसे ठोस पदार्थ कहा जा सकता है, उसमें भी 10% जल का अंश है। शरीर के अन्य भागों की हड्डियों में 14% से अधिक जलीय अंश है। सारांश ये है कि 120 पाउंड वजन वाले शरीर में 80 पाउंड जल होता है। मनुष्य की आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के जलीय अंश में किंचित कमी और ठोस अंश में थोड़ी वृद्धि होने लगती है। मानव जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक जल को इसीलिए प्रकृति ने इतना सुलभ कर दिया है कि वो हर प्राणी के लिए सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सके। जल में पुराने और अनुवांशिक रोग तक को दूर करने का सामर्थ्य है। इस प्रकार हमारे शरीर को एक जटिल जल प्रणाली भी

0: भा जा सकता है। छोटी और बड़ी कई प्रकार की नलिकाओं में से एक अंश से दूसरे अंश में भिन्न भिन्न प्रकार के तरल पदार्थ प्रतिक्षण दौरा करते रहते हैं। प्रकृति शरीर के प्रत्येक तंतु को जो खाद्य परोसती या पहुंचाती है, जल ही उसका वाहन है। शरीर का प्रत्येक शुद्धतम कोश भी सर्वदा पानी से धुलता रहता है। शरीर में रस की समता को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पानी के पर्याप्त मात्रा का सेवन करना चाहिए। यदि हम ऐसा ना करें तो प्रकृति खून, मांसपेशी और शरीर के विभिन्न तंतुओं से जलीय अंश लेने के लिए बाध्य होता है। उसके फल स्वरूप प्यास बढ़ती है, आंखें बैठ जाती हैं, होंठ और जीभ सूख जाता है, मल कड़ा हो जाता है, वजन घट जाता है, त्वचा शुष्क व सिकुड़ जाती है और उसके बाद रक्त प्रवाह बंद होने से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। शरीर में जल का अभाव होने से शरीर के अंदर अम्ल और क्षार के अनुपात में भी परिवर्तन आता है और कभी कभी शरीर का ताप बढ़ जाता है। गर्म देशों में काम करने वाले लोग यदि प्यास के अतिरिक्त पानी ना पिए तो उनकी कार्य शक्ति नष्ट हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और सिर घूमना, अवसाद तथा श्वास कष्ट आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अंत में जीवन शक्ति का क्षय भी हो सकता है। साधारण पेयजल जब पेट में पहुंचता है तो पीने वाले के स्वभाव अनुसार कभी जल्दी कभी देर में शरीर कणों में समाता है और उनके संपर्क में देर तक रहने से धुलाई का काम भी करता है। पीने पर तुरंत ही अन्य मार्ग से होकर वो आमाशय में पहुंचता है और पाचन क्रिया पर प्रभाव भी डालता है। पानी पीने से मूत्राशय किडनी का कार्य भी सुचारू रूप से होता है। साथ ही शरीर की भिन्न भिन्न रस स्रावी ग्रंथियों का स्राव ठीक से होता है। विशेषज्ञों के अनुसार पर्याप्त पानी पीने से हृदय और त्वचा आदि शरीर के समस्त यंत्रों की कार्य क्षमता बढ़ती है तथा रक्त साफ होकर सारे शरीर में सुचारू रूप से संचालित होता है। तंदुरुस्त रहने के लिए हर एक मनुष्य को 24 घंटे में 3 लीटर पानी या प्रवाही द्रव्य की आवश्यकता है। पीने का पानी हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। हर रोज 2-3 लीटर पानी पीने से मूत्र के द्वारा दूषित पदार्थ बाहर निकल जाता है। ये स्वास्थ्य रक्षा का एक प्रधान उपाय भी है।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी। जल ही जीवन का आधार है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत धान की फसल रोग व कीट नियंत्रक विषय पर जानकारी।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं धान की फसल में रोग व कीट नियंत्रण। किसान भाइयों, धान की फसल हमारे खेत में खड़ी है और जो हमारी अगेती फसल है वो गर्भावस्था में आने वाली है, साथ ही जो हमारी पछेती फसल है वो भी इस समय उसमें कल्ले फूट रहे हैं और कल्ले फूटने की अवस्था में है। तो किसान भाइयों, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं और हमें सही तरीके से अपनी धान की फसल की देखभाल करनी है। किसान भाइयों, हम देखते हैं कि हमारे धान की फसल में कुछ कीट और बीमारियाँ लगती हैं, तो अपनी फसल को कीटों और बीमारियों से बचाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए किसान भाइयों, संतुलित उर्वरक का प्रयोग, समय समय पर खेत की निगरानी और लक्षण देखते ही उचित कीटनाशक या फफूंदनाशक का इस्तेमाल करके हम बीमारियों से बचा सकते हैं। साथ ही जो कीट लगते हैं, अगर हमें सही समय पर जानकारी हो जाती है तो उसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे धान की फसल में कौन से मुख्य कीट हैं जो कि नुकसान पहुँचाते हैं। तो सबसे पहला कीट होता है तनाछेदक, इसे स्टैम बोरर के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी सूंडी अंदर से तने को खा जाती है जिससे पौधे की बालियां सफ़ेद और सूख जाती हैं। सबसे पहले ये हमें इसकी तितली दिखाई देती है जो कि हमारी पत्तियों पर बैठती है और तितली अंडे देती है और अंडे से बाद में जो है सूंडी बन जाती है जो कि हमारी फसल में नुकसान पहुंचाती है। तो जहां तक इसके नियंत्रण की बात है तो किसान भाइयों, रासायनिक की जहां तक बात है तो क्लेरेंट्रोनिलीप्रोल 60 ml का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 400 ग्राम को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ अगर हम छिड़काव करते हैं तो इससे भी हम तना छेदक कीट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा पत्ती लपेटक लीफ होल्डर कीट भी लगता है। ये कीट पत्तियों को

0: कर अंदर से उसका हरा भाग खा जाता है, जिससे पत्तियां सफेद दिखने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए फिप्रोनेलिया कार्टा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कीट हमारा लगता है गंधीभग। ये कीट बालियां बनते समय, जब बालियों में दाना बनता है, दूधिया अवस्था में दानों का रस चूसता है, जिससे दाने खाली या काले पड़ जाते हैं। और इसके रोकथाम के लिए हमें उस समय मेलाथियान चूर्ण का बुरकाव अपनी फसल में करना है। तो इस तरीके से किसान भाइयों, जो ये हानिकारक कीट हमारी फसल में लगते हैं, इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी लगती हैं। तो सबसे पहले बीमारी की हम बात करते हैं, ब्लास्ट या झोंका रोग। इस बीमारी में पत्तियों पर आंख के आकार के भूरे और नीले हरे धब्बे बन जाते हैं तथा बाली की गर्दन काली होकर सड़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए हमें टैबुकोनाजोल का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा शीथ ब्लाइट यानी कि पर्ण छंद अंगमारी बीमारी भी हमारी लगती है। इसमें पानी में भीगे हुए या भूरे रंग के धब्बे तने और निचली पत्तियों के म्यान पर बनते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा का उपयोग अगर हम करते हैं या मैंकोजेब आदि फफूंदनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बीमारी किसान भाइयों लगती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इस बीमारी में पत्तियों के किनारे पीले भूरे रंग के होकर सूखने लगते हैं और काफ़ी नुकसान इससे होता है। और इसके लिए खेत में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें और नाइट्रोजन की खाद सीमित और संतुलित मात्रा में अगर हम देते हैं तो ये बीमारी नहीं लगती है। तो किसान भाइयों, ये जो हमने कीट और बीमारियों की बात कही है, तो देखिए इसके लिए जैविक नियंत्रण भी हम कर सकते हैं। और जहाँ तक बीमारियों की बात है किसान भाइयों, कि हमारे फसल में बीमारी ना हो, तो इसके लिए हमें, जब हम नर्सरी की बुआई करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि बीज शोधन करने के बाद ही अगर हम बीज बुआई करते हैं, बीज को शोधित करके अगर हम बोते हैं, तो ये बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां बीज जनित होती हैं जो कि बीज से हमारी फसल में आती हैं। तो ये काम करना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब हम नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है और हम नर्सरी उखाड़ कर, पनीर उखाड़ कर धान की रोपाई करते हैं, तो रोपाई करते समय किसान भाइयों, रोपाई से पहले जो हमारी गुच्छियाँ होती हैं, अगर हम रासायनिक घोल में डाल दें और फिर उस घोल से निकाल निकाल कर हम रोपाई करते हैं, ये बीमारियां लगने से हम अपने धान की फसल को बचा सकते हैं। और खास करके किसान भाइयों, जो कि ये हमारे कीट लगते हैं, हानिकारक कीट, तो इसमें भी हम जैविक तरीके से इसके रोकथाम कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है किसान भाइयों की, जैविक तरीके से अगर हमें अपनाना है तो प्रकाश प्रपंच की व्यवस्था हम कर सकते हैं जाएंगे। इसके अलावा किसान भाइयों, हम नीम ऑयल यानी कि नीम के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हानिकारक कीटों और बीमारियों से बचाना है। और अब इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। कल आपके लिए कुछ और खेती की बातों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब बहन भाइयों को हमारी राम राम।
1: खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुन रहे थे जानकारी धान की फसल में रोग व कीट नियंत्रक विषय पर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे पुष्पा रानी और शशिकला राजपूत के गाए रुहेलखंडी लोकगीत सवेरे 9:25 पर। बहनों का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:15 पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहनें सुनेंगी परिचर्चा, विषय होगा महिलाओं में मानसिक तनाव। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर प्रियंका कार्तिकेय और डॉक्टर कीर्ति यादव। संचालन होगा प्रियंका त्यागी का। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों के गाए पंजाबी लोकगीत। शाम 5:00 श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवा श्रोता सुनेंगे कुछ खास है आज, दिल से दिल तक, कहानी के उस पार, और साथ ही आनंद लेंगे बूस्टर का। किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान भाई सुनेंगे बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती नियंत्रक विकास प्रतिष्ठान मेरठ। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे पुनीत मेहरा के

गाए भजन। रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे परिचर्चा। विषय होगा महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मातृशक्ति वंदन अधिनियम। प्रतिभागी होंगे अभय कुमार मित्तल, डॉक्टर अंजना राजपूत और मृदुला त्यागी। संचालन होगा एजाज अहमद का। राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत आज रात्रि 10 बजे प्रस्तुति होगी आकाशवाणी मथुरा की। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: से पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से 27 अगस्त को वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जिले ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल। आज करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के करीब 150 संस्थानों सहित देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम के तहत युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को खेल, फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। श्री पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में यह आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा।
3: ध्यानचंद की जयंती होती है 29 तारीख को, उसको इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को सेलिब्रेट करते हुए वर्चुअली इंटरेक्शन करेंगे। हमारे देश के सारे युवाओं से जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम फिट होकर

0: भारत में एक युवा अपना योगदान दे सकता है, कैसे नशे से हम युवा को दूर रख सकते हैं अगर उसको हम खेलों की तरफ मोड़ते हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रायबरेली में 879 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 346 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे के आवंटन पत्र भी सौंपे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन के निर्माण की वजह से आज रायबरेली का नाम पूरे देश में गौरव के साथ लिया जा रहा है।
2: इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2156 कोचेज का निर्माण किया और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है और पहली बार मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वंदे भारत ट्रेन बनी है। वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। अब रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायबरेली में ही 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से बने अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मृति सभागार का लोकार्पण किया। साथ ही डाक विभाग की ओर से तैयार किए गए विशेष आवरण का विमोचन भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
3: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचा। दौरे के पहले दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मीडिया से बातचीत भी की।
4: उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए, खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं उनको कुछ बात समझा दें, और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज और जितने स्कूल्स हैं वहां पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कल लखनऊ में मतदाता साक्षरता क्लब और ECI नेट ऐप को लेकर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में शाहजहांपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ और अमेठी सहित 20 जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मीडिया नोडल अधिकारी और लगभग 1500 विद्यार्थी, शिक्षक और संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लखनऊ के कॉल्विन तालुकेदास कॉलेज में देश की लोकतांत्रिक प्रणाली, चुनावी प्रक्रिया, EVM की विश्वसनीयता और युवा मतदाताओं के महत्व पर छात्रों के साथ बातचीत की। वो आज लखनऊ और आसपास के जिलों के लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में कल 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।
5: ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स एक विचार से आगे बढ़कर उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रमुख मंचों में शामिल हो गया है। जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सतत विकास को लोगों और समुदायों की

0: जरूरतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और सामुदायिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का आयोजन लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक किया जा रहा है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने स्वाइन फ्लू को लेकर प्रदेश में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक स्वास्थ्य को पत्र जारी करके स्वाइन फ्लू के मामलों की लगातार समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा है। श्री पाठक ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू से संबंधित मामलों पर नजर रखी जाए, साथ ही अस्पतालों में आने वाले संभावित और संक्रमित मरीजों की स्थिति की नियमित निगरानी और आवश्यकता के अनुसार तत्काल उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर पिंकी जोबेल की अध्यक्षता में कल गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में स्टेट रिव्यू मिशन SRM के दूसरे चरण के तहत गोरखपुर और वाराणसी मंडल की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मिशन निदेशक ने दोनों मंडलों की स्वास्थ्य इकाइयों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से 27 अगस्त को वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जिले ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल। आज करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है जानकारी और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सासा सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। ताजगी से भरा सवेरा है, फूलों और बहारों ने आपके लिए रंग बिखेरा है। सुबह कह रही है जाग जाओ, आपके मुस्कुराहट के बिना सब अधूरा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, आंखें हमारे शरीर का सबसे अनमोल और खूबसूरत हिस्सा है। इनके बिना इस रंग बिरंगी दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आंखें हमें देखने, सीखने और अपनों को पहचानने की शक्ति देती हैं। आंखों के बिना जीवन का हर रंग अधूरा है और अंधकार में है। ऐसे लोगों के जीवन में उजाला करने के लिए नेत्रदान एक महान कार्य है। इससे अंधेरे में जी रहे लोगों के जीवन को रोशनी से भरा जा सकता है। एक व्यक्ति के जाने के बाद उसकी आंखें किसी दूसरे को नई दुनिया देखने का मौका देती हैं। नेत्रदान किसी को अनमोल उपहार देने जैसा ही है और नेत्रदान करना किसी को वरदान देने जैसा है। श्रोताओं, हमारे देश में लाखों लोग कर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं। नेत्रदान से प्राप्त कर्निया किसी अंधे व्यक्ति को दुनिया देखने का मौका देती है। हमारी मृत्यु के बाद भी हमारी आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती हैं। नेत्रदान महान दान है, यह इंसानियत का सबसे बड़ा काम माना गया है। श्रोताओं, किसी भी उम्र के लोग नेत्रदान कर सकते हैं। चश्मा लगाने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर ही आंखें निकालनी जरूरी होती हैं। आंखें निकालने के में केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं। इससे चेहरे पर कोई विरूपता का दाग नहीं लगता। श्रोताओं, हमें नेत्रदान का संकल्प पत्र अवश्य भरना चाहिए और अपने इस फैसले के विषय में अपने परिवारजनों को जरूर अवगत कराना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद वे अस्पताल को समय पर सूचित कर सकें। श्रोताओं, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आपकी आंखें किसी जरूरतमंद को रोशनी दे सकती हैं। नेत्रदान महान दान है, जो कि किसी के अंधकार में जीवन में प्रकाश भर सकती है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, पानी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, जिसके बिना पृथ्वी पर किसी भी जीव की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है और पानी स्वास्थ्य, कृषि तथा प्रकृति को जीवित रखने के लिए सबसे आवश्यक है। श्रोताओं, पानी अनमोल है और इसीलिए इसका संरक्षण भी जरूरी है। वर्षा के जल को किसी मानव निर्मित आवाह क्षेत्र में एकत्र करने और उसे संचय करने की प्रक्रिया को जल संचयन कहा जाता है। बारिश का जल संचयन भूजल स्तर को बढ़ाने, पानी की कमी को दूर करने और भविष्य के लिए शुद्ध जल सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। इससे सूखे से निपटने, सिंचाई में सुधार और पानी के बिलों को कम करने में मदद मिलती है। जल संचयन के मुख्य लाभ हैं, एकत्रित पानी जमीन के अंदर जाता है, जिससे कि पानी का स्तर बढ़ता है। कृत्रिम तलों आदि के जल संचयन किया जाता है, जा सकता है। अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए जल संचयन बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जहां वर्ष भर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं होता, वहां संचय के लिए जल से

की जा सकती है। ये जल संचय एक सरल, सस्ती, दक्ष, पर्यावरण मित्र और टिकाऊ पद्धति है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है, जो कि मानसून अपवाह जो बहकर सागर में मिल जाता है, इस जल का संचयन और पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है ताकि भूजल संसाधनों का संवर्धन हो पाए। पानी की समस्या से निपटने के लिए जल संचयन ही एकमात्र समाधान है। जल संचयन पशुओं के पीने के पानी की उपलब्धता, फसलों की सिंचाई की के विकल्प के रूप में जल संचयन प्रणाली को विश्वव्यापी तौर पर अपनाया जा रहा है। जल संचयन प्रणाली उन स्थानों के लिए उचित है जहां प्रतिवर्ष न्यूनतम 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। इस प्रणाली का खर्च 400 वर्ग इकाई में नया घर बनाते समय लगभग 1200 से 1500 रुपए मात्र तक आता है। श्रोताओं, जल संचयन में घर की छतों, स्थानीय कार्यालयों की छतों या फिर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र में वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। इसमें दो तरह से के गड्ढे बनाए जाते हैं। एक गड्ढा जिसमें दैनिक उपयोग के लिए जल संचय किया जाता है और दूसरे का जल सिंचाई के काम में लाया जाता है। दैनिक प्रयोग के लिए पक्के गड्ढे को सीमेंट व ईंट से निर्माण करते हैं। इसकी गहराई 7 से 10 फीट व लंबाई व चौड़ाई 4 फीट होती है। इन गड्ढों को नालियों व पाइप द्वारा छत की नालियों और टोंटियों से जोड़ा जाता है, जिससे वर्षा का जल सीधे गड्ढे तक पहुंच सके। दूसरे गड्ढे को ऐसे ही कच्चा रखा जाता है, जिसके जल से खेतों की सिंचाई की जाती है। घरों की छत पर जमा किए पानी को तुरंत ही उपयोग में लाया जाता है। श्रोताओं, बारिश का पानी सड़कों या नालियों में बहकर बर्बाद होने के बजाय एकत्र कर लिया जाए तो निचले इलाकों में बाढ़ और मिट्टी का कटाव रुकता है और नगर पालिका या नल के पानी पर निर्भरता कम होती है। वर्षा जल संचयन हमें जल संचयन नियमों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। हमें अपने दैनिक जीवन में भी जल संरक्षण को अपनाना चाहिए। श्रोताओं, अब चलते हैं हम अपने कार्यक्रम की अगली चर्चा की ओर। आज के इस आधुनिक युग में मोबाइल फोन हम सभी की बुनियादी जरूरत बन चुका है। जैसे पढ़ाई, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑफिस का काम, लोकेशन खोजना और तुरंत संवाद करने के लिए यह सबसे अहम साधन है। इसके बिना रोजमर्रा के कई जरूरी काम रुक सकते हैं। मोबाइल आपात स्थिति में मदद मांगने या परिवार में से जुड़े रहने और मदद पाना मुमकिन होता है। मोबाइल हमारी जिंदगी को आसान और तेज बनाता है। जहां मोबाइल से लाभ है, वहीं मोबाइल से बहुत नुकसान भी है, क्योंकि बढ़ता स्क्रीन टाइम और मोटापा इसकी गंभीर समस्या है। खासकर बच्चों और युवाओं में फोन, टीवी और कंप्यूटर का अधिक उपयोग शारीरिक सक्रियता को कम करता है, जिससे कि कैलोरी कम खर्च होती हैं और वजन तेजी से बढ़ने लगता है। स्क्रीन टाइम बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई करना या ऑफिस वर्क करना और खाली समय में मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया और वीडियो गेम का उपयोग करना। बच्चों को शांत करने के लिए भी गैजेट्स की लत लग जाती है। स्क्रीन और मोटापे का बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहने से ऊर्जा खर्च नहीं होती और ज्यादा समय तक मोबाइल देखने से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड खाने की आदत लग जाती है और फोन देर तक देखने से नींद भी पूरी नहीं होती, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। श्रोताओं, हम सभी को स्क्रीन टाइम कम करने के लिए समय सीमा सीमित करनी चाहिए और रोजाना खेलकूद, दौड़ना और योग को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। टीवी या मोबाइल देखते समय खाना ना खाएं, सोने से एक घंटा पहले फोन या टीवी बंद कर दें। श्रोताओं, स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद के चक्र को खराब कर देती है, जिससे कि नींद पूरी न होने पर भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं और वजन बढ़ने लगता है। श्रोताओं, हमें अपने स्क्रीन टाइम को संयमित करना चाहिए, ये हमारे लिए बेहद आवश्यक है।

श्रोताओं, अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट तिथि विशेष की ओर। श्रोताओं, 25 अगस्त का दिन देश दुनिया के इतिहास में अपना विशेष महत्व रखता है, और देखते हैं क्या है आज के इतिहास की घटनाएं। गैलीलियो गैलीली ने अपनी पहली दूरबीन का प्रदर्शन सन 1609 में किया था आज ही के दिन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेरिस को नाजी कब्जे से मुक्त कराया गया था सन 1944 में। 25 अगस्त के दिन ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर का पद संभाला था सन 1943 में। भारतीय पोलो टीम में फ्रांस में विश्व पोलो चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन किया था और विश्व विजेता बनी थी सन 1957 में। सन 1917 में ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे 7 भारतीयों को पहली बार किंग्स कमीशन मिला था, जो सेना के भारतीयकरण की दिशा में एक अहम कदम था। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का निधन हुआ था 25 अगस्त 2012 को। प्रसिद्ध भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 में। और अब समय है हमारे समाचार पत्रों में आई प्रमुख खबरों का। एथलेटिक्स के सबसे बड़े दल से पदकों की उम्मीद सबसे ज्यादा। नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों का रोमांच खत्म होने के बाद अब खेल प्रेमियों पर एशियाई खेलों का रंग चढ़ने वाला है। जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से एशियाई खेल 2026 का आगाज होगा, जो 4 अक्टूबर तक चलेंगे। खेल मंत्रालय ने इन खेलों के लिए 492 स्थानीय सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दी है। इसमें 73 एथलीट शामिल हैं। ये खबर है दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण लिखता है, बिना सिफारिश के पीड़ित सीधे मुझसे करें संवाद, पुलिस अधीक्षक। एसपी कृष्ण कुमार ने कहा है कि जन सुनवाई को प्रभावी बनाया जाएगा और थानों पर सुनवाई गंभीरता से की जाएगी। शतकवीर ध्रुव, जय जवान जय किसान। भारतीय क्रिकेट टीम के कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन सोमवार को बारिश की बाधा के बीच अपनी पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी। भारतीय टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में ध्रुव जुरेल के बेहतरीन शतक का योगदान रहा, लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा उनके शतक ठोकर इसे अपने देश के किसानों और जवानों को खास अंदाज में समर्पित करना रहा। ये खबर है अमर उजाला की। रोजगार और औद्योगिक जोन स्थापना के लिए भूमि का चयन करें। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। फिर बढ़ी तिथि स्नातक में प्रवेश के आवेदन की। जनपद के महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में दाखिल की प्रक्रिया चल रही है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद ने तीसरे चरण में दाखिले के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 अगस्त कर दी है।

लकी अली के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सूरज के साथ साथ संपन्न करने की अपने दोस्त रेनू राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत

0: चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे News on AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा।

0: भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
1: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के दो दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का ये सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेकिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल दो दिन की चीन यात्रा पर पेकिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमरीका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगी। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरल में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
2: उत्थरादम सिर्फ तिरु ओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अख्वापदा में

0: बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
2: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, IIT, IIM, NIT और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत UPI के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Union Home Minister Amit Shah asks all security agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat, flour and related products. BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special

0: सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिकल ने सेंचुरियां बनाई। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिन मुल्कों में मुतायन हैं वहां सबसे निचली सतह पर मजबूत राबते कायम करें और मकामी लोगों के साथ भारत के रिश्ते को फरोग दें। सेवा तीर्थ में इंडियन फॉरेन सर्विस के 2025 के बैच के जेर तरबियत अफसरों के साथ गुफ्तगू करते हुए जनाब मोदी ने रिवायती सिफारती हलकों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क को वसत देने और लोगों के साथ राबतों को बढ़ाने के लिए इन जेर तरबियत अफसरों की हौसला अफजाई की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जनाब मोदी ने जेर तरबियत अफसरों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो आलमी सतह पर भारत के राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर तकनीक इख्तरा और मौसर मवासलात के जरिए भारत की तहजीबी कुवत को मरबूत करें। वजीर आजम ने उनसे जोर देकर यह भी कहा कि वो दुनिया के साथ भारत के माशी राबतों के लिए एक सरगर्म वसीले के तौर पर काम करें। जनाब मोदी ने भारतीय मिशनों की डिजिटल मौजूदगी को मुस्तहकम बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने जेर तरबियत अफसरों से कहा कि वो भारत की तहजीबी सकाफती और जोग्राफियाई कुव्वत की अक्कासी करते हुए आलमी सतह पर सियाहत के लिए भारत को और ज्यादा पुरकशिश मकाम बनाने की समत काम करें। जनाब मोदी ने दुनिया के नौजवान लोगों में भारत के बारे में ज्यादा दिलचस्पी पैदा करने की खातिर भारत को जानिए नो इंडिया क्विज का अहतमाम करने की तजवीज भी पेश की। इन जेर तरबियत अफसरों में इंडियन फॉरेन सर्विस के 50 अफसर शामिल थे जो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से आए हुए थे। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो दरअंदाजी के खिलाफ सख्त इकदाम करें। नई दिल्ली में कौमी सलामती से मुतालिक हिकमत अमली के बारे में नवी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने हिदायत दी कि मुख्तलिफ एजेंसियों पर मुश्तमिल सेंटर के प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब जानकारी का AI पर मबनी तजिया किया जाना चाहिए ताकि कौमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों से निपटने के लिए SOPs तैयार किए जा सकें। जनाब अमित शाह ने दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से मौसर तौर पर निमटने की खातिर वजारत दाखिला की प्रहार स्कीम पर अमल दरामद के लिए तरबियत मफरूर अफराद को वापस लाकर मुकदमात में तेजी लाने और UAPA केसों की तहकीकात करते वक्त एक जामे और मरबूत रवैया इख्तियार किए जाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कौमी सलामती से मुतालिक अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। इनमें दहशतगर्दी के चैलेंजों से निपटने के लिए जवाबी कार्रवाई मुख्तलिफ एजेंसियों पर मुश्तमिल सेंटर के जरिए खुफिया मालूमात को बरूए कार लाने मुनशियात पर कंट्रोल के लिए एक विजन दस्तावेज गैर कानूनी माइग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने साइबर जराइम से निपटने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क और पाकिस्तान की दरपर्दा जंग का मामला शामिल है। ये दो रोजा कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रही है। इसमें मुल्क भर से 850 से ज्यादा शुरका हिस्सा ले रहे हैं। जनाब अमित शाह ने इससे कबल इंटेलिजेंस ब्यूरो के उन जाबाज अहलकारों की याद में शहीदों की यादगार पर गुलहाए अकीदत नजर किए जिन्होंने कौमी सलामती और सालमियत के तहफ्फुज में अपना फर्ज निभाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। डिजिटल अदायगी के इनकलाब के तौर पर UPI को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और लेन देन के एतबार से तकरीबन 13,000 गुना का इजाफा हुआ है। UPI निजाम भारत के डिजिटल अदायगी के इको निजाम की एक मजबूत बुनियाद बनकर उभरा है। इसका आगाज 25 अगस्त 2016 को हुआ था। वजारत खजाना ने कहा है कि 2016-17 में UPI के सालाना लेन देन महज 1,78,00,000 थे जबकि 2025-26 में ये बढ़कर 24,162 करोड़ लेन देन पर पहुंच गए हैं। इस अरसे के दौरान लेन देन की मालियत भी 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर तकरीबन 314,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वजारत ने कहा है कि UPI मुख्तलिफ मुल्कों में डिजिटल अदायगी के एक आलमी प्लेटफॉर्म के तौर पर भी उभरा है और सरेदस्त 11 मुल्कों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस, भूटान,

0: केरल में पहली जोनल मीटिंग से खिताब करते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष ने कहा कि पंजाब तब्दीली के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी रियासत में इंतखाबात जीतकर हुकूमत तश्कील देगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: बीजेपी जनरल सेक्रेटरी की तरफ से ये ऐलान बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के दरमियान इत्तेहाद के इम्कानात के ताल्लुक से जारी बातों के दौरान सामने आया है। जनाब संतोष ने कल पटियाला और भटिंडा में तंजीमी मीटिंगों की सदारत की। जनाब संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। आज वो लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में मीटिंगें करेंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में बातचीत के लिए पार्टी कारकुनान और लीडर इन मीटिंगों में पहुंच रहे हैं। आज अमृतसर में रियासती जनरल सेक्रेटरियों के साथ एक अलहदा मीटिंग भी होनी है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। ये इस तरह की 25वें दौर की बातचीत होगी। जनाब डोभाल चीन के दो दिन के दौरे पर कल बीजिंग पहुंचे हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने मीडिया ब्रीफिंग में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत का ऐलान करते हुए कहा कि जनाब डोभाल और जनाब वांग यी सरहद के मामले पर तफसीली बातचीत के साथ साथ दीगर दो तरफा इलाकाई और बैन अलाक्वामी उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। मगरबी बंगाल सरकार इमरजेंसी सूरतहाल से निमटने के लिए अग्निवीरों को भर्ती करके कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली नई फोर्स अर्जुन वाहिनी तश्कील देगी। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि ये फोर्स सितंबर से काम करने लगेगी। अब तक सैनिक बोर्ड के जरिए 200 एहलकारों का इंतखाब किया गया है। इनमें से 100 एहलकारों को कोलकाता में मुतय्यन किया जाएगा। बिहार में पटना और कई दीगर जिलों में सैलाब की सूरतहाल मजीद खराब हो गई है। दरियाए गंगा और दीगर बड़े दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। तुगयानी पर आए हुए गंगा दरिया से भागलपुर और बेगूसराय जिले में पुश्तों में शिगाफ पड़ने की वजह से सैकड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: रियासत के बेगूसराय जिले में झमतिया गांव के नजदीक पुश्ते में तकरीबन 30 फुट का शिगाफ पड़ने की वजह से कई पंचायतों के दायरे में आने वाले इलाके मुतासिर हुए हैं। आबी वसाइल के महकमे की टीमें पुश्तों की मरम्मत के काम में लगी हुई हैं। उधर रियासत के वजीर आला सम्राट चौधरी ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सैलाब से मुतासर जिलों का फजाई सर्वे किया। उन्होंने इंतजामिया को यह हिदायत दी है कि वो तेजी के साथ राहत और बचाव कार्रवाई अंजाम दें। गंगा में पानी चढ़ने के तनाजुर में मगरबी बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी फाटक खोल दिए हैं। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी की दरखास्त पर ऐसा किया गया है। इससे बिहार में सैलाब की सूरत हाल को कंट्रोल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: उड़ीसा में आज बारिश की सूरत हाल कुछ बेहतर होने का इम्कान है। अगरचे खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव के हल्के का असर रियासत के कई हिस्सों में महसूस किया जा सकता है। रियासत के शिमाली साहिली जिलों में औसत बारिश का इम्कान है। इस दौरान हालिया मुसलसल बारिश के सबब दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा होने के पेश नजर सैलाब से मुतासर इलाकों में निगरानी की जा रही है। महकमे मौसमियात IMD ने 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रियासत में इस माह की 30 तारीख तक बारिश जारी रहने का इम्कान है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव के जेर असर उड़ीसा में मौसम में मुसलसल तब्दीली आ रही है। कई इलाकों में औसत बारिश और शुमाली उड़ीसा के साहली जिलों में बारिश का इम्कान है। 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। लगातार बारिश और पानी जमा होने के मद्देनजर एहतियात के तौर पर आज सैलाब से मुतासर भद्रक और जाजपुर में बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल बंद हैं जो सैलाब से बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। इस दौरान अखुपाड़ा में बैतरनी दरिया अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अगरचे इसके पानी की सतह में कुछ कमी आ रही है, सैलाब के खतरे वाले इलाकों में हुक्काम मुसलसल करीबी नजर रखे हुए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते, शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, साहिली कर्नाटक, केरला और माहे में भी तेज बारिश होने

0: का इम्कान है। केरलम में 10 रोजा ओनम त्यौहार से कबल आज उत्तरादम मनाया जा रहा है। रियासत में कल तिरुओनम के इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आज के दिन लोग इस बड़े त्यौहार के लिए आखिरी तैयारियां मुकम्मल करते हैं और खरीदारी भी करते हैं। रिवायती उथराड़ा पाचिल की वजह से बाजारों और खरीदारी के मराकज पर लोग जश्न की आखिरी खरीदारियों में मसरूफ हैं। ओना पुकलम से घरों को सजाया जा रहा है और रिवायती ओना सदिया के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान पर नई बंदिशों का मकसद उसके मुमकिन माली जराए पर रोक लगाना है। उन्होंने मुल्कों को मुतनब्बे किया कि वो ईरान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को खत्म करें वरना उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मर्दों के क्रिकेट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पटिगल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने कल कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट के बारिश से मुतासिर दूसरे दिन मेजबान श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 503 रन बनाकर खत्म कर दी। ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 115 रन बनाए। देवदत्त पटिगल ने कल शानदार 117 रन बनाकर इनिंग्स की मजबूत शुरुआत की थी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनैन। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से डॉक्टर एस जय शंकर की मुलाकात से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। इस मुलाकात के दौरान भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खसूसी पैगाम भी उन तक पहुंचाया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल वजीर खारजा वांग यी की दावत पर चीन पहुंचे, जहां वो 25वीं भारत चीन सरहदी मुजाकरात में शिरकत करेंगे। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, मुसाफिरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए रेलवे ने शुरू की सफाई मुहिम। इस हिकमत अमली के तहत पीने के पानी के पूरे निजाम की बार बार जांच और सही तरीके से देखभाल पर जोर दिया गया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिन मुल्कों में मुतय्यन हैं वहां सबसे निचली सतह पर मजबूत राब्ते कायम करें और मकामी लोगों के साथ भारत के रिश्ते को फरोग दें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो दरअंदाजी के खिलाफ सख्त इकदाम करें। डिजिटल अदायगी के इनकलाब के तौर पर UPI को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और लेन देन के एतबार से तकरीबन 13,000 गुना का इजाफा हुआ है। सरकार ने गेहूं के आटे और इससे तैयार होने वाली अशिया पर बरामदी बंदिशें हटा ली हैं। BJP आने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स सुनने वाले सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म खानदान से। गायक स्वर हैं लता मंगेशकर के और शब्द रचना है राजेंद्र कृष्णा की। संगीत दिया है रवि ने। सच्चा साथी वही है जो सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि जीवन के हर कष्ट और मुश्किल समय में आपका हाथ थाम कर खड़ा रहे।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सिलसिला ये है, फिल्म का नाम। स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर के। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की है शिव हरी ने।

0: चंदन का एहसास।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आइए अब सुनते हैं फिल्म आन मिलो सजना का ये नगमा, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, शब्द रचना की है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म आराधना का एक गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है एसटी बर्मन ने।

कार्यक्रम के अंत में पेश है फिल्म पत्थर के सनम का एक गीत, जिसे आवाज दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने, शब्द रचना की है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत।

0: लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 9:15 हो रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से कानपुर देहात और
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर देहात और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख है देवेश सिंह का।
2: कानपुर देहात में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय सहित सरकारी कार्यालयों, स्कूल कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान हुआ। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारी, प्रतिनिधि, कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कानपुर देहात में आजादी के जश्न को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री अजीत पाल और अन्य जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों और भारत माता के जय घोष से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। जनप्रतिनिधियों ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए मिलकर काम करने का संदेश दिया। वहीं प्रशासन की ओर से भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। कानपुर देहात के मूसा नगर में संत शिरोमणि की कलश वंदन यात्रा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गो संरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया। मंत्री ने कहा कि अब गो संरक्षण अभियान में नई पीढ़ी को जोड़ा जाएगा और गांव-गांव 10,000 गो मित्र तैयार किए जाएंगे। सरकार का मकसद बच्चों और युवाओं में गो संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए करीब 10,000 गो मित्र तैयार किए जाएंगे। गो संरक्षण में रुचि रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभियान के तहत मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे जो आगे अन्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। सरकार का प्रयास है कि बच्चों के मन में गो माता के प्रति प्रेम और गो संरक्षण की भावना विकसित हो। मंत्री ने कहा कि गो संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी को इस अभियान से जोड़कर गांव-गांव तक गो संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाएगा। मूसा नगर से गो संरक्षण को लेकर सरकार की नई पहल का संदेश साफ है। अब नई पीढ़ी भी बनेगी गो संरक्षण अभियान की सहभागी। कानपुर देहात में सावन माह के चलते पूरा जनपद शिवमय नजर आ रहा है। सुबह से ही प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कांवड़िये भी गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कानपुर देहात में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत 11 से 18 अगस्त तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट और चालकों के सत्यापन की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने पर 46 वाहनों के चालान किए गए जबकि 8 वाहनों को निरुद्ध किया गया। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों को बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न करने की हिदायत दी है। प्रशासन का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। वहीं गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राखियां तैयार करने में जुटी हैं। महिलाएं अलग अलग डिजाइन और रंगों की राखियां तैयार कर रही हैं। इन राखियों की बिक्री से समूह की महिलाओं को आमदनी हो रही है और उनकी मेहनत को बाजार भी मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि पहले वे सिर्फ घर के काम तक सीमित थीं, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें हुनर दिखाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिला है। इस बार वे अपने हाथों से तैयार राखियों के जरिए रक्षाबंधन के त्योहार को खास बनाने में जुटी हैं। कानपुर देहात में फर्जी फर्मों के नाम पर काम कराने और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतों के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने संबंधित विभागों को फर्म के दस्तावेज, पंजीकरण, जीएसटी, बैंक खातों और किए गए कार्यों की जाँच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की जाँच में यदि किसी फर्म के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं या सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित फर्म और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त न किया जाए।
1: कानपुर देहात जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख है आकाश शुक्ला का।
3: हरदोई में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक सचिवालय वार एक औषधि वाटिका विकसित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में 14 अगस्त को जिले के 19 विकास खंडों में कुल 233 औषधि वाटिकाओं में पौधारोपण किए गए। इनमें सहजन, आंवला, नींबू सहित विभिन्न पारंपरिक उपयोग वाले पौधे शामिल हैं। इन वाटिकाओं से पर्यावरण को बेहतर बनाने के साथ नई पीढ़ी को औषधि पौधों और उनके उपयोग की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। हरदोई में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने गांधी भवन परिसर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने हालिया परीक्षा पेपर लीक विवादों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीट और झारखंड जेपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था अत्यधिक मजबूत और सुरक्षित होनी चाहिए ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, हिंसक नहीं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरदोई में राष्ट्रभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। अधिकारियों ने देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने वाले और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संकल्प लिया। हरदोई में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी अनुनय झा ने ध्वजारोहण किया।

0: इस दौरान उन्होंने जनपद वासियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम करना है। छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करके हम देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति कुंतल करने की घोषणा की। इस घोषणा के उपलक्ष्य में हरदोई की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। शाहबाद विकास खंड परिसर में राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी की उपस्थिति में उचित दर विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री की घोषणा को देखा और सुना तथा लाभांश वृद्धि पर खुशी जताई। इस वृद्धि से हरदोई के 1612 उचित दर विक्रेताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने हरदोई में शहीद मेजर पंकज पांडे की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने हरदोई मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद मेजर पंकज पांडे के नाम पर रखने का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि मेजर पंकज पांडे ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिस पर पूरा प्रदेश गर्व करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहीदों का सम्मान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर सभी वर्गों को साथ लेकर विकास कार्य कर रही है। हरदोई में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के विराट व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने विचारों, सिद्धांतों, संवेदनशीलता और राष्ट्र सेवा से देश के राजनीतिक जीवन को नई दिशा दी। वे दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सभी वर्गों में सम्मानित जननेता के रूप में स्थापित हुए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी कानपुर देहात और हरदोई जिलों की हलचल। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पुष्पा रानी और शशिकला राजपूत के गाए रुहेल खंडी लोकगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत पुष्पा रानी और शशिकला राजपूत के गाए रुहेल खंडी लोकगीत। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये एक और लोकगीत है।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत पुष्परानी और शशिकला राजपूत के गाए रुहेल खंडी लोकगीत।

0: शशिकला राजपूत और पुष्पा रानी के गाए इस रुहेलखंडी लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाली सभी श्रोताओं को रेणु राजपूत और
1: जी हाँ रेणु राजपूत का साथ देने के लिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच आ चुका हूँ मैं, आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। हम दोनों की ओर से आप सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हमने लिया है फिल्म यादों की बारात से। स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफी के और इस गीत को सुनने वाले श्रोता हैं
1: जी हाँ
0: आप सभी।
1: रेणु हाँ, इस गीत को सुनने के लिए जो हमें फरमाइशें मिली हैं वो हमें लिख भेजी हैं बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल से अनिल सिंह नेगी, सरोज आर्या, संजय चौहान, डीएस नेगी और भावर क्षेत्र कण्व नगरी कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल से ये फरमाइश हमें लिख भेजी है इंदु नौटियाल, योगेश चंद्र नौटियाल, कार्तिक नौटियाल, कनिका नौटियाल, जस्सू नैथानी, पुनीता गौड़, मीनाक्षी डबराल, सुषमा, पूनम भारद्वाज ने। और इसके साथ ही ये फरमाइश हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिली है रेलगाड़ी श्रोता टोली नजीबाबाद जनपद बिजनौर से महबूब सैफी, मोहम्मद यूसुफ, विनय कौशिक, रवि अरोड़ा, चंद्रशेखर ठाकुर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद फरमान। और ये फरमाइश है अनस्टॉक देव टोंक, साकेत टोंक और राजेंद्र की नजीबाबाद जनपद बिजनौर से।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी, हीना कौसर और इनके परिवार के सभी सदस्य। मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से

0: ही इस गीत को सुनना चाहते हैं। नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर जन्नत और इनकी परिवार के सभी सदस्य। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेग बिरक और मीका बिरक। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी।
1: जी हाँ रेनू, हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और अपने श्रोताओं को बता भी दिया है कि हम कौन सा गीत उनको उन्हीं की फरमाइश का सुनवाने वाले हैं। हमने कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस और पत्रों को भी साझा कर लिया है अपने श्रोताओं के साथ, लेकिन हम अपने उन श्रोताओं को अवगत करा दें अपने इस कार्यक्रम से जुड़ा व्हाट्सएप नंबर जिस पर वो अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा 9457078288 यानी 9457078288। और जो श्रोता हमें पत्रों के माध्यम से अपनी फरमाइश भेजना चाहते हैं उन्हें भी अवगत करा दें कि आप हमें फरमाइश भेज सकते हैं, जो कि हम अपने आगामी कार्यक्रमों में, जब तक आपका खत हमें मिलता है, हम अपने आगामी कार्यक्रमों में उन्हें शामिल करेंगे। आप भेज सकते हैं अपनी फरमाइश कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763 पर। तो रेनू, अब हम अपने श्रोताओं को क्या उन्हीं की पसंद का गीत सुनवा दें?
0: हाँ बिल्कुल, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं श्रोता अपना गीत सुनने के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: और अब चरणजीत जी हम सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म बाजीगर का ये गीत, जिसे आवाज दी है विनोद राठौड़ ने। और पसंद करता हमारे श्रोता हैं गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता और सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना कार्तिक और ललिता नारायण खर्चे। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और नावेद खान, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी, ग्राम जुझैला थाना शिवाला कलाम बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, आलिया सायना, महविश मोहम्मद, अफान और अदीना नूर। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी और इकबाल फरीदी। तो आप देखते हैं हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर किन श्रोताओं के मैसेज आए हैं।
1: जी हाँ, ये मैसेज है पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से मैसेज हमें मिला है। बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार खलीफों की बावड़ी से, खुदा बख्श खलीफा रामदेवरा से, दिनेश चौहान डांगरी से, बाबू राम जयपाल और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का ये मैसेज हमें मिल रहा है। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। और ये मैसेज हमें मिला है आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, निवान शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का।
0: और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय और दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। और हाँ, इसी गीत को सुनना चाहते हैं रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबूरी हसन, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम बेगम, शबनम अनवार।
1: जी हाँ, और अब जो मैसेज हमें मिला है वो हमें मिला है सनावत से, भेजने वाले हैं शेख मोसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बड़ाना। और ये मैसेज छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल का।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल और हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल, संजीव बंटी और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये प्यारा संगीत।

0: इस प्यारे से गीत के साथ आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे में फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में आपके साथ बना हूं मैं, आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह, और मेरे साथ इस कार्यक्रम में बनी हुई है रेनू राजपूत। और रेनू, कुछ और व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ने से
1: जी
0: पहले
1: जी
0: आप कुछ शायद गीत बताने वाली हमारे श्रोताओं को।
1: चरणजीत जी, आज एक श्रोता ने हमें फरमाइश लिख भेजी है फिल्म प्रेम रोग के गीत के लिए।
0: अच्छा
1: ये सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में ये गीत। श्रोता है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निसा, शबिस्ता मोहम्मद नसीम और पलक लुबना और यश मंसूरी।
0: जी हाँ, और अपने श्रोताओं की फरमाइशों को तो हम पढ़ ही रहे हैं। हम साथ साथ ये भी अपने श्रोताओं से गुजारिश कर दे रहे हैं कि आप कृपया रिपीट मैसेज ना भेजें। एक
1: जी
0: बार मैसेज आपका अगर शामिल हो जाए तो आप तब भी प्रतीक्षा करें, और मैसेज भेजने के बाद अगर आपका मैसेज पढ़ा भी नहीं गया अभी तक तो आप इस उम्मीद से हमारे साथ जुड़े रहें कि अगले चरण में हम आपके
1: आपका नंबर
0: मैसेज
1: आएगा मैसेज पढ़ने के
0: जी अगला
1: लिए।
0: मैसेज।
1: और अगला ये मैसेज हमें मिला है सहारनपुर से। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम और सद्दाम का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता उत्तम नगर दिल्ली से गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश।
0: ये मैसेज भोपालगढ़ राजस्थान से हमें लिख रहे हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार और परिहार परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज हम तक पहुंचा है। लिखने वाले हैं श्रोता दादा बाबू रोड गिरिडीह
1: गिरिडीह
0: झारखंड
1: झारखंड
0: से। जी
1: से।
0: हम मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नाज और बेबी चाहत।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं नजीबाबाद से मोहल्ला
0: नादेहिंद,
1: नादेह से।
0: नादेहिंद से नैना वर्मा, गीता वर्मा, मेधा वर्मा, अनिता वर्मा, अमित वर्मा, वीरेंद्र वर्मा और सुरेंद्र वर्मा।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासू, अर्णव और सत्यमानंद।
0: जी हाँ, और ये फरमाइश हम तक पहुंची है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, पंका रोड जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय और इनके परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविक सिक्का, कभी हम तक पहुंचा है। और ये हमारे पास पहुंची है फरमाइश टैगोर।

0: गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और छाबड़ा परिवार के अन्य सदस्यों का। और ये मैसेज कहाँ से है रेनु?
1: और अगला मैसेज है ये कुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवानी शहर से,
0: नवा शहर से
1: सुरेंद्र सिंधु का, और अनीता सिंधु, रोहित सिंधु, रितेश संधु और प्रतीक्षा संधु का।
0: जी हाँ, और ये मैसेज है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा,
1: ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: जी हाँ, और ये अगला मैसेज है मोहल्ला अफगानान शेरकोट जनपद बिजनौर से।
1: ये मैसेज
0: रिपीट हो गया है, देखिएगा यही हम अपने श्रोताओं से कह रहे हैं कि आप रिपीट मैसेज ना करें और अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जुड़ने का पूरा मौका दें। राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना और अम्मी ने ये तेलंगाना कोथा गुडम डिस्ट्रिक्ट येलांडू से ये मैसेज हमें लिख भेजा है। और
1: तो
0: देखिएगा
1: क्यों ना चरणजीत जी, अब ये श्रोताओं की फरमाइश पर गीत सुनवा दिया
0: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम रोग का ये प्यारा सा गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: जीत, ये है फिल्म का नाम और जिसका गीत हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं, कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। और चरणजीत जी, देखते हैं हमें जो व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं ये किन श्रोताओं के हैं।
2: जी,
1: ये है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरा मण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडा ने।
2: जी हाँ, और ये जो अगला मैसेज हम तक पहुंचा है, ये लिखने वाले हैं गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा और शर्मा परिवार के अन्य सदस्य। और ये अगला मैसेज कहाँ से है?
1: सब्जी मंडी बुलडाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन का।
2: पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर जनपद बिजनौर से एम ताहिर इद्रीस।

0: लाल और जैन प्लांट देहरादून से ये हमें फरमाइश भेजी गई और मनकारा
1: अगली
0: मंदिर जी।
1: फरमाइश हमें भेजी है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर पन्नी लाल सागर आशीष कुमार सागर अमर सिंह हितेश सागर उर्फ बंटी राजेश कुमार वर्मा रूबी भारती एकता भारती दिव्या भारती रचना भारती श्रीमती ओमवती भारती खनक शगुन सारांश आयांश अदिति वर्मा शिवांश और प्रथव सिंह ने। अगला मैसेज देखते हैं हमें किन श्रोता का मिला है। ये अगला मैसेज है पश्चिमी सिंह भूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप प्रेम गोप कपिल गोप शेवांश गोप संगीता गोप लिपि गोप और दीपाली गोप का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता
0: जी हाँ रज्जाक मोहम्मद शमीम बेगम और इमरान खान इरफान खान और ये भेजा है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से।
1: और अगला पत्र हमें मिला है इसी गीत को सुनने के लिए तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख शेख रहीम मुन्ना दानिश आसिफ शेख।
0: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है परीमहल कासगंज से लिखने वाले हैं आबाद खान नबील खान आरफा खान इल्मा खान एम असलम सैफी मास्टर जाहिद अली मीरा सराय बदायूं से मैसेज भेज रहे हैं आफरीन खान जमीर खान और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं पैजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया।
0: जी हाँ और ये अगला मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद के गांव दूल्हापुर से और लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह और इनके परिवार के अन्य सदस्य। ये
1: तो,
0: मैसेज
1: क्यों ना चरणजीत जी अब श्रोताओं को अपने ये गीत सुनवा दिया जाए जो गीत ये सुनना चाहते हैं फिल्म जीत से।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और अगली फरमाइश हमें श्रोताओं ने लिख भेजी है फिल्म बादल के लिए, जिसका गीत हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। तो देखते हैं चरणजीत जी की अगली फरमाइश हमें किन श्रोता की मिली है। ये फरमाइश है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से, एम असलम सैफी, जैबू निशा बेगम, सद्दाम सैफी।

0: सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान की।
1: और
0: और
1: ये फरमाइश हमें लिख भेजी है सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, असद अरहाम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी, नाज पैलेस, अजमेर शरीफ से। और ये अगली फरमाइश जो कि हम तक पहुंच रही है,
0: यह है बेरड़ी मध्य प्रदेश से, हुकुम कमरकर, सुनीता कमरकर, हार्दिक कमरकर, प्राची तन्नू कमरकर।
1: लगातार हमारी स्क्रीन पर ये हरे हरे सितारे टिमटिमा रहे हैं रेनू, और
0: जी,
1: लगातार हमें,
0: मैसेज आ रहे हैं हमारे पास अपनी फरमाइश के गीत सुनने के लिए।
1: और ये मैसेज है हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, मनोहर, बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से। और इसके साथ ही ये अगला मैसेज करणवीर हाउस भुचो कैचिया बठिंडा पंजाब से यह मैसेज मिला है, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन और अभिजोत का।
0: और अगले श्रोता है हमारे इसी गीत को सुनने वाले, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, सायना महवेश, मोहम्मद अफवान और अदीना नूर।
1: जी हाँ, और अगला मैसेज झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया का मिला है, और ये मैसेज हम तक पहुंचा है।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं नाला सोपारा मुंबई से बेगम नाजमा शेख, बेगम रुमा शेख, मोहम्मद आसिफ शेख, बेबी माहिरा शेख, नोमान शेख, सुलेमान शेख, शेख मोहम्मद कलीम।
1: ये मैसेज हम तक पहुंचा है कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, सरोज चौक, अमरावती से।
0: और अगला मैसेज हमें मिला है जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया का।
1: और ये मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार का, और ये मैसेज है कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, और दादरी गेट भिवानी से ये मैसेज हमें लिख भेजा है।
0: और अगला मैसेज हमें मिला है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और इनके परिवार के सभी सदस्यों का, जो ये गीत हम सुनना चाहते हैं।
1: जी हाँ, और ये एक और मैसेज चलते चलते हम पढ़ देते हैं, नगीना से अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा, गीत अरोड़ा और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का।
0: तो क्यों ना चरणजीत जी, अब ये गीत सुनवाया जाए अपने श्रोताओं को
1: जी हाँ
0: फिल्म
1: बिल्कुल,
0: बादल का।

0: कार्यक्रम के अंत में पेश है फिल्म राम तेरी गंगा मैला का ये गीत, जिसकी फरमाइश हमें लिख भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने, और ये सुनना चाहते हैं सुरेश वाडेकर के स्वर में ये गीत। फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, और पसंद करता है आप सभी श्रोतागण मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, और इन्हीं के परिवार से है नगमा नाज मंसूरी। तंगोरी मोहाली पंजाब से लिखने वाले हैं गुरप्रीत तंगोरी, जसबीर कौर, महीक प्रीत और साहिज प्रीत कौर। अगला मैसेज हमें मिला है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान का। और
1: ये मैसेज रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, संजय मारकंडेय का मैसेज हम तक पहुंचा है। ये अगला मैसेज अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली का भी हम तक पहुंच चुका है। और ये न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेश खुराना, सुमित पूर्वी, अनीता पुराना, राजीव
0: ढींगरा,
1: ढींगरा, ये हमें मैसेज मिला है। और अगला मैसेज आशा नारंग सोनाली, सुरेश नारंग का हमें मिला है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से।
0: और अगला मैसेज है हमारे श्रोताओं का जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का।
1: और ये मैसेज है
0: सीताराम कांगड़ा कांगड़ा का एकता कॉलोनी रोहतक से, और इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा।
1: और ये मैसेज जो कि हमें मिला है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, मूसा मोहसिन और राजकुमार बुडाना का। इसके साथ ही सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रेतु और मुकेश जगताप का भी मैसेज हम तक पहुंचा है। इसके साथ ही ये मैसेज है,
0: ये है गांव जाखो राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक का।
1: तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं आपकी पसंद का कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: सुरेश वाडेकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त रेणु राजपूत
1: और आपके अपने रेडियो मित्र चरणजीत सिंह को दीजिए इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। देखेगा, मौसम बड़ा सुहाना है और सावन का महीना जाते जाते कहीं ना कहीं एक दिल में कसक जरूर छोड़ जाएगा। वो कसक कैसी होगी? वो कसक ऐसी होगी कि सावन का महीना हमने आखिर कैसे गुजारा, हमने कैसे बिताया ये सावन का प्यारा सा महीना, जिसमें ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें जब शरीर पर पड़ती हैं तो अंदर तक मन को झकझोर देती हैं, कहीं ना कहीं एक प्यार सा भाव हमारे मन में जगा देती हैं। और मिलने जुलने का जो सिलसिला होता है वो बारिश के महीने में चाय की प्याली के साथ या और भी व्यंजनों के साथ हम इस महीने का लुत्फ उठाते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में हम लुत्फ उठाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

अलका याग्निक, शान, उदित नारायण और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में आपने सुना फिल्म लगान का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत A.R. रहमान ने दिया था। और दोस्तों देखिएगा, इस गीत को सुनने के दौरान कहीं ना कहीं हम ऐसी उम्मीद करते कि आपको बादलों की घनघनाहट का एहसास हुआ होगा। वो इसलिए क्योंकि दिल की जो धड़कन है ना, वो भी कहीं ना कहीं गड़गड़ाहट सी महसूस

होती है अगर आप अपने दिल की धड़कन को ध्यान से सुने, वो भी उस समय जब कोई आपका चाहने वाला आपको याद आ जाए या आपके सामने आ जाए, तो दिल किस अंदाज में धड़कता है, सुनते हैं इस प्यारे से गीत में।

0: बेटा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की युगल आवाजों में। गीत रचना समीर की थी और संगीत आनंद मिलिंद ने दिया था। देखिएगा दोस्तों, इस गीत को सुनने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपने वास्तव में दिल की धड़कनों को ज़रूर महसूस किया होगा। और देखिएगा, जब दिल जमा होता है तो धड़कता ही है, और दिल की धड़कन बहुत कुछ प्यार भरे अंदाज में कह जाती है। फिलहाल वक्त है हमें भी ये संदेश आपसे बताने का।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: इस संदेश के साथ आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और दोस्तों, गीत संगीत तो जारी रहेगा ही, हम अपने दिल की बात भी आपके साथ साझा कर रहे थे। वो ये कि देखिएगा, जैसे कि बादलों की गर्जन होती है और बादलों की गड़गड़ाहट के बाद मूड बदल जाता है, और हम कहीं ना कहीं इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए निकल जाते हैं। और इसी बीच हमने एक गीत का भी आनंद लिया कि दिल धक धक जब करता है, वो मौसम जब ऐसा सुहाना होता है तो करने ही लगता है। तो दिल का हाल जब दिल को बताया जाता है या किसी से पूछा जाता है तो किस अंदाज में पूछा जाता है।
3: मुझे

राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म के गीत में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को, गीत रचना समीर की और संगीत नदीम श्रवण का। प्यारे से गीत के बाद आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनते हैं अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में जुदाई फिल्म का गीत, गीत रचना समीर की और संगीत नदीम श्रवण का। देखिएगा, जब किसी से दिल का हाल पूछा जाता है या किसी को दिल का हाल बताया जाता है तो एक रिश्ता बन जाता है हम दोनों के बीच में। उन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाता है जब दिल का हाल बताया और सुनाया जाता है, और फिर एक कारवां प्यार का आगे बढ़ता है।

जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने बातें की बादलों की, गड़गड़ाहट की, बारिश की, सावन की, और इस मौसम में हमारे दिलों में आने वाले उतार चढ़ाव की, प्यार मोहब्बत की। और देखिएगा, गीत सुनते सुनते और बातें करते करते ये वक्त कैसे बीत गया। तो अब इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में करते हैं सावन से ही जुड़े एक प्यारे से गीत के बाद, और बीत रहे सावन को अलविदा कहेंगे इस गीत में, जो कि हमने लिया है फिल्म हेलो ब्रदर से। बादल सुप्रियो और जसपिंदर नरूला की ये आवाज़ें हैं, सुधाकर शर्मा का गीत और संगीत हिमेश रेशमिया का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
2: जी,
3: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
2: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि

0: ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल। दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई ना कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
0: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओं, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहां एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
1: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
0: जी
1: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
0: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
1: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
0: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे
0: जी
1: भारत में होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओ, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
0: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांक नागा जनजाति निवास करती है। कोयांक समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
1: तो श्रोताओ, यदि कभी आपने कोयांक पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे।
0: जी
1: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
0: कोयांक जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
1: श्रोताओ, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांक योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
0: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांक समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
1: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
0: जी,
1: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
0: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओ, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
1: जी, तो श्रोताओ, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं,
0: जी,
1: लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
0: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
1: तो श्रोताओ, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं?

0: भागो भागो, वो देखो हमारे आगे बच्चों का
1: क्या लगा है, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
2: अरे
0: क्या हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
2: सारी फसल बह गई।
3: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था, नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
0: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
0: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
3: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी, लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है, नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
0: अरे काट काट काट, अरे मेरा भी क्या देख रहा, काट।
4: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
3: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
5: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो, इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहो।
3: तो साथियों ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं।

0: दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
3: और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
3: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
4: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
5: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
6: हमारे पशु पक्षी, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
7: लगता है नदी चोरी हो गई है।
4: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
7: सारी फसल बह गई।
6: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
7: सारे
6: सामान उसी में तो ऊपर ले जाना होगा।
7: चलो जल्दी ऊपर,
6: हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
7: चलो चलो,
6: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए,
7: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हां साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
8: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
10: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा हैं, जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो हैं पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
0: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने एक खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
3: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू मैम।
0: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
1: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
0: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
1: वर्ष था 1977 का, जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

0: श्री ओएम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
1: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
2: थैंक यू सर।
1: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
2: लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
1: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
2: आप? धन्यवाद सर, लेकिन
1: अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
2: सर।
1: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
2: ओह, थैंक यू सो मच सर।
3: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
4: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश की पीटी उषा जो भाग ले रही
5: है।
4: हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई। अरे, ये क्या हुआ?
3: पीटी उषा बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
0: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गई। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
3: सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
0: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गाँव में हुआ था। पयोली गाँव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
3: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
0: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
3: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
0: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
3: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
6: चेतना,
5: जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आइए आपको दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 10 बजे। प्रस्तुति आकाशवाणी मथुरा की होगी। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:50 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। लखनऊ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के अलावा आज हमारे नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। सांध्यकालीन प्रसारण सभा के आरंभ में कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना एवं दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के राष्ट्रीय पेंशन योजना की जानकारी दी जाएगी शाम 5 बजे। कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:15 पर। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05। कार्यक्रम में बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला के फोन इन का प्रसारण होगा। सुगम संगीत के अंतर्गत कलाकार पुनीत मेहरा से भजन आप सुनेंगे शाम 7:32 पर। महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मातृशक्ति वंदन अधिनियम विषय पर परिचर्चा का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर अभय कुमार मित्तल, डॉक्टर अंजना राजपूत, डॉक्टर मृदुला त्यागी। संचालन करेंगे एजाज अहमद। फिल्म संगीत के अंतर्गत एक ही कलाकार कार्यक्रम में बात होगी मशहूर पार्श्व गायक मुकेश की। इस कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 2:30। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में विविध कलाकारों की आवाज में पंजाबी लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर। कार्यक्रम महिला जगत का प्रसारण का समय रहेगा दोपहर 1:15। कार्यक्रम

में किया जाएगा परिचर्चा का प्रसारण, जिसमें प्रतिभागी होंगे डॉक्टर प्रियंका कार्तिकेय एवं डॉक्टर कीर्ति यादव। इस कार्यक्रम में परिचर्चा का विषय होगा महिलाओं में मानसिक तनाव। फिल्म संगीत के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का समय रहेगा अब से कुछ देर में 12:05 पर। आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बाद आइए अब आपको दे देते हैं कल यानी बुधवार को प्रातःकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में राजकुमार और साथियों की आवाज में रागनी आप सुनेंगे 9:25 पर। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का समय रहेगा 7:31। सुबह 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में आप जानेंगे बच्चे नाखून क्यों खाते हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में तिलहनी फसलों की देखभाल के संबंध में जानकारी दी जाएगी 7:10 पर। श्री रामचरित मानस गान के प्रसंग का समय रहेगा 6:30 और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे 6:05 पर। तो श्रोताओं ये जानकारी थी कल यानी बुधवार और आज यानी मंगलवार की द्वितीय प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनने वाले हमारे सभी सैनिक भाइयों और हमारे सभी श्रोताओं को आपके अपने रेडियो मित्र चरणजीत सिंह की ओर से जय हिंद। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास तौर से सैनिकों के लिए हम लेकर आते हैं, उनकी भावनाओं को सम्मान देते हैं और सुनवाते हैं उन्हें प्यारे प्यारे से गीत, और इस कार्यक्रम का हमारे अन्य श्रोता भी लेते हैं भरपूर लुत्फ। और देखिएगा, चूंकि कार्यक्रम सैनिकों के लिए है तो सीधे सी बात हम ये करते हैं कि ये जो देश है ना, ये हमारा प्यारा भारत, इसकी रक्षा तो हमारे सैनिक भाई करते हैं, लेकिन देश प्रेम की जो भावना है वो हर एक श्रोता, हर एक भारतवासी के दिल में बसती है। और देखिएगा, दूसरों के लिए हमारा देश मिट्टी का एक टुकड़ा हो सकता है, एक भूखंड हो सकता है, लेकिन हमारे और आपके लिए ये देश मातृभूमि है। ये वो धरती है जहां पर हम जन्म लेते हैं, जहां का अन्न हम खाते हैं, जहां हम पोषण पाते हैं, जहां हम संरक्षण पाते हैं। और ये संरक्षण कहीं ना कहीं हमारे सैनिक भाई भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए हमें प्रदान कर रहे होते हैं। तो हमारे ऐसे सैनिक भाइयों को हमारा सलाम।

हमारे सैनिक भाइयों ने सुना ये प्यारा सा गीत सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। हिंदुस्तान की कसम के इस प्यारे से गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत सुखविंदर सिंह ने दिया था। और देखिएगा, जिस हिंदुस्तान की बात इस गीत में हुई वो हिंदुस्तान तीन ओर गहरे समुद्र से घिरा है और एक ओर बुलंद हिमालय इस भारत पर सुशोभित है। यानी चारों ओर से भारतीय सीमाओं की रक्षा तो कुदरत ने दी ही है, इसके साथ ही इन

0: सीमाओं पर हमारे सैनिक भाई पूरे जज्बे के साथ, पूरी ताकत के साथ हर समय डटे होते हैं। और श्रोताओं, देखिएगा, भारत में ऋतु परिवर्तन कई बार होता है और इस ऋतु परिवर्तन में तालमेल बिठाने में हम काफी सुविधाजनक महसूस करते हैं अपने घरों पर, कि जैसा मौसम होता है हम अपने उसी मौसम में खुद को ढालने के लिए अपने साजो सामान का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या कभी हम ये सोचते हैं कि जो सैनिक भाई समुद्री तटों पर या बर्फीली हिमालय की चोटियों पर हमारे देश की सीमाओं में डटे हुए हैं, हमारे सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, वो किस तरह से इस मौसम को झेलते होंगे, महसूस करते होंगे और किस तरह से जीवन यापन करते होंगे? बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का वक्त, इस तरह का दौर। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मौसम का जो भाव है, जो मौसम बदलता है, उसका जादू किस तरह से दिलो दिमाग पर चढ़ता है, हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सैनिक भाई मौसम का लुत्फ उठा लें।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

हमारे श्रोताओं ने सुना लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा रविंद्र रावल ने और संगीत दिया राम लक्ष्मण ने। देखिएगा, मौसम का जादू ये महसूस किया होगा जरूर हमारे सैनिक भाइयों ने इस प्यारे से गीत में। और एक और भावना है जो महसूस करने वाले हैं। वास्तव में इस दिन का इंतजार बड़ी उत्सुकता के साथ हमारे सैनिक भाई करते हैं, और वो सैनिक भाई जो अपने घरों से कोसों दूर बड़ी दुर्गम परिस्थितियों में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं, वो भी इन दिनों में अपने परिवार को याद कर रहे होते हैं, और परिवार भी इन दिनों में बड़ी बेसब्री से अपने सैनिक भाई को याद कर रहा होता है। जी हाँ, मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। अब आने वाले दो दिनों में आप देखेंगे हर तरफ राखी की बहार होगी। जी हाँ, बहनें और भाई आपस में मिलेंगे और अपनी भावनाओं का इजहार करेंगे। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी और भाई अपने बहन के सिर पर हाथ रखकर उसकी रक्षा का संकल्प लेगा, वचन देगा। ऐसे में हमारे वो सैनिक भाई जो घर से बहुत दूर हैं, जो घर नहीं आ सकते इस रक्षाबंधन के पर्व पर भी, उन्हें उनकी बहनों ने जरूर राखी भेजी होगी। और अगर नहीं भेजी होगी तो उनमें आपस में, आजकल डिजिटल का समय है, बातचीत तो जरूर हो रही होगी, और कहीं ना कहीं इस डिजिटल युग का फायदा उठाते हुए रक्षाबंधन पर्व को वे मनाएंगे भी। लेकिन फिर भी हम अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम करते हैं जो अपनी बहनों से दूर, अपने परिवार से दूर, इस परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं।

कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में आपने सुना प्यार का देवता फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया। दोस्तों देखिएगा, राखी के त्यौहार पर हर घर आंगन में बहार नजर आएगी, रौनकें नजर आएंगी। और ये बहार, ये रौनकें तभी तक हैं जब तक हमारे सैनिक भाई सीमाओं पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ डटे हैं। तो इस कार्यक्रम में चलते चलते हम सुनेंगे ये प्यारा सा गीत।

लवारिस फिल्म के इस प्यारे से गीत जिसे आवाज़ दी अमिताभ बच्चन, गीत रचना आनंद अनजान की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस प्यारे से गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिडडे मेलोडी। मिडडे मेलोडी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। और श्रोताओं, इस समय जो वक्त है, जो मौसम है, जो समय है, वो बारिश का ही है। उमड़ते घुमड़ते बादल, गरजती कड़कड़ाती बिजलियाँ, जगह जगह पानी, और इस पानी का लुत्फ उठाते लोग, कुछ ऐसा ही मौसम हर तरफ बना हुआ है। इस मौसम को हम और भी खुशनुमा बनाने जा रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: तो श्रोताओं, मुकेश की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत जो भी आपने सुना, हम इस गीत के साथ ही आपको ये बता दें कि आज हम इस महान पार्श्व गायक मुकेश की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर उन्हें याद करेंगे अपने विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार में, जो कि आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर। और श्रोताओं, मुकेश के मस्ती भरे अंदाज के इस गीत के बाद आपको बता दें कि एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम मुकेश के दर्द भरे कुछ नगमे आपको सुनवाएंगे और बात करेंगे मुकेश के जीवन में उनकी उपलब्धियों, उनके गीतों के संबंध में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में, और अब सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और गीत संगीत का कारवां आगे बढ़ रहा है। और जब प्यार का कारवां आगे बढ़ता है तो गीत संगीत सुनने का मज़ा तो कुछ और ही हो जाता है, जैसे कि इस प्यार से गीत को सुनने के साथ आप महसूस भी करेंगे।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को आप सुन रहे थे फिल्म माल रोड के इस गीत में, जिसे लिखा प्रेम बरदोनी ने और संगीत दिया सुदर्शन ने। दोस्तों, प्यार मोहब्बत में भावनाओं का लेन देन होता है, और देखिएगा प्यार के लिए कितना खूबसूरत बात कही जाती है कि प्यार बांटने से बढ़ता है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो बांटने से बढ़ती हो, लेकिन प्यार बांटने से बढ़ता है। और देखिएगा, जब किसी को इस प्यार मोहब्बत में कोई तोहफा मिल जाता है, कोई अपना चाहने वाला मिल जाता है, कोई दिलरुबा मिल जाती है, तो दिल बड़ा बागवान होता है, बड़ी मस्ती में नाच उठता है और पुकार उठता है।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म आशा के इस गीत में। गीत रचना सी रामचंद्रन और संगीत भी सी रामचंद्रन ने दिया। और देखिए श्रोताओं, इसी गीत में हमने ये महसूस किया कि किस तरह से कोई अपनी भावनाओं को किस तरह से उछल कूद में पूरे मस्ती के मूड में बयां करता है, और कोई कोई अपने दिल की भावनाओं को बड़े छुपा कर बड़े संजो कर रखता है, केवल उसी को जताता है जिसको बताना होता है।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना आपने फिल्म शक्ति का ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। और दोस्तों, आप महसूस करते होंगे कि प्यार मोहब्बत के इस खेल में दिल का लेन देन, भावनाओं का लेन देन तो होता ही है, लेकिन बड़ी आसानी से कोई अपना इस दिल को चुरा कर भी ले जाता है।
1: नटखट नैनो वाली देखो चंचल चपल किशोरी, अरे नटखट नैनो वाली देखो चंचल चपल किशोरी, कनक कटोरी चांद चकोरी कर गई दिल की चोरी, हाय कर गई दिल की चोरी चोरी, अरे कर गई दिल की।

अभी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म अंजाम का गीत, जिसे लिखा विश्वेश्वर शर्मा ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया। आइए अब सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत।

बैठे हैं देखो यहाँ शेर बड़े भारी, देश भगत थोड़े काले बाजारी। बैठे हैं देखो यहाँ शेर बड़े भारी, देश भगत थोड़े काले बाजारी, लेके समाज का

लाल बत्ती फिल्म का गीत आपने सुना, मसरूह सुल्तानपुरी का लिखा और संगीत सलील चौधरी का दिया, जिसे गाया मन्ना डे ने। और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, फिल्म बरसात।

मैं चंचल म...

0: पतली कमर है। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक निजी कंपनियों की पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग न हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हांग चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार

कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,259 पर और निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है। श्रीलंका ने भोजन अवकाश तक पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सहयोग के प्रमुख मंचों में शामिल हो गया है। जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सतत विकास को लोगों और समुदायों की जरूरतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और सामुदायिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का आयोजन लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक किया जा रहा है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: रियासत की राजधानी लखनऊ समेत पूरे मुल्क में कल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मजहबी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। महाफिल का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। लखनऊ में वाक़ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने ईद मिलाद उन नबी के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मरकज के सरबरा खालिद रशीद फिरंगी मैली ने तमाम लोगों से एडवाइजरी पर अमल करने की दरख्वास्त की है। कल लखनऊ समेत पूरी रियासत में जुलूस निकाले जाएंगे। इसके लिए दारुल हुकूमत में अमीनाबाद के झंडा वाले पार्क से ऐशबाग ईदगाह तक ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया, जो सुबह 7 बजे से प्रोग्राम के इख्तिताम तक नाफिज रहेगा। रियासत में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बदायूं और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि घाघरा नदी अयोध्या और बलिया की तिरती पार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों में रियासत के मगरबी और मशरकी अजला में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों को आपकी साथी आपकी बहन कजाला खान का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों कैसी हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और साथ ही साथ आज के महिला जगत कार्यक्रम का आनंद ले रही होंगी। बहनों आज आपके लिए लाए हैं, सबसे पहले तो क्रम आधी आबादी रहेगा, उसके बाद परिचर्चा और फिर और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनिए आज का महिला जगत कार्यक्रम। तो बहनों चलिए सबसे पहले चलते हैं क्रम आधी आबादी की ओर और आधी आबादी और बात करते हैं आधी आबादी में। बहनों क्रम आधी आबादी के अंतर्गत हम बात करते हैं हीरबाई इब्राहिम लोदी की। बहनों हीरबाई इब्राहिम लोदी अपने में एक बहुत ही प्रेरणादायक शख्सियत थी। गुजरात की धरती से निकलकर हीरबाई ने यह साबित किया कि बदलाव लाने के लिए ऊंची आवाज नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। बहनों वो महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही जागरूक रहती थी। वो बताती थी,
1: मेरा नाम है हीरबाई बेनी फ्रॉम अटक लोबी गांव जांबू तलाड़ा तालुको जिलो सोमनाथ ने गुजरात में मेरे रहने वाली।
2: मारे और तो मैटे में गरीब रेखा माथे काम करती हूँ जी। गरीब घर है इसने बच्चे को पढ़ाई में ध्यान वतारे में वतारे देती हूँ। अपने समाज सेवा करती हूँ नाना मोटा गांव की 19 गांव है इसमें नानी मोटी सेवा करती हूँ। अरे हाँ और तो मेरा एक जिंदगी का सफर मिल गया मुझे।
0: बहनों उन्होंने अपने साहस संघर्ष और समाज सेवा से अपने समाज में एक पहचान बनाई थी। ऐसे दौर में जब महिलाओं की शिक्षा सामाजिक और भागीदारी को सीमित माना जाता था, हीरबाई ने समाज के बीच रहकर महिलाओं और वंचित समुदाय के अधिकारों के लिए लगातार काम किया।
1: बहनों को बचत मंडल बनाती बचत मंडल बनाते हूँ। 10 रुपये थी शुरू करे है, आज 100 रुपये फूक गया। अतरे बेनू के मेरी जरूरत नहीं रहती, बेनू हाथी जमा करी आवे उपारी आवे जरूर प्रमाणे ने इसके पढ़ाई में बहुत ध्यान देती है, आरोग्य में ध्यान देती है। मैं जिसना काम करा ऐसा मैं आम झूठा बोल के नहीं बताती हूँ। अपना अपना काम बाजार में आया है, अपने मार्केट में मिला है, अपने ऐसा काम करा है कि मैं बेनू को बचत मंडल सिखाती हूँ। गरीब रेखा को इसके घर में काट काट के मैं बेट सुधी पुगाड़ू, इन बच्चों को निशा रोटी पुगाड़ू, ऐसा काम करती हूँ।
0: बहनों हीरबाई इब्राहिम लोदी का जन्म 1960 को गुजरात के जांबूर गांव में हुआ था। हीरबाई इब्राहिम लोदी को 2023 में सिद्धि जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। बहनों उनका मानना था कि किसी भी समाज की असली तरक्की तभी संभव है जब उस समाज की बेटियाँ पढ़ें, आत्मनिर्भर बने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर की हिस्सेदारी में शामिल हूँ। बहनों उनकी यही सोच उनके सामाजिक कार्यों की सबसे बड़ी ताकत बनी है। उन्होंने महिलाओं को यह समझाया कि अपने अधिकारों को जानना, उनके लिए आवाज उठाना किसी एहसान की बात नहीं बल्कि ये सब हम महिलाओं का अधिकार है। बहनों उनकी पहचान एक समाज सेविका के रूप में ही नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत के रूप में बनी जिसने समुदाय के बीच में समानता, भाईचारे और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। बहनों उन्होंने यह दिखाया कि बदलाव घर से शुरू होकर पूरे समाज तक पहुंच सकता है। हीरबाई इब्राहिम लोदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा, हिम्मत और सेवा का रास्ता नई उम्मीद पैदा करता है। उनकी बातें आज भी हर उस महिला को प्रेरित करती हैं जो अपने सपनों को सच करना जानती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना जानती है। बहनों सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनकी खुद की औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी लेकिन उन्होंने रेडियो सुनकर सरकारी योजनाओं और जैविक खाद जैसी तकनीकों की जानकारी हासिल की और फिर वो सारी जानकारी वो अपने समुदाय की महिलाओं तक पहुँचाती थी। बहनों 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति जी के हाथों जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो वो क्षण उनके लिए और उनके समुदाय के सब लोगों के लिए एक विस्मरणीय क्षण था।
1: मैंने इतनी बड़ी खबर न थी कि भाई मोदी साहब ना दिल में हमारे काम गई किकने की हो की ऊपर वाला की मेहरबानी, राजभवन की मेहरबानी, राष्ट्रपति की मेहरबानी, इसने मेरा होट मिला तो मैंने बहुत खुशी हुई की भाई मैं मेरे समाज में काम कर सकूं।
0: बहनों हीरबाई इब्राहिम लोदी हम महिलाओं के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक मिसाल है।
3: चलिए बहनों, अब चलते हैं संदेशों की ओर और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: चंदन का एहसास।
1: संदेशों के बाद आप सभी का दोबारा स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। बहनों, आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाओं में बहुत ही मानसिक तनाव रहने लगा है। इसकी मुख्य वजह होती है कि क्योंकि ज्यादातर महिलाएं कामकाजी भी होती हैं और घर भी संभालती हैं। इन दोहरी जिम्मेदारियों की वजह से वो तनाव में रहती हैं। घर की जिम्मेदारियों में बच्चे भी होते हैं, पति भी होते हैं, और अगर ज्वाइंट फैमिली है तो सास ससुर वगैरह भी शामिल होते हैं, तो थोड़ा तो जिम्मेदारियों के बोझ से तनाव होना ही है। तो बहनों, दोनों तरफ का बोझ उन पर होता है, तो फिर चलिए सुनते हैं इसी पर एक परिचर्चा। और परिचर्चा का विषय है, बहनों परिचर्चा, चलिए सुनते हैं परिचर्चा। परिचर्चा का विषय है महिलाओं में मानसिक दबाव। इसमें प्रतिभागी हैं डॉक्टर प्रियंका, लेक्चरर इन साइकोलॉजी, डॉक्टर कीर्ति यादव, लेक्चरर इन साइकोलॉजी, और संचालन कर रही हैं प्रियंका त्यागी। तो बहनों चलिए सुनते हैं फिर एक परिचर्चा।
2: एक मुस्कुराता चेहरा हमेशा खुश हो, यह जरूरी नहीं। कई बार किसी की मुस्कान के पीछे छुपा होता है तनाव, चिंता और मन का बोझ। आज की परिचर्चा में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो अक्सर दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर ही भीतर इंसान को प्रभावित करता है, और वो है तनाव। बात करें महिलाओं की, तो जिम्मेदारियों के बीच जब वह खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती तो तनाव धीरे धीरे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगता है। तो बहनों, इसी से संबंधित हमारी आज की परिचर्चा का विषय है महिलाओं में मानसिक तनाव।

0: आओ। इस विषय पर संचालन के रूप में मैं रहूंगी प्रियंका त्यागी और हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान हैं, तो सबसे पहले कराते हैं आपका उनसे परिचय। आप हैं
1: डॉक्टर कीर्ति यादव, प्रवक्ता मनोविज्ञान, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज हस्तिनापुर।
0: मैम आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैम आप हैं?
2: प्रियंका, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मेरठ से हूँ।
0: हमारी दोनों प्रतिभागी डॉक्टर कीर्ति यादव और डॉक्टर प्रियंका, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में मानसिक तनाव के बारे में, तो डॉक्टर प्रियंका सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं में मानसिक तनाव से हम क्या समझते हैं, क्या स्थिति होती है ये?
2: महिलाओं में मानसिक तनाव की अगर हम बात करें तो मानसिक तनाव वह स्थिति है जिसपे महिलाओं के जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वो हार्मोनल हो या जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हों, जिस चुनौतियों के लिए वो सामना ना कर पा रही हो, परेशानी का अनुभव कर रही हो, वो उसको तनाव देता है, उसी को हम मानसिक तनाव कह सकते हैं।
0: डॉक्टर कीर्ति, जैसे कि आप मनोविज्ञान की शिक्षिका है, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में?
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को हर स्तर पर दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है और इस कारण कभी कभी वो तनाव में आ जाती हैं, क्योंकि उस भावनात्मक और सामाजिक संतुलन बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस संतुलन को बैठाने के लिए उन्हें तनाव का सामना करना पड़ता है और तनाव किसी भी स्तर पर उनको आके परेशान कर सकता है।
0: जैसे कि कई बार महिलाएं दोहरी भूमिका निभाती हैं, चाहे वो घरेलू हो या कामकाजी हो, तो डॉक्टर प्रियंका आपसे जानना चाहेंगे कि उनको मानसिक तनाव किस तरह प्रभावित करता है?
2: देखिए, महिलाओं के मन को ही नहीं शरीर को भी तनाव प्रभावित करता है, तो उनकी घरेलू जो जीवन है या उनका कामकाजी जो जीवन है, हर तरह के जीवन को प्रभावित करता है, पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है और सामंजस्य बिठाने में उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है।
0: क्योंकि एक महिला जब वो घर पर भी काम कर रही है, फिर जल्दी जल्दी उसको ऑफिस भी जाना है, बच्चों को संभालना है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि दिमाग में टेंशन हो ही जाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, दिमाग में टेंशन हो ही जाती है। महिलाएं दोहरी भूमिकाएं निभाती हैं, कामकाजी भी हैं वो, आजकल जैसे हम देख रहे हैं वर्किंग वुमेन है, और घर में भी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ भी उनको ढोना पड़ रहा है, तो दोनों पे सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल काम है। इसी के कारण से तनाव बहुत बार उत्पन्न होता है महिलाओं में।
0: डॉक्टर कीर्ति, आपके क्या विचार है इस बारे में?
1: आज सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के सामने ये है कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है
0: जी,
1: और इसी प्रूव करने के चक्कर में कई बार उनके सामने ऐसी कुछ चुनौतियां आ जाती हैं जिसके कारण वो तनाव में आ जाती हैं, और उसी तनाव का असर उनके शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर पड़ता है, और जब शारीरिक स्तर पर पड़ेगा तो बहुत सारी परेशानियां वो लेकर के आ सकता है। शारीरिक परेशानियां जैसे आमतौर पर महिलाओं को हम देखते हैं कि उनके गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, चक्कर है, जिनके वास्तव में कोई कारण नहीं होते, सिर्फ ये उन अपेक्षाओं के कारण है जो हमारे समाज ने हमें दी हैं, जिनको वो पूरा नहीं कर पाती हैं, जिन चुनौतियों को वो पूरा नहीं कर पाती हैं और उसे किसी से व्यक्त भी नहीं कर पाती हैं, इस कारण से उनमें तनाव उत्पन्न होता जाता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, कुछ महिलाओं की कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि मासिक धर्म, गर्भावस्था, रजोनिवृत्ति, तो ऐसे हार्मोनल बदलाव महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं? डॉक्टर कीर्ति आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, महिला का जीवन बड़े एक चक्र के अनुसार चलता है
0: जी।
1: पहले वो पालन पोषण उसका कहीं होता है, फिर वो शादी करके कहीं चली जाती है, और इस सब के बीच में उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसका शारीरिक बदलाव होता रहता है। शारीरिक बदलाव में बहुत सारी चीजें होती है, जब किशोरी होती है लड़की तो उसमें मासिक धर्म की जो समस्याएं शुरू हो जाती हैं, उनके कारण उन्हें तनाव आ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है, बच्चों को लगता है कि हम किसी परेशानी में हैं, ये एक सामान्य चीज नहीं
0: जी,
1: है
0: जी।
1: इसके बाद जब महिला की विवाह हो जाता है, विवाह के बाद उसको जब प्रसव होता है, प्रसव के समय बहुत सारी परेशानियां आती हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि जीवन में उसका एक चक्र ऐसा चल रहा है जो निरंतर परिवर्तित होता जा रहा है। इसके बाद जब समस्या आती है रोजा निवृत्ति, और इन सबके बीच में सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि वो हमारा हार्मोनल चेंज होता रहता
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: और उस हार्मोनल चेंज के कारण हम अपने शरीर के बदलाव के साथ तो एडजस्ट कर ही रहे हैं, साथ साथ हमें समाज के साथ, परिवार के साथ, अन्य जिम्मेदारियों के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं में तनाव ज्यादा हो जाता है, और ये तनाव उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर ज्यादा इफेक्ट करता रहता है।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ऊपर से अगर परिवार का सहयोग ना मिले तो ऐसे में तनाव की स्थिति और भी बढ़ जाती है। डॉक्टर प्रियंका आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में परिवार की क्या भूमिका होती है, किस तरीके से वो सपोर्ट कर सकते हैं?
2: परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है महिलाओं के मानसिक तनाव को दूर करने में या उस समस्या से जूझने में, किस तरह से उनको भावात्मक रूप से वो सहयोग कर सकती है। परिवार भी एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसा सहयोग है, एक ऐसा पिलर है जो हमेशा महिला के साथ खड़ा रहता है, और उसको भावनात्मक रूप से ही नहीं, सामाजिक रूप से और उसको आर्थिक रूप से सहयोग करता है इस तनाव को दूर करने के लिए। परिवार में बच्चे हैं, शादी से

0: मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, या फिर हस्बैंड है, हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है,
1: जी
0: दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार ये होता है परिवार के लोग हमें समझ नहीं रहे होते हैं, महिलाओं को समझ नहीं रहे होते हैं कि क्या हमारे साथ चल रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हॉर्मोनल, और क्यों हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ापन या तनाव आ रहा है, क्यों हम इतना झुंझला रहे हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए और उनको सहयोग करना चाहिए, और वो बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, अगर परिवार महिला को समझेगा तो बहुत बड़ा सहयोग रहेगा और महिलाएं आसानी से इस स्थिति को कवर अप कर सकती है।
1: एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर कीर्ति, हमारे समाज में आज भी अक्सर लोग मानसिक परेशानी को लेकर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं संकोचवश, तो मानसिक तनाव की स्थिति में अपनी बात साझा करना क्या मददगार साबित हो सकता है?
2: जी बिल्कुल मददगार साबित हो सकता है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक महिला को हमें एक ऐसा सुरक्षित वातावरण देना है जहां वो ये समझ सके मैं अपने बारे में बता सकती हूँ और मुझे कोई सुनने वाला है।
1: जी जी
2: यदि ऐसा होगा तो महिला अपने बारे में बात करने में ज्यादा सहज महसूस करेगी और अपनी परेशानियों को ज्यादा सहजता से बता सकेगी। और परिवार ऐसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि परिवार हमारा एक समाज की इकाई है, और परिवार के बाद यदि महिला कहीं जाती है तो वो समाज में जाती है।
1: जी
2: यदि समाज में उसे ऐसा वातावरण दिया जाएगा जहां उसकी भावनाओं को समझा जाएगा, उसकी उपेक्षा नहीं की जाएगी, उसे ये नहीं कहा जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, या उसे ये नहीं कहा जाएगा कि परिवार की प्रतिष्ठा के कारण आप चुप रहो, तो वो ज्यादा ढंग से अपने आप को व्यक्त कर पाएगी। और जब हम व्यक्त कर पाते हैं तो बहुत से तनाव से हम मुक्त हो पाते हैं। भावनाओं को दबाना आवश्यक नहीं है, भावनाओं को व्यक्त करना जहां तक मैं समझती हूँ आवश्यक है, और उसके लिए हमें महिलाओं को बेहतर वातावरण देने की जरूरत है।
1: हमें कोई भी बात, एक तो ये है कि छुपानी नहीं चाहिए, और अगर हम परिवार के सदस्य को भी वो बात नहीं बता पाते हैं तो अपने किसी खास दोस्त को बता देनी चाहिए। डॉक्टर प्रियंका, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में?
0: मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी, मित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर एक के जीवन में, महिलाओं के जीवन में भी मित्र की जरूरत होती है, लेकिन कई बार पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, घरेलू जिम्मेदारियों के कारण मित्र पीछे छूट जाते हैं, सहेलियां पीछे छूट जाती हैं, लेकिन उन सहेलियों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब महिला किसी मानसिक तनाव से गुजरती है तो कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसी सहेली जरूर होनी चाहिए, कोई ऐसा सदस्य है हमारे पास जरूर होना चाहिए जिससे हम अपने विचार, अपने भाव साझा कर सके, महिला अपना जो तनाव है उसको साझा कर सके, और तनाव या भाव साझा करने से तनाव आधा रह जाता है। तो स्ट्रेस का इलाज जरूरी नहीं है, चिकित्सा जरूरी नहीं है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है।
1: तो हम आपसे कुछ ऐसे आसान उपाय जानना चाहेंगे जिन्हें महिलाएं अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपने तनाव को कम कर सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनको अडॉप्ट कर महिलाएं अपने तनाव को दूर कर सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि तनाव को दूर करना या उसका चिकित्सा करना, वो एक पूरी तरह से ना तो आप तनाव को दूर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तनाव जरूरी है कार्यों में प्रेरणा लेने के लिए, थोड़ा सा तनाव लेना जरूरी है, लेकिन जब वो हद से, एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वो हमें परेशान करने लगता है, वो स्थिति होती है जहां उसको मैनेज करना होता है, जिसे हम कहते हैं तनाव प्रबंधन। उसमें कई सारे उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला तो है भरपूर नींद लेना, जो महिलाएं अपने स्वास्थ्य के साथ जो समझौता करती हैं उनको नहीं करना चाहिए, यानी भरपूर नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर खाना खाना चाहिए, एक जैसे मैंने पहले कहा कोई एक मित्र, कोई सहेली, कोई ऐसा सदस्य जिसके साथ वो अपने भाव साझा कर सकती हो, अपने विचार साझा कर सकती हो, अपनी इच्छाएं जो उसकी हैं उनको साझा कर सकती हो बेझिझक होकर। ये ना सोचे कि वो कैसे उसको जज करेगा, कैसे उसके बारे में सोचेगा, बेझिझक होकर वो अपनी बात कह सकती हो।
1: डॉक्टर कीर्ति यादव भी लगता है इस बारे में कुछ हमसे कहना चाह रही है तनाव प्रबंधन को लेकर।
2: जी मैं एक बात जरूर कहूंगी, महिलाएं अक्सर के घरेलू काम के चक्कर में अपनी जो मी टाइम है उसे भूल जाती हैं। मुझे लगता है कि वो मी टाइम उनके लिए बहुत ऐसी औषधि के रूप में काम करेगा जो उनको बहुत फलदायक होगी, क्योंकि यदि वो मी टाइम देंगी, अपने ऊपर समय देंगी, अपनी इच्छाओं के ऊपर समय देंगी, अपने जो उनके दबे हुए भाव हैं उन्हें निकालने के लिए समय देंगी, और ऐसे कुछ शौक रखती होंगी, हर महिला रखती है जिससे वो सृजनात्मकता चीजें कर सकती है, उन चीजों के लिए यदि वो समय देगी तो तनाव निश्चित तौर पर कुछ कम ही होगा। जैसा मैडम ने कहा है, अभी प्रियंका मैम ने कहा है कि तनाव प्रबंधन, तो तनाव प्रबंधन में एक तो मी टाइम और एक सृजनात्मकता, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तनाव को कम करने के लिए।
1: और ऐसे टाइम में जैसे कई बार होता है महिलाओं में कुछ अपने हुनर होते हैं, उनके शौक होते हैं, तो स्ट्रेस कम करने में हमारी हॉबीज हैं जो शायद पहले कभी छूट गए हैं, तो हम उनको फिर से शुरू कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कोरोना टाइम में महिलाओं ने सबसे ज्यादा रील बनाई है, और किन महिलाओं ने बनाई है, जो बिल्कुल पारिवारिक थी, जिनको बाहर जाने के अवसर बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं थे, और उन्होंने अपने घरेलू चीजों की ही रील बना बना के, व्लॉगिंग कर करके डाला है, और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया है, जिससे उन महिलाओं में आत्मविश्वास तो आई, साथ ही साथ वो आत्मनिर्भर भी बनी है, और इसी आत्मनिर्भरता के कारण उनके तनाव बहुत हद तक कम हुए हैं। यदि ऐसी महिलाओं से बात की जाती है तो बहुत सी अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस वो शेयर करती हैं और आती हैं कि

0: पहले कैसे हम अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता नहीं थी, और किस प्रकार से हम जब व्लॉगिंग करने लगे, अपने हुनर को हमने आगे बढ़ाया और परिवार को हमने आर्थिक सहायता दी है, तो किस प्रकार से उनका परिवार में भी सम्मान काफी हद तक बढ़ा है।
1: क्योंकि जो कोरोना काल था वो हम सभी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा था। लॉकडाउन में सभी अपने अपने घरों में बंद रहे, तो उस समय तो सभी के लिए तनाव की बहुत स्थिति थी। ऐसे समय में महिलाओं ने अपनी छिपी प्रतिभाओं को बाहर निकाला, एक नई शुरुआत की, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट रहा। अब एक सवाल ये आता है कि अगर कोई महिला लंबे समय से तनाव से गुजर रही है, तो पहला कदम उसे क्या उठाना चाहिए और कब विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी हो जाता है? डॉक्टर प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे।
2: सबसे पहले तो कोई अगर तनाव महसूस कर रही है, तो सबसे पहले उसे अपने परिवार के सदस्यों से बात करनी चाहिए, अपने भाव, विचार, अपेक्षाएं, जो भी वो महसूस करती है, जो भी उसकी भावनाएं, उसको व्यक्त करना चाहिए। व्यक्त करने से तनाव वादा होता है। अगर वहां से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, अपने मित्रों से बात करनी चाहिए, समाज में और लोग जो भी जिनसे वो अपनी बात कह सकती है उनसे बात करनी चाहिए। फिर भी उसका तनाव अगर दूर नहीं होता, उसको लगातार परेशान किए जा रहा है, उसको लगातार नींद नहीं आ रही है, उसका हेल्थ खराब हो रहा है, फिजिकल हेल्थ खराब हो रहा है, तो उसको चिकित्सक के पास बेझिझक होकर जाना चाहिए। जो समाज में एक टैबू बना रखा है कि नहीं, अगर हम चिकित्सक के पास जाएंगे तो हम पर पागल का एक टैग लग जाएगा या कलंक लग जाएगा, उसको दूर करने, इस तरह के टैबू को दूर करने के लिए, या ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल बगैर किसी झिझक के, बगैर इंतजार के चिकित्सक की सलाह हमें लेनी चाहिए, मशवरा लेना चाहिए जरूर।
0: देखिए, इस विषय पर मैं भी कुछ अपने विचार रखना चाहूंगी।
1: जी जरूर डॉक्टर कीर्ति, आपके विचार भी जानना चाहेंगे।
0: जी, जैसा प्रियंका मैडम ने कहा है, बिल्कुल ठीक बात कही है कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना चाहिए।
1: जी,
0: भरोसेमंद व्यक्ति से बात भी करना चाहिए, साथ साथ ये महिला की खुद की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने लक्षणों पर नजर रखे। यदि महिला लंबे समय से किसी तनाव में है, तो अपने लक्षणों को ध्यान दे, और उस ध्यान देने के साथ साथ चिकित्सक के पास जाने में या विशेषज्ञ के पास जाने में वो झिझक ना करे, बेझिझक जाए, क्योंकि मदद मांगना हमारी कमजोरी नहीं है, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, तनाव में रहना जरूरी नहीं है।
1: डॉक्टर कीर्ति, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता लगता है कि हम मानसिक दबाव में हैं या हमें कोई मानसिक बीमारी भी है?
0: देखिए, मानसिक तनाव में रहना मानसिक बीमारी नहीं है।
1: जी,
0: जब लंबे समय तक हम किसी तनाव में रहते हैं, तो कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि वो मानसिक बीमारी को ले आए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। जो आपने पूछा लक्षणों की बात, तो आमतौर पर महिलाओं को, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों के प्रति उन्हें सजग रहना पड़ता है, दोहरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, तो महिलाओं को आमतौर पर जो दर्द की समस्याएं होती है, देखिए जैसे महिलाओं में आम समस्या होती है चक्कर आना, सर दर्द
1: जी,
0: और कमर में जकड़न, पेट खराब, ये सारी समस्याएं जब महिलाओं को लक्षण और या संकेतक के रूप में दिखाई देने लगते हैं, और ये लंबे समय तक यदि चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें अपने परिवार में बताना चाहिए, परिवार के व्यक्तियों को सहयोग करना चाहिए, और विशेषज्ञ से सलाह लेने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए।
2: इसी क्रम में मैं भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसे कि कीर्ति मैम ने कहा कि हर तनाव एक मानसिक बीमारी नहीं है, वो बहुत सारी बीमारियों का एक प्लेटफॉर्म हो सकता है कि आगे चलकर वो बीमारियां बन जाएं, लेकिन वो एक मेंटल कंडीशन है, उससे निकला जा सकता है। तो ये ना समझे कि मानसिक बीमारी, अगर कोई महिला तनाव से निरंतर गुजर रही है, लगातार गुजर रही है, तो उसे कोई मानसिक बीमारी हो गई, एक मानसिक बीमारी नहीं है। मानसिक तनाव एक स्थिति है, हर व्यक्ति हर दिन किसी ना किसी तनाव से गुजरता ही रहता है। जैसा कि हम कुछ काम करते हैं नया, या जो भी दैनिक हमारे शेड्यूल होता है उसको फॉलो करने में मानसिक तनाव होता ही रहता है, लेकिन जब वो काम खत्म हो जाता है, तनाव हमारा दूर हो जाता है। लेकिन कई बार बगैर किसी कारणों के, जब हमें स्पष्ट समझ में नहीं आता, निरंतर तनाव बना हुआ होता है, तो वो एक संकेत करता है कि ये स्थितियां खराब जा रही है और ये आगे चलकर मानसिक बीमारी बन सकती है। तो तनाव एक मानसिक बीमारी नहीं है, एक स्थिति है या एक शुरुआत हो सकती है।
1: जी बिल्कुल, अगर हम ध्यान रखें तो इस स्थिति से बचा जा सकता है। एक और खास सवाल आपसे करना चाहेंगे डॉक्टर प्रियंका, आपसे, क्या हमें महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अपनी सोच में भी बदलाव लाने की जरूरत है?
2: बिल्कुल, सोच में परिवर्तन करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, हमेशा ही संकोच की स्थिति में होती हैं, कहें ना कहें क्या फील कर रही हैं, वो हमेशा ही अन्य जिम्मेदारियों को पहले रखती हैं, प्राथमिकता देती हैं, अपने अपने मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को द्वितीयक रखती हैं। तो जरूरी है कि समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए। अगर कोई महिला कह रही है कि लगातार मेरे सिर में दर्द है, वो चिड़चिड़ा रही है, उसके व्यवहार में लगातार परिवर्तन आ रहा है, काम में उसको लेजीनेस फील हो रही है, हमेशा बीमार, थका थका वो महसूस कर रही है, तो जरूरी नहीं है शारीरिक बीमारी के लक्षण हो, ये मानसिक तनाव के लक्षण भी हो सकते हैं। और अगर हम अपनी सोच बदलेंगे, तो हम अपना दृष्टिकोण बदलकर ये भी सोच सकते हैं कि कोई महिला मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रही हो सकती है। तो इस तरह से हम अपनी सोच को परिवर्तित करके या बदल

0: और अपनी नींद पर किसी भी तरह का कोई समझौता ना करें, जितनी जरूरत हो उस आवश्यकता अनुसार नींद लेनी चाहिए उन्हें और पोषक आहार लेना चाहिए और योग या फिर एक्सरसाइज कुछ भी ऐसा वो अपनी दिनचर्या का हिस्सा उन्हें बनाना चाहिए।
1: डॉक्टर कीर्ति, आपका क्या संदेश रहेगा हमारी श्रोता बहनों के लिए?
2: देखिए, मैं ये कहूंगी कि श्रोता बहनों, आप सभी और हम सभी निश्चित तौर पे किसी न किसी तनाव में रहते ही हैं, तो ये हमारी प्राथमिकता बन जाती है। जैसे हम शारीरिक समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार से हमें मानसिक समस्या यदि कुछ हो रही है, यदि हम तनाव में हैं, तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उस मानसिक स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी एक महिला को खुद लेनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, तनाव में रहना जरूरी नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखें और प्रयास करें। यदि आप परेशानी में हैं, किसी तनाव में हैं, तो जरूर मदद मांगे। मदद मांगना शर्म की बात नहीं है, बहुत हौसला चाहिए मदद मांगने के लिए भी, और तनाव में रहना जरूरी ही नहीं।
1: तो आज की परिचर्चा से यही बात सामने आती है कि मानसिक तनाव को छिपाना नहीं और समय रहते संभालना जरूरी है। डॉक्टर कीर्ति यादव और डॉक्टर प्रियंका, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और महिलाओं में तनाव विषय पर बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहनों, अभी हम सुन रहे थे परिचर्चा, और परिचर्चा का विषय था महिलाओं में मानसिक दबाव, और इसमें प्रतिभागी थी डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर कीर्ति, और संचालन कर रही थी प्रियंका त्यागी। चलिए बहनों, अब बातों के साथ साथ कुछ मनोरंजन भी हो जाए, और चलिए फिर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, अब धीरे धीरे कार्यक्रम का समय पूरा होता जा रहा है, तो आपको कार्यक्रम के विषय में क्या विचार हैं ये बताने के लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम महिला जगत द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो बहनों, आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ बहनों, आप अपनी कार्यक्रम के विषय में प्रतिक्रिया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकती हैं। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9457078288। तो इसी के साथ आज के महिला जगत कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की अपनी बहन गजाला खान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विविध कलाकारों की आवाज में पंजाबी लोकगीत। तो लीजिए, प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का ये पहला पंजाबी लोकगीत।

0: बंदा सोचे सौ सौ गल्ला होनी सब तो डाडी, बंदा सोचे सौ सौ गल्ला होनी सब तो डाडी। मान दे वास दी गल न कोई लिखियां तुरत कदीरां जान न टालणियां, सुपने दे विच दे गया यार वखालणियां, सुपने दे विच दे गया यार वखालणियां।
1: इस लोक संगीत के बाद आइए श्रोताओं कार्यक्रम के अंतिम चरण में सुन लेते हैं एक और ये पंजाबी लोकगीत।
0: आज गवांडण मेरी दमंजा सीटी मार के जरक पिया
2: छड़िया, फिर की होया
0: फिर तुन तुन तुम्बा खड़क पिया फिर

0: तुण तुण तुम्बा खड़क पे आ फिर तुण तुण।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों की आवाज में।

0: additional $1.03 lakh fee for all H-1B cap subject petitions. And in Test cricket, Sri Lanka trailed by 332 runs, losing 6 wickets in the first innings at Colombo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग जी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
4: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
5: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
6: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
1: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
7: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
8: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
9: We want to create global standard air cargo facilities across the country.

0: इंडिया की फुकेट दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000 अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे।

0: होंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मुकेश। कार्यक्रम एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम लेकर आपके बीच मैं हूं आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। दोस्तों, मुकेश को हम इस कार्यक्रम में आज याद करने वाले हैं और उनको याद करने का एक बहुत ही बड़ा कारण हम आपको बता दें कि हम 2 दिन के बाद यानी 27 अगस्त को मनाएंगे महान पार्श्व गायक मुकेश की पुण्यतिथि। जी हाँ, और उनकी पुण्यतिथि पर आज उसकी पूर्व संध्या पर ये विशेष कार्यक्रम लेकर हम आपके बीच हैं और मुकेश के जीवन से जुड़ी कुछ बातें हम आपके साथ साझा करेंगे और साथ साथ लेंगे उन्हीं के गाए कुछ दर्द भरे गीतों को हम महसूस करेंगे, उनकी भावनाओं को, उनकी कलात्मकता को और उनकी गायकी को। देखिएगा, गायकी के क्षेत्र में यूं तो मुकेश ने हर मूड के गाने गाए हैं, हर मूड के गीतों को अपनी आवाज दी है, लेकिन अगर बात करें मुकेश के वास्तविक मूड की तो मुकेश एक तरह से दर्द भरे गीतों के गायक के रूप में पहचाने गए हैं। और आपको ये बता दें कि हम मुकेश को एक ऐसी पहचान मिली उस दौर में कि उन्हें त्रासदी का राजा कहा गया। जी हाँ, त्रासदी का राजा इसलिए कहा गया कि दर्द भरे गीतों को मुकेश ने निरंतर अपनी आवाज दी और उन्हें जीवंत किया और उनकी आवाज को सहस्राब्दी की आवाज के रूप में भी पहचाना गया। आज इन महान गायक को हम दे रहे हैं श्रद्धांजलि उन्हीं के गाए गीतों के साथ।

दोस्तों, यूं तो दर्द भरे फिल्मी नगमों को मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, आशा भोंसले, मन्ना डे और उस दौर के महान गायकों ने अपनी सुरमई आवाज़ देकर उन्हें अमर कर दिया। लेकिन जब जब हम मुकेश की आवाज़ में कोई दर्द भरा गीत सुनते हैं तो ये महसूस करते हैं कि मुकेश और दर्द शायद दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

0: इस गीत के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि

हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आज के कलाकार महान पार्श्व गायक मुकेश। दोस्तों, मुकेश यूं ही मुकेश नहीं हो गए, कठिन साधना संगीत के क्षेत्र में आपने की। लेकिन संगीत की दुनिया में आने से पहले क्या थे मुकेश? मुकेश का पारिवारिक जीवन बड़ी कठिनाइयों में गुजरा। उन कठिनाइयों के दौर से बाहर निकलने के लिए मुकेश को अपनी छोटी सी उम्र में भी नौकरी का सहारा लेना पड़ा और एक छोटी मोटी नौकरी उन्होंने लोक निर्माण विभाग में तलाशी। न केवल तलाशी बल्कि उस पर कुछ समय काम भी किया। लेकिन लक्ष्य बड़ा था, सोच नहीं थी और कुछ ऐसा करना था जिसे मुकेश चंद माथुर को लोग मुकेश के नाम से पहचाने। एक अलग पहचान, एक अलग अंदाज। और ना केवल पहचान और अंदाज बल्कि मुकेश दूसरों के लिए जीना चाहते थे। मुकेश दूसरों के दर्द को महसूस करना चाहते थे और उसे अपने गीतों में आवाज देना। मुकेश ने ही लोगों को बताया, समझाया। और देखिएगा, यही वजह है कि आज हम इस कार्यक्रम में मुकेश के दर्द भरे गीतों को आपके बीच लेकर आए हैं, क्योंकि मुकेश ने हर खासवाम के दर्द को जिया है अपने गीतों के माध्यम से। और देखिएगा, संघर्षपूर्ण जीवन की हम उनके बात कर रहे थे, तो आपको बता दें कि गायन शैली में आने से पहले मुकेश ने जो संघर्ष किया उसमें कुछ ऐसा हुआ कि मुकेश की बहन को उनके घर संगीत की विद्या देने के लिए शिक्षक आया करते थे और मुकेश बराबर वाले कमरे में बैठकर संगीत को सुना करते थे और ये महसूस करते थे कि वे संगीत वे भी सीख रहे हैं और उन पर ऐसी एक कलात्मक शक्ति का एहसास हुआ कि वे इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए। आपको यह भी बता दें कि मुकेश के लिए शैलेंद्र हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी, योगेश गुलजार, प्रेम धवन, आह सीतापुरी ने भी गीत लिखे हैं। लेकिन मुकेश केवल आवाज के ही बादशाह नहीं थे बल्कि एक अच्छे गीतकार और संगीतकार भी थे। अनेकों गीतकारों के गीतों को आवाज देकर उन्हें अमर कर देने वाले मुकेश ने साल 1963 में आई एक फिल्म दिल ही तो है के लिए गीत लिखा। हमने आपसे कहा कि मुकेश ने दूसरों के जीवन को जीकर देखा है अपने गीतों के माध्यम से, उन गीतों को आवाज देकर। आइए सुनते हैं एक और ऐसा प्यारा सा गीत।

प्यारे प्यारे से गीत, वो भी दर्द भरे गीत आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में, कार्यक्रम एक ही कलाकार। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। इस कार्यक्रम में बना हुआ हूं मैं आपके साथ, आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। और दोस्तों, मुकेश के एक रूप को आपने पहचाना कि मुकेश न केवल एक गायक थे बल्कि एक सशक्त गीतकार भी थे। उन्होंने गीत रचना भी की। और आपको बता दें कि मुकेश एक हरफन मौला कलाकार के रूप में उस समय सामने आए जब मुकेश ने अपने अभिनय को भी साबित करके दिखाया। जी हाँ, मुकेश ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1941 में फिल्म निर्दोष से की, जिसमें नलिनी जयवंत उनकी नायिका थी। और उनकी दूसरी फिल्म 1943 में अदब अर्ज थी, ये आई। और उन्होंने 1953 में राज कपूर की फिल्म आह में अतिथि की भूमिका निभाई। उन्होंने 1953 में फिल्म माशूका में सुरैया के साथ और फिल्म अनुराग में, वे फिल्म में सह निर्माता और संगीतकार के रूप में भी

अतिथि की भूमिका निभाई। उन्होंने 1953 में फिल्म माशूका में सुरैया के साथ और फिल्म अनुराग में वे फिल्म में सह निर्माता और संगीतकार के रूप में भी नजर आए। मुकेश ने डार्लिंग फिल्म्स के साथ फिल्म मल्हार का निर्माण भी

0: दोस्तों, गीत संगीत का भी आप आनंद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं मुकेश के जीवन से जुड़ी कुछ खास घटनाएं, कुछ खास बातों के बारे में भी आप जानकार हो रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं एक जरूरी संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार महान पार्श्व गायक मुकेश। और दोस्तों, मुकेश वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी अलग पहचान बनाई। न केवल पहचान बनाई बल्कि कई पुरस्कार भी उन्होंने हासिल किए। आपको बता दें कि साल 1967 में फिल्म तीसरी कसम के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मुकेश ने हासिल किया। और दोस्तों, साल 1968 में मिलान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार हासिल किया मुकेश ने। और 1970 में सरस्वती चंद्र के लिए भी सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में आपने पुरस्कार हासिल किया। लगातार उपलब्धियों को हासिल करते हुए मुकेश अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे और फिर धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता वे अपने जीवन के अंतिम चरण पर पहुंच गए।

दोस्तों, न केवल इस कार्यक्रम में हम रफ्ता रफ्ता इस अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं और अब चलते चलते आपके साथ वो बात साझा करते हैं कि किस घड़ी और कैसे मुकेश साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। आपको बता दें कि मुकेश की मृत्यु 27 अगस्त 1976 को डेट्रॉइट मिशिगन अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से हुई, जहां वे एक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए गए थे। उस सुबह वह जल्दी उठकर नहाने गए और बाहर आते ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सीने में दर्द की शिकायत उन्हें महसूस हुई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया। शेष संगीत कार्यक्रम लता मंगेशकर और उनके बेटे नितिन मुकेश ने पूरा किया। मंगेशकर उनके पार्थिव शरीर को भारत लेकर आई, जहां कई अभिनेताओं की उपस्थिति में एक भव्य अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय फिल्म उद्योग की कई हस्तियों और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, जब उनके निधन की खबर उनके परिचित और अभिनेता राज कपूर तक पहुंची तो वे फूट फूट कर रो पड़े और बोले, मैंने अपनी आवाज खो दी है, जो राज कपूर की फिल्मों के बेहद लोकप्रिय गीतों में मुकेश की आवाज के जुड़ाव का इस बात का प्रमाण है।

इन दर्द भरे गीतों के साथ सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश के पुण्यतिथि पर हमारा शत शत नमन और श्रद्धांजलि।

मुकेश की आवाज में इन दर्द भरे फिल्मी गीतों के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार अब यहीं पर संपन्न होता है।

10.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बज रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होते हैं। शाम 5 बजे सांध्यकालीन प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना PMSYM और दुकानदारों व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों NPS व्यापारी के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS ट्रेडर्स के विषय में जानकारी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में और आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं रेणु कोटनाला। श्रोताओं, मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना की, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, जिसे हम संक्षेप में PMSYM भी कहते हैं। श्रोताओं, हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, खेतीहर मजदूर, मोची, धोबी, ईंट भट्टे में काम करने वाले, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक और ऐसे ही कई कामगार शामिल हैं। श्रोताओं, इनमें से बहुत से श्रमिकों के पास नौकरी के दौरान नियमित पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा की सुविधा नहीं होती। ऐसे श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हो सकते हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या फिर उससे कम है। साथ ही आवेदक EPFO ES

आईसी या एनपीएस के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए और वो आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। योजना में प्रवेश की उम्र के आधार पर श्रमिक को 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह तक अंशदान करना होता है। जितनी राशि लाभार्थी जमा करता है उतनी ही राशि का मिलान अंशदान केंद्र सरकार भी करती है। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र इस योजना में शामिल होता है तो उसका मासिक अंशदान 55 रुपए है और केंद्र सरकार भी 55 रुपए का योगदान करती है। वहीं 40 वर्ष की उम्र में शामिल होने वाले व्यक्ति का मासिक अंशदान 200 रुपए होता है तो सरकार भी 200 रुपए का ही योगदान करती है। लाभार्थी को योजना में शामिल होने के बाद निर्धारित अंशदान 60 वर्ष की आयु तक करना होता है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उसे न्यूनतम 3000 रुपए प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। ये पेंशन लाभार्थी को वृद्धावस्था में नियमित आर्थिक सहारा देने के लिए है। अगर पेंशन प्राप्त करने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को पेंशन की 50% राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी कॉमन सेंटर यानी सीएससी पर जा सकता है। पंजीकरण के लिए आधार नंबर, मोबाइल फोन और बचत बैंक खाता या जनधन खाता आवश्यक है। नामांकन स्वप्रमाणन के आधार पर किया जाता है और इसके अलावा पात्र व्यक्ति मानधन.in पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण भी कर सकता है। इस योजना में अंशदान बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से लिया जाता है और यदि किसी कारण से अंशदान में कुछ समय की कमी रह जाती है तो बकाया अंशदान और लागू दंड का भुगतान करने के योगदान को नियमित करने का प्रावधान भी है। तो श्रोताओं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का संदेश साफ है, आज मेहनत करने वाले श्रमिक के भविष्य को भी सुरक्षित बनाया जाए। आज का छोटा योगदान कल की आर्थिक सुरक्षा की मजबूत नींव बन सकता है। और श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं के अंतर्गत ही अब बात करते हैं दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों यानी एनपीएस व्यापारी के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस ट्रेडर्स के विषय में बात करते हैं। श्रोताओं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके भविष्य और वृद्धावस्था को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 12 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस ट्रेडर्स की शुरुआत की। ये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के पात्र दुकानदार, व्यापारी, स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिनका वार्षिक कारोबार लगभग 1.5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। आवेदक EPFO, ESIC, NPS या PMSYM के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए और आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। बात अगर अंशदान की करें यानी इस योजना में नियमित रूप से जमा की जाने वाली राशि की करें तो प्रवेश की आयु के अनुसार ही लाभार्थी को 55 से 200 रुपए तक प्रतिमाह अंशदान करना होता है। इसमें केंद्र सरकार भी लाभार्थी के बराबर राशि का योगदान करती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर न्यूनतम 3000 रुपए प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है और इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर नामांकन करा सकते हैं। मानधन.in पोर्टल के माध्यम से स्वपंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। योजना के क्रियान्वयन यानी लागू करने और संचालित करने में LIC, सीएससी, गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की भूमिका है। तो श्रोताओं, आज आप अपने व्यवसाय को मजबूत बनाने के साथ भविष्य को सुरक्षित करना भी बेहद जरूरी है। एनपीएस ट्रेडर्स छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये योजना उन छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आज अपने व्यवसाय को संभाल रहे हैं और साथ ही अपने आने वाले कल की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो श्रोताओं, मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं के अंतर्गत ये थी जानकारी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के विषय में। और अब आप तक पहुंचा रहे हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको अब हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। पहले जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

आज रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण में आकाशवाणी मथुरा की प्रस्तुति प्रसारित की जाएगी, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। लखनऊ केंद्र से ही संध्या 6:50 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आज रात्रि 9:30 पर परिचर्चा हमारे श्रोता सुनेंगे। विषय होगा महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मातृशक्ति वंदन अधिनियम। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर अभय कुमार मित्तल, डॉक्टर अंजना राजपूत और डॉक्टर मृदुला त्यागी। संचालन करेंगे एजाज अहमद। युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:15 पर आज का आकर्षण रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज दिल से दिल तक। साथ ही सुनिएगा कहानी के उस पार में कहानी बड़े भाई साहब का एपिसोड 2 और युवा श्रोता आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। किसान श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आज शाम 6:05 पर, जिसमें आज क्रम रहेगा बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का एपिसोड 4 के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। संध्या 7:32 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आनंद लीजिएगा पुनीत मेहरा के गाए भजन का। फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं आज रात्रि 8 बजे गी संध्या कार्यक्रम में, रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से क्रम में और रात्रि 10:30 पर पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। तो श्रोताओं ये थी एक नज़र हमारे आज के शेष कार्यक्रमों पर और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। कल प्रातः 6:05 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। श्री रामचरित मानस गान प्रातः 6:30 पर, 6:40 पर चिंतन और कल प्रातः 6:45 पर काव्यधारा में गिरीश कुमार का काव्य पाठ हमारे श्रोता सुन सकेंगे। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:05 पर जानकारी का विषय रहेगा बच्चे नाखून क्यों खाते हैं और प्रातः 7:10 पर खेती की बातें क्रम में तिलहनी फसलों की देखभाल विषय पर जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम का समय रहेगा कल प्रातः 7:31 पर।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में कल प्रातः 9:25 पर हमारे श्रोता आनंद ले सकेंगे राजकुमार और साथियों की गाई रागनी का। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कल दिन में 12:05 पर उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग हमारे श्रोता सुन सकते हैं। घर संसार कार्यक्रम में कल दिन में 1:15 पर क्रम रहेगा मारा घर आंगन भोर से सांझ तक के अंतर्गत अविता रानी से अंजना की बातचीत हमारे श्रोता सुनेंगे। उमा जोशी के गाए कुमावनी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा हमारे लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर। तो श्रोताओं, ये थी एक नज़र हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों।
1: शाम की इस खूबसूरत बेला में जब दिन भर की भागदौड़ के बाद अब जरा सुकून के पल आपके साथ हैं, तो क्यों ना इन पलों में थोड़ी सी बातें हो, कुछ नए जानने को मिले और कुछ दिल की बातें आपसे हो
0: दोस्तों। क्योंकि शाम सिर्फ दिन के ढलने का नाम नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा कार्यक्रम, आवाजें और कुछ दिलचस्प बातों से जुड़ने का भी समय होता है।
1: तो घड़ी की सुई इशारा कर रही है शाम के 5:15 का, और इसी के साथ हम हाजिर हैं कार्यक्रम युवाणी में आपके अपने पसंदीदा अंदाज में, आपके अपने सवालों और आपकी ही बातों के साथ।
0: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके अपनी साथी रुमान परवीन,
1: और रुमान के साथ मैं हूँ आपकी अपनी ही दोस्त और होस्ट श्रेया विश्वास,
0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे सेगमेंट से जहां सवाल छोटा होता है, लेकिन जवाब देने के लिए आपको अपने दिमाग को पूरी एक्सरसाइज करानी पड़ती है।
1: जी हाँ दोस्तों, सेगमेंट भूजो तो जाने, जिसमें आज का हमारा सवाल जुड़ा है देश की शिक्षा व्यवस्था यानी CBSE से, एक जुड़े अहम खबर की जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। रुमान,
0: ओ तो देखते हैं कितने

0: तेज है आपकी याददाश्त और करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स पे आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतनी जल्दी आप दे देंगे हमें जवाब। तो हम आपसे पूछते हैं आज का सवाल। आज का सवाल रहेगा, सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं?
1: सवाल एक बार फिर से।
0: सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं?
1: और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको जाना है हमारे फेसबुक अकाउंट यानी आकाशवाणी नजीबाबाद पर और जाकर उसकी कमेंट सेक्शन में देना है इसका सही जवाब।
0: श्रेया, दिमाग की इस कसरत के बाद थोड़ा सा रुख उन बातों की तरफ कर लें जो सीधा दिल तक जाती हैं।
1: रुमान, कहते हैं बड़े शहरों की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन हमारी पहचान अक्सर उन छोटी छोटी गलियों से होती है जहां हमारी कितनी यादें पलती हैं।
0: वो गली जहां बचपन की शामें खेलते खेलते बीती, जहां दोस्तों के साथ घंटों बातें हुई, और जहां हर घर किसी ना किसी कहानी का हिस्सा लगता था, और जहां से गुजरते हुए आज भी कभी कभी बचपन वापस लौट आता है।
1: तो दोस्तों, आज हमारा सेगमेंट दिल से दिल तक में हम लौटेंगे उन्हीं गलियों में जिनसे आपका कोई रिश्ता है। आपके गांव की वो पुरानी गली या फिर शहर की कोई ऐसी गली जहां से जुड़ी है आपकी और आपके लोगों की कुछ खूबसूरत और मजेदार यादें।
0: तो अपनी कहानी सिर्फ अपने तक मत रखिए दोस्तों, हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करिए और हम उन यादों को शामिल करेंगे हमारे प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: दोस्तों, इस खूबसूरत सी शाम के साथ ले चलते हैं आपको हमारे कार्यक्रम के आज के पहले गीत की ओर।

0: दोस्तों बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, हमारे डेली सेगमेंट कुछ खास है आज में।
1: दोस्तों रोज की इस भागदौड़ जिंदगी में कंक्रीट के जंगलों के बीच क्या आपको कभी असली जंगलों की याद नहीं आती? वो मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो पहाड़ों से गिरता पानी और वो चिड़ियों का चहचहाना।
0: अगर हाँ तो रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए क्योंकि आज हम सीधे आपको प्रकृति की गोद में ले जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज है 25 अगस्त और आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान सेवा दिवस यानी कि नेशनल पार्क सर्विस डे।
1: दोस्तों नेशनल पार्क सर्विस डे की स्थापना 25 अगस्त 1916 को अमेरिका में हुई थी। इसका उद्देश्य सिर्फ नेशनल पार्क्स की देखभाल करना नहीं बल्कि प्रकृति, वन्य जीवों, ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना भी था।
0: अब आप सोच रहे होंगे कि बॉस ये क्या कह दिया श्रेया ने, तो भाई बात ऐसी है कि आज ही के दिन 25 अगस्त को इस सेवा की शुरुआत हुई थी ताकि धरती के सबसे खूबसूरत हिस्से जैसे कि पेड़ पौधे और पहाड़ और वहां रहने वाले बेजुबान जानवरों को इंसानी लालच से बचाया जा सके।
1: अच्छा रुमान सोचो कि अगर ये नेशनल पार्क न होते तो क्या हमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता?
0: नहीं।
1: अच्छा ये सोचो कि अगर काजीरंगा ना होता तो क्या हमें एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलता?
0: बिल्कुल भी नहीं।
1: बिल्कुल नहीं, सही बात है। तो दोस्तों ये नेशनल पार्क सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लंग्स हैं जो हमें जीने के लिए साफ हवा देते हैं। ये उन हजार प्रजातियों का इकलौता घर है जो धीरे धीरे दुनिया से गायब होते जा रहे हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए अगर जंगल ना हो तो सिर्फ पेड़ ही कम नहीं होंगे, जंगल के साथ साथ उन हजारों प्रजातियों का घर भी खत्म हो जाएगा जिनका अस्तित्व हमारे पूरे प्रकृति तंत्र से जुड़ा हुआ है।
1: और शायद रुमान इसलिए कहा जाता है, पेड़ों की छाव में ही तो सुकून मिलता है, जंगलों में ही जीवन का जुनून मिलता है। इन्हें सिर्फ तस्वीरों में कैद मत होने दो, प्रकृति बची रहे तो आने वाला कल मिलता है।
0: बिल्कुल श्रेया, नेशनल पार्क हमें प्रकृति के करीब से समझने का अवसर देते हैं। यहाँ हमें सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं मिलते बल्कि बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल बैलेंस की अहमियत भी समझ आती है।
1: और जब हम किसी नेशनल पार्क में घूमने जाते हैं दोस्तों तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। जंगल में कचरा ना फैलाना, वन जीवों को परेशान न करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और प्रकृति को उसी रूप में छोड़ना जिस रूप में हमने उसे पाया था।
0: क्योंकि जंगल हमारी सुविधा के लिए बने हैं, हम जंगल का हिस्सा हैं और जंगल हमारे अस्तित्व का हिस्सा।
1: तो इस नेशनल पार्क सर्विस डे पर सिर्फ नेशनल पार्क से खूबसूरती को याद ना करें बल्कि उस जिम्मेदारी को भी याद करें जो प्रकृति ने हम सबको दी है।
0: जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा संकल्प लें, एक पेड़ बचाएंगे, एक जीव का घर बचाएंगे, प्रकृति से रिश्ता निभाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा कल छोड़ कर जाएंगे।
1: क्योंकि दोस्तों किसी नेशनल पार्क की असली खूबसूरती सिर्फ वहाँ देखने वाले पहाड़ों, जंगलों या झील में नहीं
0: बल्कि उन अनगिनत जीवों की आजादी सांसों में है जिन्हें वह जंगल अपने अंदर घर देता है।
1: तो आइए प्रकृति को सिर्फ देखने वाले नहीं
0: बल्कि उसकी रक्षा वाले बने।
1: तो दोस्तों कुछ खास है आज में इतना ही, अब ले चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
5: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
6: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
7: हो जाओगे एहसास कर लोट को,
6: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
8: और डोज में क्या है?
7: डोज में है मजा।
6: जी हाँ, मजा आ गया।
9: अरे बच्चा सुन तो मेरी बात।
8: क्या हो गया बाबा? जल्दी मैं हूँ, जल्दी बताओ क्या हो गया।
9: अरे बच्चा, तुझे स्वर्ग मिलेगा, ला कुछ दक्षिणा दे दे।
8: अच्छा ऐसा है, ठीक है बाबा जी, दक्षिणा में ना आप दिल्ली रख लो। आज से दिल्ली आपकी हुई
9: है बेटे। दिल्ली क्या तुम्हारी है जो तुम मुझे दे रहे हो?
8: तो बाबा, स्वर्ग आपका है जो मुझे दे रहे हो।
6: जी हाँ, मजा आ गया।
10: दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो चला है उस खास सेगमेंट का जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, हमारी कहानी बड़े भाई साहब, जो कि कहानी के उस पार सेगमेंट के अंतर्गत जाने वाली है, जिसका आज आप एपिसोड 2 सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी का दूसरा पार्ट।

0: लेकिन बड़े भाई साहब फेल हो गए थे। अब सोचो, अगर कोई बहुत मेहनत करे और फिर भी एग्जाम में फेल हो जाए तो उसे कैसा लगेगा? शायद बहुत बुरा। लेकिन बड़े भाई साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगली बार मैं और मेहनत करूंगा और भी ज्यादा अच्छे नंबर लाऊंगा। और अब उनकी नजर छोटे भाई पर भी थी। पढ़ाई का नया नियम लागू हुआ। एक दिन बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को अपने पास बुलाया। छोटे, अब तुम्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा।
1: जी भैया।
0: खेलना कम करना होगा।
1: जी भैया।
0: समय बर्बाद नहीं करना है।
1: जी।
0: हर दिन पढ़ना है।
1: छोटा भाई हर बात पर जी भैया कह रहा था, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी परेशानी थी, और वो थी कि मैं कैसे खेलूंगा, क्योंकि उसे खेलना बहुत पसंद था। अब बड़े भाई साहब ने उसे समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई आसान नहीं होती, कभी इतिहास पढ़ना पड़ता है, इतिहास में कितने राजा हुए हैं, कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, ये सब याद रखना पड़ता है। फिर गणित, गणित में तो सवाल ही सवाल, और आती है फिर अंग्रेजी, और अंग्रेजी में ऐसे शब्द जिनका मतलब समझने के लिए आधा दिन निकल जाए। छोटा भाई बड़े भाई साहब को देखता रहा। उसे लगा जैसे भैया के लिए पढ़ाई कोई बहुत बड़ा पहाड़ है। बड़े भाई साहब कहते, समय बहुत कीमती है, अगर 1 घंटा खेल लिया तो वो 1 घंटा वापस नहीं आएगा। अगर पढ़ाई का टाइम खेल में चला गया तो परीक्षा के टाइम परेशानी होगी। छोटा भाई सब चुपचाप सुनता रहा और अपना सिर हिलाता रहा। लेकिन जब बड़े भाई साहब किताब में खो जाते तो छोटा भाई चुपके से खिड़की से बाहर देखने लगा। समय फिर बीत गया और दूसरी परीक्षा आई। इस बार बड़े भाई साहब ने बहुत मेहनत की। छोटा भाई भी पास हो गया और इस बार तो बड़े भाई साहब भी पास हो गए। लेकिन छोटा भाई अपनी कक्षा में फिर उनसे आगे निकल गया। बड़े भाई साहब को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा,
0: तुम्हें अपनी सफलता पर बहुत घमंड नहीं करना चाहिए।
1: जी भैया।
0: अभी तुम छोटे हो।
1: जी भैया। जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। छोटा भाई फिर चुपचाप खड़ा सिर हिलाता रहा। वह जानता था कि भैया की बातों में कुछ सच्चाई जरूर है, और वो है प्यार, उनका प्यार। रात हो गई, छोटा भाई सोने जा रहा था। उसने देखा कि बड़े भाई साहब अभी भी पढ़ रहे हैं। दीपक जल रहा था, किताब सामने खुली थी, चेहरे पर थकान थी, फिर भी वे पढ़ रहे थे। छोटे भाई ने सोचा, भैया मुझे इतना क्यों समझाते हैं? और शायद उसे जवाब मिल गया, क्योंकि वे चाहते थे छोटा भाई आगे बढ़े। कभी भी जो हमें सबसे ज्यादा डांटता है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता भी करता है। बड़े भाई साहब भी ऐसे ही थे। लेकिन अब कहानी में एक और मजेदार चीज आने वाली थी, और वो है पतंग। छोटे भाई को पतंग बहुत पसंद थी। तो अगले एपिसोड में देखेंगे क्या पढ़ाई जीतेगी या पतंग।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: अजी सुनती हो?
3: अरे हाँ सुन रही हूँ। रोटी बनाओ या तुम्हारी बात सुनूं?
2: अरे रोटी का ही तो मसला है, जल्दी आओ।
3: आई आई, बताओ क्या मसला है तुम्हें रोटी में?
2: अरे आज रोटी कुछ ज्यादा मोटी नहीं बना दी हो तुम?
3: हाँ, बाहर बर्गर खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल लोगे तुम?
2: फिर बहस करने लग गई तुम।
3: मैं बहस कर रही हूँ? तुम्हारा बढ़िया है, तुम्हें घर में पत्नी और रोटी दोनों पतली चाहिए। चुपचाप होके खाओ इसे।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
2: तो दोस्तों, इतने प्यारे से गीत और कहानी के बाद हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारा सेगमेंट दिल से दिल तक, जिसमें अब बारी है हमारे लिसनर्स की यादों को हमारे प्रोग्राम में शामिल करने की।
3: बिल्कुल श्रेया, हमारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे कि हम कहाँ चले गए, दिल से दिल तक सेगमेंट पर तो आ ही नहीं रहे हैं।
2: वैसे मैं यही सोच रही हूँ कि क्यों ना बिना देरी के इनके मैसेजेस को, इनकी यादों को शामिल कर लिया जाए। रुमान, क्या सोचती हो तुम?
3: बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा श्रेया।
2: तो चलो,

0: दिलचस्प है और आप डर गए, और आपने ये भी कहा कि आप कभी आम की चोरी नहीं करेंगे। वैसे चोरी करनी तो है ही गलत बात। और
1: हाँ
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ये याद भेजने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए। अच्छा, इसी के साथ हम अपना जो अगला पत्र हमें मिला है वो पढ़ लिया जाए।
1: बिल्कुल श्रेया,
0: ठीक है, तो हमें पत्र मिला है राम राहुल नंगली थाना नूरपुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर से। भेजने वाले का नाम है आचार्य सत्यवीर सिंह जी। कहते हैं कक्षा 4 की बात है, वो पढ़ रहे थे तो गुरु जी ने कहा कि स्कूल के आंगन में उन्हें कुछ लगाना है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बेल और शहतूत के पेड़ लगा दिए जो आज भी सुरक्षित है वहां पे। और जब भी वो उस गली से गुजरते हैं, उस स्कूल से गुजरते हैं, तो गुरु जी उनसे कहते हैं कि देखो ये वही पेड़ है जो तुमने लगाया था। तो वो एक मेमोरी बन गई उनकी और वो अभी तक उनको याद आती है। और साथ ही रुमान वो एक निवेदन कर रहे हैं
1: क्या
0: कि सभी को अपनी लाइफ में कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है उनके श्रेया। वैसे पेड़ तो हम सबको ही लगाने चाहिए, पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। वैसे बता दे तो हमारे दोस्तों ने, वैसे इन्होंने तो जिक्र किया है गली का, इससे पहले जो साथी थे जिन्होंने हमें मैसेज किया था उन्होंने गलियों का जिक्र ना करके हमारे कुछ खास है आज सेगमेंट में, जो हमने विषय अपने दोस्तों को बताया था, आज जो हम खास दिन मना रहे हैं नेशनल पार्क सर्विस डे, उन्होंने उससे रिलेटेड हमें याद भेजी है।
0: वैसे याद भेजी है तो उसको शामिल तो करेंगे ही, और हम इतने शुक्र इतना धन्यवाद करते हैं उनका कि आपने अपने हमें मैसेज करा, हमारे साथ अपनी याद शेयर करी। बस
1: बिल्कुल
0: हम
1: श्रेया,
0: उम्मीद करते हैं कि आप अब अगली जो याद भेजें वो उन गलियों से भेजें जिनकी हमें तलाश है।
1: बिल्कुल।
0: और अच्छा, वैसे ऐसी सवाल सवाल में मुझे ये आ रहा है कि
1: हाँ
0: तुम्हारी भी कोई ऐसी याद है जो तुम शेयर करना चाहो गलियों से।
1: कोर्स यार, गलियों से तो हर किसी की ढेरों सारी याद होती हैं। अब मैं बता दूँ तुम्हें, हमारे बचपन में क्या होता था ना, हमारी गली में बच्चे सब खेलने के लिए आते थे तो जाहिर सी बात है हम भी जाते थे वहां पर, तो मम्मी गली में खेलने नहीं जाने देती थी। वो कहती थी कि दोपहर में पकड़ने वाले फिरते हैं और वो आपको पकड़ लेंगे, तो फिर ना ऐसे ही मम्मी मना करती थी। अब हम चले जाते थे चुपके से। एक बार की बात है, हम बाहर खेल रहे थे, मम्मी आ गई, उन्होंने आकर कहा, हमें आवाज दी कि आ जाओ अंदर। हमें लगा कि आज तो हम गए
0: अरे
1: पिटेंगे,
0: अरे अरे अरे
1: तो मम्मी कहती है नहीं नहीं मारूंगी नहीं, बस आ जाओ। और हम जैसे ही उनके पास गए उन्होंने हमें छोड़ा बिल्कुल भी नहीं था।
0: तो ये तो बड़ी ही मजेदार याद है।
1: मजेदार नहीं है श्रेया, खतरनाक है।
0: तो याद तो याद होती है, अब जब तुम उनको याद करती होगी इन चीजों को तो तुम्हें अच्छा ही लगता होगा, जैसे हंस रही हो अब तो मजेदार ही हो गई वो याद।
1: तुम्हारी है कुछ गलियों से रिलेटेड याद?
0: अब मेरी, हम दोनों की यादें तो हम बात करते रहेंगे, मुद्दा तो हमारे लिसनर्स की यादों का है। और इसी के साथ दोस्तों, हम अपनी गलियों की यादों से लेकर आए हैं आपके लिए एक और प्यारा सा गीत।

0: तो क्यों ना श्रेया, आप देखना है कि आखिर हमारे किस दोस्त ने हमें मैसेज किया है। मुझे लगता है कि हमारे पास एक और मैसेज आ गया हमारे साथी का।
1: तुम सही समझी कि एक मैसेज आया तो है, और मैसेज आया है नगीना से। भेजने वाले के नाम है अनिल विनोचा।
0: अरे वाह, हमारे डेली लिसनर है वो।
1: हमारे टॉपिक गलियां की तारीफ करते कहते हैं कि अच्छा टॉपिक है, और चार लाइनें सेंड कर रहा हूं।
0: इरशाद,
1: तू हुस्न का मुकम्मल सरताज, जरा संभल के चल। हर गली में आशिक, जरा संभल के चल। तू शौक से भी शौक, मुसाफिरों के गम होते होश। तू जवा दिलों के ताज, जरा संभल के चल। तेरा दिल भी किसी को चाहने लगे, लोगों में चर्चा होने लगे। चाहत बदनाम ना हो गली गली, बेदर्द समाना जरा संभल के चल।
0: अरे वाह, बहुत खूब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विनोचा जी कि आपने मैसेज भेजकर हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगा दिया आज की
1: हमारे
0: शाम में।
1: सेगमेंट को और भी सुंदर बना दिया आपके इस मैसेज ने अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी लाइनें तो
0: और
1: हमेशा
0: बिल्कुल,
1: होती ही टॉप नॉच है।
0: तो श्रेया क्यों ना आप हम अपने लिसनर्स को सुनवाएं अगला गीत हमारी सेगमेंट की थीम पर।

दोस्तों, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने पूछा था आपसे एक सवाल। हमारा आपसे सवाल था, सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? और इसका सही जवाब है प्रशांत लोखंडे। अब देखते हैं हमारे किस किस साथी ने दिया है हमें सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब भेजने वाले साथियों के नाम हैं विष्णु टेलर, पुनांजी नाहकर, वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र सिंह, विठल सुरोशे, फनीश कुमार चंदन, जॉन डी कैस्ट्रो, हिमामानी वर्मा, दिनेश वर्मा, अनिल जैन, सुदर्शन शाह, अनिल विनोचा, ताज अंसारी, मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, नवाबुद्दीन, बी आई धाकर, रामकुमार रेवार, मीरा सिंह, हसन मसरूर, हसन जगदेश धाकर, देवी नीलम। और दोस्तों, इसी के साथ हम चलते चलते सुनते हैं ये हमारी थीम पर आखिरी गीत।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें मैसेज के जरिए बता सकते हैं। मैसेज करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288, और खत भी भेज सकते हैं। खत के लिए हमारा पता रहेगा कार्यक्रम युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी फेसबुक आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही आप हमारे पुराने प्ले और कहानियां हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। इसी के साथ दीजिए अनुमति मैं रुमान परवीन
1: और श्रेया विश्वास को
0: कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार, नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें

0: NJ05, NJ50 और NJ100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। किसान श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू की
0: राम राम।
1: तो भाई गंगाराम।
0: हाँ भैया झुमरू।
1: अरे कैसे हाल चाल है भाई, सब राज्य खुशी।
0: भाई देखो रिमझिम बारिश हो रही है।
1: हाँ।
0: ऐसे में तो भाई मौज आ रही है।
1: भाई देखो बादल बदली वाला मौसम है
0: जी।
1: भाई धूप का तो बिल्कुल पता ही ना चल लिया।
0: सही बात है।
1: तो भाई देखो आज है मंगलवार।
0: बिल्कुल।
1: और हर मंगलवार को हमारे किसान भाई सुन रहे हैं बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
0: बिल्कुल। और भाई देखो इस पाठशाला के जरिए भैया हमारी कोशिश ये है कि हमारे किसान भाई भाई ऐसी बासमती हुआ है जिसे जो है विदेश में भेजने में कोई दिक्कत ना हो।
1: तो भाई देखो हमारे बहन भाई जो इंतजार में होंगे तो भैया आओ शुरू करते हैं आज की
0: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
0: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
1: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
0: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
2: अरे मास्टर जी।
0: हाँ भैया।
2: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहला रहा है।
0: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
2: बिल्कुल। और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
0: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
2: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
3: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमतीधान रेडियो कृषि पाठशाला में। और इस पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
1: और मैं हूं आपका भैया आलोक कुमार गंगाराम।
0: तो भाई गंगाराम।
1: हाँ भैया झुमरू।
0: भाई देखो आज का दिन बेहद खास है भाई।
1: बिल्कुल भाई, देखिए आज माह का जो है भैया आखिरी मंगलवार है, और भाई आखिरी मंगलवार को हमारे किसान भाई जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम होता है हेलो बासमती।
0: तो भाई देखो हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम है, और हमारे बहन भाइयों की जो भी बासमती के संबंध में समस्या या दिक्कत परेशानी है, तो वे बासमती धान के बारे में या भैया कोई सा भी धान हो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आज हमारे कार्यक्रम में भैया वाला कौन विशेषज्ञ उपस्थित है?
1: भैया आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आए हैं डॉक्टर रितेश शर्मा, जो कि निदेशक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में।
0: जी
1: तो भैया सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर साहब का।
0: बिल्कुल,
1: तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: सभी किसान भाइयों को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो भाई डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, और अब सबसे पहले भैया बात यह आती है कि जल्दी से आप नंबर बता दो जिससे कि हमारे भाई जो फोन करें और डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकें।
1: बिल्कुल भैया, देखिए आपको बासमती धान से संबंधित कोई भी आप समस्या है तो उससे भैया सीधे फोन करके हमसे जो है डॉक्टर साहब आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। तो फोन नंबर बता देते हैं, कहो तो भैया।
0: बिल्कुल नंबर बता दो भैया।
1: 9457072888।
0: ठीक
1: भैया, हमारा नंबर एक बार और बता देता हूँ, 9457072888।
0: बहुत बढ़िया।
1: इसके अलावा भैया एक और हमारा लैंडलाइन नंबर है 01341, पहले आप एसटीडी कोड लगा लीजिएगा। और भैया 230105 हमारा फोन नंबर है। तो इनमें से किसी भी एक नंबर पर फोन करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं और डॉक्टर साहब आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। तो बासमती से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो भैया सीधे संपर्क आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो ये हमने फोन नंबर बता दिए हैं,
1: हाँ,
0: और इसमें हमारे किसान भाई जानकारी ले सकते हैं। तो देखो भैया जब तक हमारे बहन भाई के फोन आने शुरू हो तब तो बातचीत का सिलसिला शुरू करा जाए।
1: भैया हम बातचीत का सिलसिला बाद में करेंगे, एक फोन आ गया।
0: हेलो हेलो
3: हेलो
1: हेलो बासमती।
3: नमस्कार भाई साहब।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
3: मैं ये कह रहा हूँ,
0: अपना नाम बता दीजिए, नाम और पता।
3: मैं याकूब बोल रहा हूँ, मोहम्मद याकूब, कासमपुर गढ़ी जिला बिजनौर से।
0: जी जी याकूब जी, बताइए।
3: मेरा कुछ मोटा धान है 13 और कुछ सरबती बासमती है
0: जी।
3: उसमें सड़बड़ा लग गया, बदबूदार कीड़ा तो बाल चूस रहा और मुंजी निकल गई
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, सुनिए आप।
2: हाँ देखिए, कीड़ा जो रस चूसने वाले होते हैं उसके लिए एक मिथाइल पैराथियन डस्ट आती है, वो आप ले लीजिए 25 किलो के हिसाब से, उसको आप स्प्रे कर दीजिए, वो बुरक दीजिए खेत में। और इसके अलावा आप चाहें तो आपके पास यदि राख होगी उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप लाइट ट्रैप भी लगा लेंगे तो भी वो सारे कीड़े जो रस चूसने वाले हैं वो उस पर इकट्ठे हो जाएंगे और पकड़ में आ जाएंगे, तो आपको जो है आपकी फसल आसानी से बच जाएगी। क्योंकि इस समय पर कोई दवाई यदि आपने कोशिश की तो उससे दाने पर का रंग खराब होगा, तो वैसा कोई स्प्रे नहीं करना जहरीली दवा। आप ये जो मैंने मिथाइल पैराथियन बताया या आप जो है राख बताई या लाइट ट्रैप को लगाइए, उससे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा।
3: अच्छा
0: बिल्कुल, तो इस तरीके से देखिए इनकी समस्या का समाधान हो गया होगा। और कासमपुर गढ़ी से हमारे ये श्रोता थे जो कि अपनी समस्या का समाधान इन्होंने पा लिया है।
1: बिल्कुल।
0: और जो भी हमारे किसान भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो 6:40 तक लगभग हमें फोन कर सकते हैं और सीधे स्टूडियो फोन करके जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रितेश शर्मा जी उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। नंबर भैया एक बार फिर बता दो।
1: बिल्कुल भैया, देखो नंबर मैं बता रहा हूँ, 9457072888।
0: ठीक
1: भैया, ये नंबर है, इस पर आप फोन कर सकते हैं, 9457072888। और एक और फोन नंबर हमारा 01341230105। देखिए अभी बात डॉक्टर साहब कर रहे थे लाइट ट्रैप की।
0: बिल्कुल,
1: तो डॉक्टर साहब ये लाइट ट्रैप हमारे किसान में कैसे लगाएं?
2: देखिए लाइट ट्रैप बड़ा आसान सा तरीका है जिसमें आप बिना रसायनों के।
0: डॉक्टर साहब एक कॉल है।
2: कॉल आ गया, पहले कॉल लेते हैं फिर चर्चा जारी।
0: हेलो, हाँ जी, हेलो बासमती।
1: हेलो बासमती
4: जी।
0: हाँ
4: जी, राम राम जी।
0: राम राम जी, राम राम जी।
1: अपना नाम बता दीजिए।
4: मैं ग्राम का दरोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदनगिरी बोल रहा हूँ जी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मदनगिरी जी कार्यक्रम में।
4: जी जी जी, वो है जी, ऐसा है
1: जी,
4: वैसे तो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है लेकिन फिर धान तो लगाते ही है कुछ।
0: जी
1: जी जी जी।
4: और वो जो है तुरल बासमती लगा रखी है हमने।
2: बहुत बढ़िया जी।
4: तो उसमें जो है खरपतवार उग रहे हैं, वो ऐसे हैं कि जो उसके जो उसका है धान का पौधा है ना जी,
0: जी
4: ऐसे ही है मिलते जुलते, फर्क तो है लेकिन मिलते जुलते हैं कुछ
2: जी।
4: तो हम पैसा निकलवा रहे हैं, कोई मेहनत निकलवाने में खर्चा पड़ता है, तो अब ये बताएं कि आप उनका कैसे हम
2: ये, मदन जी गिरी जी नमस्कार। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आपकी धान की फसल को कितने दिन हो गए, कब आपने रोपाई करी थी?
4: ये तो ऐसे हो गए जी, कोई मेरे ख्याल 35 दिन हो गए जी।
2: देखो अब तो आपको कोई दवाई करने का फायदा नहीं होगा, इसलिए अच्छा ज्यादा अच्छा है कि आप उनको हाथ से जैसे आप कटवा रहे हैं, क्योंकि अब तो काफी बड़े भी हो गए हैं वो और देखने में अलग ही नजर आ रहे होंगे, तो उनको कटवा कटवा सकते हैं या उखड़वा सकते हैं। बाकी तूड़ल बासमती बहुत अच्छी वैरायटी है और इसमें आपको ध्यान ये रखना है। आपने कौन सी PV1 पुरानी वाली लगाई है, एक नंबर?
4: हमारी चिन्नी मिल
2: नहीं, जो वैरायटी है तूड़ल, वो तूड़ल का बीज कहाँ से लिया था?
4: वो तो हमारे वो जो पिछले साल का ही था जी हमारे।
2: अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें ये ध्यान रखना कि बहुत पानी भर के मत रखिएगा, अभी पानी लगाते रहो सुखाते रहो, ठीक है?
4: ठीक है,
2: ठीक है जी, राम राम।
1: तो हमें उम्मीद है कि मदन गिरी जी की समस्या का निदान हुआ होगा, और मैं आपको फिर बता दूं कि भैया आप बासमती धान से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो वो किसान भाई हमें सीधे फोन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: फोन नंबर एक बार और बता दें भैया।
0: बिल्कुल भाई, नंबर बताना बहुत जरूरी है भैया,
1: 9457-07-8288। और भाई इधर मैंने नंबर बताया और इधर कॉल लग गई।
0: हेलो हेलो बासमती,
1: हेलो बासमती, हेलो
0: हेलो,
1: शायद इनसे संपर्क नहीं,
0: चलिए संपर्क नहीं हो पाया है, ये दोबारा से प्रयास करेंगे। और भी हमारे किसान भाई जो है 6:40 तक अगर फोन करते हैं तो जो है बात अच्छे तरीके से हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो फोन नंबर बता रहे थे हम, नंबर बता देते हैं
0: जी,
1: 9457-07-8288। तो मैं समझता हूँ एक फोन और आ रहा है। हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: बासमती,
1: हाँ जी,
0: अपना नाम बता दीजिए।
5: जी सर नमस्ते।
0: नमस्ते
5: जी, मैं पवनदीप कौर बोल रही हूँ जिला बिजनौर से।
1: जी
5: जी, हमारे ना वो धान को मक्खी लग गई है बहुत ज्यादा, तो वो बहुत 3-4 स्प्रे भी कर दी फिर भी हट नहीं रही, तो इसके लिए कुछ बता दें
2: जी। पवनदीप कौर जी, ये बताएं कैसी मक्खी आप बता रहे हैं, तितली की तरह गोप सूख रही है या एक वो तितली सी उड़ती रहती है पत्तियों पर?
5: कुछ तो सफेद मक्खी, सफेद मक्खी,
2: सफेद जो है जिसे तना छेदक कहते हैं, है ना? वो क्या होती है कि वो तो तितली है, उड़ती है, अंडे देती है, और अंडे से जो सूंडी है वो नीचे से छेद करके गोब को सुखा देती है। ठीक बात है, वही है हाँ। तो देखो, एक तो आप क्या कर सकते हो, दवाई की बात करें तो क्लोरेंट्रो नीली प्रोल आती है, उसको आप 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में पानी में डाल सकते हैं। कितने दिन की फसल हुई है अभी?
5: 1 महीने की।
2: हाँ तो ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम और जरूर कर लें आप, फेरोमोन ट्रैप आते हैं बाजार में, वो ज्यादा नहीं है, 50-60 रुपए का है, एक पन्नी सी बंधी होती है और ऊपर एक कीप जैसा लगा है, उसमें एक रबड़ लगी है, तो उसको यदि आप खेत में लगा देंगे 8 एकड़ में, तो बहुत सारे जितनी भी ये मक्खी है उड़ उड़ के अपने आप उसी में आएगी और पन्नी में फंस जाएगी। तो यदि आपको हाँ, यदि फेरोमोन ट्रैप, ठीक है, तना छेदक का, और कोई दिक्कत हो तो आप अपने KVK से पूछ सकते हैं, वो उपलब्ध भी करा देंगे।
0: एक और हमारे भाई का फोन है। हेलो
6: नमस्कार सर।
0: हाँ नमस्कार जी,
1: अपने नाम बता दीजिए।
6: बोल रहा हूँ सर, ये हमारा एक अमरूद है, इसके अमरूद आते हैं और कीड़े पड़ जाते हैं।
1: देखिए आज जो है बासमती ऊपर जो आप सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं, केवल बासमती पर आधारित सवाल।
0: फोन इनका कट गया है। हाँ। और देखिए, हम अपने सुनने वालों से यही दरखास्त करते हैं कि आज का जो हमारा ये फोन इन कार्यक्रम है ये एक विशेष कार्यक्रम है, हेलो बासमती, इसमें बासमती धान या जो हमारे सामान्य धान है उससे संबंधित अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ हैं और खास तौर पर धान के बारे में जानकारी के लिए आपके लिए आए हैं आज कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल, और भैया नंबर एक बार फिर और बता देते हैं, 9457-07-8288 हमारा नंबर।

0: है। और भाई इस नंबर पे आप फोन करके आपकी कोई बासमती धान से संबंधित समस्या हो तो उसका निदान कर सकते हैं।
1: तो भाई देखो, फेरोमोन ट्रैप के बारे में बात हो गई, लेकिन अभी हम पीछे लाइट ट्रैप के बारे में जानकारी लेना
0: जी
1: चाह
0: जी
1: रहे
0: जी
1: थे।
0: हाँ
1: जी
0: हाँ लाइट ट्रैप का प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था, जब तक
1: जी
0: दूसरा फोन आए तो मैं बताऊं।
1: जी
0: लाइट ट्रैप में क्या है, शाम के समय पर एक लाइट लगा दी जाती है, तो क्या होता है, सारे कीड़े हमेशा आप घर में देखते हो, शाम को लाइट जलाई तो सब कीड़े आपके घर में आते हैं,
1: जी जी
0: ऐसे ही खेत में जो कीड़े होंगे वो वहां आ जाएंगे, उससे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो
1: जी
0: खेत में यदि आपके पास ट्यूबवेल है, बिजली का कनेक्शन है, तो एक पीला बल्ब जला दीजिए, और उसके पास दीवार है तो उस पर थोड़ा सा आप ग्रीस लगा दीजिए, तो उस पर चिपक जाएंगे, तो सुबह जब आप खेत में जाओगे आपको बहुत सारे नजर आ जाएंगे। जब तक एक फोन आ
1: बिल्कुल।
0: गया है, ये लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: हेलो,
0: हाँ
1: हाँ जी,
0: जी,
1: हेलो
0: हेलो,
1: बासमती।
0: हाँ
1: मैं
0: जी,
1: अकबरपुर से बोल रहा हूँ जी,
0: जी
1: अकबरपुर पोस्ट नेटवर्क।
0: कौन बोल रहे हैं जी? अकबरपुर से सुरेश
1: मैं सुरेश सिंह बोल रहा हूँ जी। अभी
0: सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो बासमती कार्यक्रम में। बताइए क्या समस्या है?
1: समस्या ये है, हमारे धान पर वो मक्खी बहुत आ रही, वो सफेद वाला तितली की जी।
0: सफेद तितली जी, जो बड़ी सी तितली है सफेद रंग की, या जो छोटी छोटी मच्छर से हैं?
1: वो मच्छर तो नहीं, तितली।
0: हाँ, तो तितली का अभी आप यदि ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो आपसे ठीक पहले एक पवनदीप कौर जी का भी यही सवाल था, और हमने उसमें यही बताया कि यदि आपकी
1: अभी
0: फसल अभी गोब अवस्था में नहीं आई है, तो आप
1: नहीं
0: जब
1: आएगी।
0: हाँ तो आप जमीन में क्लोरेंट्रो नीली प्रोल आती है, 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको खेत में पानी भरा
1: अच्छा
0: हो उसमें डाल दीजिए। उससे
1: अच्छी
0: देखिए एकदम से खत्म नहीं होगी, क्योंकि मक्खी
1: अच्छा
0: नुकसान नहीं करती, लेकिन मक्खी जो अंडे देती है वो अंडों से सूंडी नुकसान करती है। तो आपकी
1: जी
0: जितनी सूंडी है पौधे में ये दवाई पहुंचेगी, तो वो सूंडियां सब मर जाएंगी और आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा हमने बताया था कि फेरोमोन ट्रैप भी आप जरूर लगाएं, उससे शुरुआत
1: अच्छा
0: से ही आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। आप किस जिले से बोल रहे हैं? बिजनौर से?
1: मैं बिजनौर से बोल रहा हूँ जी,
0: हाँ, तो
1: नेटवर्क
0: मेटोर से बोल रहे हैं, तो आप चाहें तो कृषि विज्ञान केंद्र में एक बार बात कर लीजिएगा, और वो ट्राइकोग्रामा कार्ड आते हैं वो
1: से।
0: यूनिवर्सिटी से मंगा देंगे आपको, 50 रुपए का एक होगा लगभग, 1 एकड़ में 2 ही लगाने हैं, उसमें बहुत सारे
1: अच्छा
0: अंडे चुपके होंगे, या मोदीपुरम मेरठ जब आप जाओ तो वहां से लेते आना यूनिवर्सिटी से। शाम के
1: जी,
0: समय उसे काट काट के पत्ती पे चिपका देना है स्टेपलर से, उसमें से
1: अच्छा
0: जो अंडों में से जो निकलेंगे ना पैरासाइट, वो जहां जहां
1: हाँ
0: इस तितली के अंडे अंड समूह होंगे सबको खा जाएंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे। वो फ्री का,
1: अच्छा
0: एक तरह से फ्री का, बिना दवाई का काम है। तो आपको
1: जी,
0: सिर्फ एक के साथ मत चलो, केमिकल के साथ दूसरा भी काम कर लो, जरूरत है केमिकल भी कर लो, तो आपका खेत सुरक्षित हो पाएगा। ये बड़ी समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है।
1: सही सही है।
0: तो सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे कार्यक्रम में सहभागिता दी और अपनी समस्या का समाधान जाना है। और देखिए, ट्राइकोग्रामा कार्ड एक ऐसा उपाय है जिसको अपनाकर हम बिना किसी रसायन के अपने जो कीट हैं उन पर एक
1: नियंत्रण पा
0: और फोन
1: सकते
0: आ
1: हैं।
0: गया, पहले उससे बात कर लेते हैं।
1: हेलो।
0: जी, ट्राइकोग्रामा की बात कर रहे थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल ऐसा आता है, देखिए जैसे पोस्ट कार्ड है हमारे रहते हैं ना,
0: जी जी जी
1: पीले पोस्ट कार्ड जिस पर हम चिट्ठी
0: जी
1: लिखते हैं, तो उस तरीके का ये होता है, और डाक टिकट के उसमें आकार में उस पर अंडे चिपके होते हैं।
0: तो हमारे कुछ किसान भाई ऐसे होंगे जो अभी भी फोन करने की तलाश में होंगे,
1: जी
0: तो फोन नंबर एक बार और बता देते हैं। हमारा फोन नंबर है 94-57-07-82-88। तो भैया, इस पर आप 6:40 तक फोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, जो आपकी बासमती धान से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका निदान करेंगे। तो अब आप बताइए क्या कह रहे थे।
1: बिल्कुल, और देखिए हम अपने भाइयों को ये भी बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर रितेश शर्मा, जो कि निदेशक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में, और आज हमारे बीच में हैं, और बासमती धान या सामान्य धान के संबंध में किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
0: और इसके साथ ही मैं जोड़ूंगा कि यदि कोई किसान भाई या किसान जो युवा किसान है, वो निर्यात से रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहते हैं कि कैसे निर्यातक बन सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट, तो उस तरह का भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, हम आपको निर्यातक कैसे बने उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निर्यात करना, हमें निर्यात बढ़ाना है, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम बासमती धान का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और विदेशों में इसको भेजें, ताकि विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ आ सके, है ना गंगाराम भैया?
0: बिल्कुल सही बात है। देखिए, काफी समय हो गया, आप थोड़ा सा ले लेते हैं विराम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और

0: राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: किसान भाई इस समय सुन रहे हैं
3: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
3: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ
2: द्वारा प्रायोजित बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
4: अरे मास्टर जी।
3: हाँ भैया।
4: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहला रहा है।
3: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय, सही मात्रा, सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
4: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
3: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
4: हाँ, देश किसान, किसान का मान बासमती धान।
5: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
6: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
7: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
2: तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में, और आज है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती, जिसमें हमारे किसान भाई लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो भैया एक बार फिर से आप फोन नंबर बता दो गंगाराम भैया।
3: बिल्कुल, देखिए बासमती धान से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप फोन नंबर नोट कर लीजिएगा 94-57-07-82-88, और एक और नंबर है हमारा भैया 013-41-230-105। इनमें से किसी भी नंबर पर आप फोन करके सीधे बासमती धान से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो उसका हल आप जान सकते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए।
2: हेलो।
8: हेलो भाई साहब, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, नमस्कार।
8: दोबारा फोन करना पड़ गया, क्षमा करना।
2: कोई बात नहीं जी,
8: बताइए। बासमती में चूहा भी लग रहा, कोई दवाई भगाने की बता दे चूहे से।
2: जी बिल्कुल,
9: चूहा अभी से चूहा लग रहा है आपके खेत में, तो पानी भरा होगा,
8: धान पड़ रहा है चूहा जड़ से।
9: जड़ से चूहा काट रहा है तो फिर आप उसके लिए या तो रेड ट्रैप लगा सकते हैं, नहीं तो जो चूहे मार दवाई आती है ना बाजार में सस्ती सी, उसको गोलियां बना के आटे की और उसको साइडों में जहां जहां आपको लगता है खेत के उधर साइड डाल दीजिए, जिससे कि वो वहां से हट सकें। या फिर आप एक काम कीजिए, आप मिर्च और लहसुन इनको कूट के और इसका एक एक्सट्रैक्ट निकाल के भिगा दीजिए, फिर कूट के और इसका स्प्रे कर दीजिए चारों तरफ, सब भाग जाएंगे।
8: मिर्ची और लहसुन?
9: हाँ, लहसुन और मिर्ची का।
8: अच्छा जी, अच्छा,
9: ठीक है जी,
8: धन्यवाद आपका।
2: तो इस तरह से इनकी समस्या का समाधान हो गया है। अगर हमारे खेत में चूहे लगते हैं तो यह घरेलू उपाय हम कर सकते हैं।
3: बिल्कुल,
2: और अपनी फसल से चूहों को भगा सकते हैं ताकि चूहे नुकसान ना करें।
3: बिल्कुल, तो एक बार मैं और बता देता हूं भैया, आपकी कोई बासमती धान से संबंधित समस्या है तो अभी डॉक्टर साहब हमारे पास लगभग 20 मिनट और हैं
2: जी,
3: तो आप फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा है 94-57-07-82-88।
2: हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी, हेलो बासमती।
10: हेलो,
3: हाँ जी, हेलो बासमती, थोड़ा रेडियो सेट से दूर हो जाइए।
10: चलो ठीक है जी।
2: हाँ, रेडियो से थोड़ा दूर हो जाइए ताकि बात अच्छी आपको आए।
10: ठीक है जी, ठीक है, हो गया
3: जी। हाँ, अपना नाम बता दीजिए।
10: अतर सिंह, कवाड़ी वाला
3: जी।
2: अतर सिंह जी,
10: जी
3: क्या पूछना चाह रहे हैं आप बासमती धान से संबंधित?
10: छोटी चितली लग रही है धान में।
2: जी जी जी,
10: सफेद
9: सफेद रंग की तितली जो लग रही है, तो इसका मतलब आप अतर सिंह जी, आपके खेत में सफेद रंग की तितली लग रही है ना छोटी?
10: हाँ।
9: वो दो तरह की तितली होती है, वो पत्ती के पीछे की तरफ बैठती है क्या? धारी धारी तो नहीं हो रही लाइन लाइन सी उसके पंखों पर?
10: नहीं, हो रही है धारी धारी।
9: हाँ, तो वो तो बहुत सारी दिख रही होंगी।
10: हाँ बहुत।
9: हाँ तो कोई बात नहीं, अब तो उसने वो पत्ती लपेटक है, उसके लिए बहुत परेशान ना हो आप। एक जो दवा अभी हमने इसके लिए बताई थी तना छेदक के लिए, आप यदि कार्यक्रम सुन रहे हैं तो क्लोरेंट्रो नीली प्रोल हमने एक दवा बताई थी 4 किलो प्रति एकड़, उसी को डलवा दीजिए, उसी से तना छेदक का भी नियंत्रण हो जाएगा और आपका ये पत्ती लपेटक भी हो जाएगा। और यदि इसमें सूंडी भी है क्या, पत्ती को जैसे दोनों सिरों से लार से चुपका के और वो सफेद सफेद खुरच रही है क्या, ऐसा भी है? हाँ तो कोई बात नहीं है, उसके लिए वही डलवा दो क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल, हो जाएगा काम। ठीक है, ठीक है, या कारटेप पाउडर आता है वो डलवा देना, 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करा देना। ठीक है,
2: तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाई जागरूकता के साथ में देखिए कार्यक्रम में सहभागिता ले रहे हैं और लगातार डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं और अपनी समस्या का समाधान पा रहे हैं।
3: तो एक और फोन आ रहा है, देखिए बात कर लेते कौन है।
2: हेलो,
3: हाँ जी, हेलो बासमती,
11: हाँ जी, मैं उत्तराखंड हंद्वार से बोल रहा हूँ
3: जी। नाम बता दीजिए अपना।
2: आप रेडियो स्टेशन से थोड़ा दूर हो जाइए। हाँ जी, ताकि आपकी आवाज स्पष्ट
3: आ रही है जी, आपकी आवाज में इको आ रहा है ना, थोड़ा सा दूर इसलिए हो जाइए जी। अब बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप बासमती धान से संबंधित।
11: ये हमने धान लगा रखी बासमती
2: जी
3: जी,
11: तो उसमें कीट का ज्यादा प्रयोग हो रहा, बाल काली काली पड़ रही है।
9: बाल काली पड़ रही है, कौन सी वैरायटी लगाई है?
11: ये तो पुरानी वैरायटी थी, हमारे पास तो पुराना ही बीज था।
9: अच्छा, तो बाली निकल आई सारी?
11: हाँ, बाले कुछ तो निकल गया, कुछ रह रही।
9: अच्छा, निकल रही है इस समय। तो कोई स्प्रे किया होगा आपने अभी जरूर, दो दवाई मिला के?
11: ना, स्प्रे कोई नहीं करा,
9: कोई नहीं करा है। तो फिर ऊपर से जो दाने खाली रह रहे होंगे उन पे लाल रंग का सा निशान होगा, वो मौसम की वजह से कई बार होता है। ऊपर ऊपर के जो बाली है, बाली में से ऊपर के 5-7 दानों में नजर आ रहा होगा या सब में नजर आ रहा है?
11: किसी बाल मारा।
9: हाँ, वो इसलिए देखो, वो क्या है, मौसम की वजह से है, वो कोई बीमारी नहीं है। यदि आप चाहें और स्प्रे न किया हो तो पोटास का एक स्प्रे कर सकते हैं, बट स्प्रे आपने 3-4 बजे के बाद करना है। अदरवाइज आप दूसरा एक दवाई है, एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल, दो दवाइयों का मिलके आती है। इसका आप 1 ml दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगाना और 200 ml दवा लगाना, तो आपको और भी जो बीमारियां हैं वो इसमें नहीं आएंगी। एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल। ठीक है जी, शेर सिंह जी,
2: बिल्कुल। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिद्वार से ही हमारे श्रोता थे जिन्होंने की अपनी समस्या रखी और अपना समाधान पाया है। तो एक बार फिर गंगाराम भैया फोन नंबर बता दीजिए जिससे कि हमारे किसान भाई हमें फोन कर सके।
3: बिल्कुल, हमारा देखिए फोन नंबर है 94-57-07-88। तो भैया इस पर फोन करके आप बासमती धान से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं जो आपके प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं।
2: बिल्कुल,
3: एक और फोन नंबर हमारा है 013-41-230-105।
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रितेश शर्मा, जो कि निदेशक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में, और लगातार भाइयों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। अभी भी हमारे कार्यक्रम में लगभग 15 मिनट शेष हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं।
3: तो इस बीच डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे थे कि कोई युवा अगर निर्यातक बनना चाहे तो वो कैसे बन सकता है, थोड़ा सा रोशनी डालने।
9: बिल्कुल, देखिए निर्यातक बनने के लिए हमको, क्योंकि अधिकतर युवा या दूसरे लोग ये समझते हैं कि हमें बहुत ज्यादा सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने होंगे, बहुत सारे कागजी कार्यवाही होगी, ऐसा नहीं है
3: जी।
9: यदि आप निर्यातक बनना चाहते हैं इसका मतलब है आपने कोई ना कोई व्यापार कर रखा है
2: जी।
9: तो आपके पास आपने जो भी फर्म बना रखी है उसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए उस फर्म के नाम से
3: जी।
9: और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब आपका होगा ही
2: जी।
9: तो आपको क्या करना है, DGFT एक साइट है, आप लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड
3: जी।
9: तो DGFT.gov.in इस साइट पर आपको जाना है, और जैसे ही आप खोलेंगे सामने आएगा अप्लाई फॉर IEC, क्योंकि देखिए दो ही कागज चाहिए मेन, और वो दोनों कागज आपको पैन कार्ड और इसके बेस पर ही मिल जाएंगे
2: जी।
9: तो आपने IEC के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है
3: जी।
9: उसमें एक अपनी डिटेल भेजोगे, भरोगे, फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, तो आपको OTP आएंगे, उसके बाद आपका दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, देन फिर आप आगे का प्रोसेस पूरा भर के उसमें कागज लगा के, जिसमें बैंक की डिटेल चाहिए, आपका रेजिडेंस और जो वो सारे कागज चाहिए, वो आप अप्लाई हो जाएगा, और हो सकता है 24 घंटे के अंदर ही आपको IEC मिल जाए
2: जी, जी।
9: तो ये कागज हो गया तो समझिए आप देश के निर्यातक या आयातक बन चुके हैं, इसे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड बोलते हैं
2: जी।
9: इसके बाद फिर उसी साइट पर आपने अप्लाई फॉर आरसीएमसी करना है। आरसी

0: एमसी क्या है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो जब आप एग्रीकल्चर का कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करोगे, तो आपने एपीडा की हमारी आरसीएमसी पे करना है। यदि आप चाय करते हो तो टी बोर्ड की करना है।
1: जी
0: जैसे जैसे आपके पदार्थ हैं उसी हिसाब से बोर्ड या ये एजेंसी हैं उनके आप मेंबर बन जाएंगे, इसको अप्लाई कर देंगे और आप कोई भी निर्यात कर सकते हैं। ये तो हुई आपकी, क्या आपको कानूनी व्यवस्था चाहिए, क्या कागज़ चाहिए, तो ये बहुत आसान है, ये तुरंत ऑनलाइन सब मिल जाता है। कहीं आपको किसी चक्कर नहीं लगाने, किसी ऑफिस नहीं जाना है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है बायर,
1: जी
0: खरीददार। उसके लिए एपीडा आपको लगातार मेल पर भेजेगा। कई बायर सेलर मीट होती हैं, कभी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होते हैं, कभी देश में भी होते हैं, देश के बाहर भी होते हैं। वो सारी चीज़ें या आप मेल कर करके वो सब आप पता कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं।
1: तो मैं देखिए बहुत ही आसान है निर्यातक बनना। इस
0: बिल्कुल
1: तरीके से जो हमारे युवा हैं अगर वो फॉरेन ट्रेड में जाना चाहते हैं और निर्यात करना चाहते हैं और खास करके जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उसमें अगर वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम निर्यातक बन सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं, है ना गंगाराम भैया?
2: बिल्कुल सही बात है। और भाई अगर अभी भी हमारे किसान भाई कोई बासमती धान या निर्यात से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भैया हमें सीधे फ़ोन करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो मौजूद हैं, तो कहो तो मैं फ़ोन नंबर एक बार बता देता हूँ,
1: बिल्कुल भाई, एक बार फिर से नंबर और बता दो भैया।
2: 9457-07-82-88 भैया एक नंबर है हमारा। दूसरा भैया 230-105 और उससे पहले एसटीडी कोड लगा दीजिएगा 0-13-41, ये वाला फोन नंबर है। इन दोनों में से किसी एक पर ही फोन करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखो भैया बात यह है कि जो हम विदेशों में निर्यात करते हैं तो भाई उसके लिए अच्छा माल होना चाहिए, अच्छा हमारा उत्पाद होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी बासमती धान की फसल है उसमें हम किस तरीके से उसकी गुणवत्ता बरकरार रखें और ऐसे कौन कौन से काम करें जिससे कि अच्छी गुणवत्ता की धान हमें मिले और हम विदेशों में उसे निर्यात कर सके। डॉक्टर साहब
0: देखिए, बासमती के उत्पादन में जो हमें प्रमुख बात ध्यान रखनी है
1: जी
0: वो ये है कि एक तो उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता की जब आप बात कर रहे हैं तो दाना अच्छा बने,
1: जी
0: खरे खराब दाने ना हो। जो कि बासमती पाठशाला में पहले भी बताया गया है कि किस तरह से आपने उसकी बिजाई करनी है, कैसे रोपाई करनी है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कोई मिक्सिंग ना हो,
1: जी
0: दूसरे तरीके के कोई दाने उसके अंदर ना मिल जाएं, चाहे वो खेत से हों चाहे वो बाहर हों। और जब हम रसायनों का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम ऐसे कोई भी रसायन प्रयोग ना करें जिसकी जो कि निर्यात के लिए आपकी समस्या खड़ी कर सकता है। आप देखते हैं विभिन्न राज्य सरकारें लगातार आपको बताती हैं, बैन भी लगाती हैं कि ये पेस्टिसाइड्स आपने बासमती में नहीं डालने हैं। तो
1: जी
0: वो जो पेस्टिसाइड है, चाहे वो ट्राइसाइक्लाजोल हो, चाहे वो दूसरे पेस्टिसाइड्स हो, एसीफेट हो, ये सब आपने नहीं डालने हैं। केवल जो वैज्ञानिक की सलाह से आप पेस्टिसाइड डालें, सही समय पे डालें, सही मात्रा के साथ डालें, तो आपका जो उत्पाद होगा उसमें जहर के अंश नहीं होंगे। और वो निर्यात ही नहीं, हम अपने देश में भी अपने युवाओं को, अपने घरों में अपने बच्चों को एक अच्छा भोजन देंगे, क्योंकि चावल सब जगह खाया जाता है। तो हमें अपना भी ध्यान रखना है, जिससे कि अभी तो हम थोड़े से उसमें थोड़ी सी उपज या किसी लालच में ज़्यादा दवाई डालें और फिर लाखों रुपए डॉक्टरों को देते रहें, तो इसको भी हमें मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। हमें ऐसा पैदा करना है जो हमें खाना है, जो हम खा सकते हैं वही दुनिया को हम खिला सकते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लगता है किसान भाइयों को भी है, और दूसरे लोग जो इस व्यवसाय में लगे हैं, खास तौर से हमारे जो पेस्टिसाइड डीलर्स हैं, उनको भी ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप ज़्यादा, जो भी संस्तुति की गई है कि इतने ML उसकी डोज है, उतनी ही आप किसान को बताएं और कोशिश करें कि उससे ज़्यादा वो कैसे भी ना डाल पाए। जी
2: बिल्कुल। तो देखिए ये हमारा जो कार्यक्रम है माह के आखिरी मंगलवार को होता है, तो आखिरी मंगलवार को हमारे किसान भाई जानते हैं कि सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती होता है। तो अभी भी हमारे पास समय है, हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो जिनकी कोई जिज्ञासा होगी बासमती धान से संबंधित, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो फ़ोन करें और फ़ोन नंबर एक बार और बता देते हैं। फ़ोन नंबर है 9457-07-82-88, तो भैया इस पर फ़ोन आप कर सकते हैं। इस बीच और कुछ
1: तो भाई देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। भैया देखो जो हमारे संस्तुत रसायन है भैया हमें केवल उन्हीं का इस्तेमाल करना है और संस्तुत मात्रा में करना है।
2: जी
1: ये दो चीज़ें हमें समझनी है, एक तो संस्तुत रसायन यानी
2: हम्म,
1: कि जो रिकमेंड किए गए हैं, जो बताए गए हैं, केवल उन्हीं रसायनों का प्रयोग करना है। जो नहीं बताए गए हैं केवल उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरे संस्तुत मात्रा, ये
2: जी
1: बहुत ज़रूरी है।
2: बिल्कुल।

0: दोनों का आप तालमेल बना के रखें, और अगर आप जो ऐसे बासमती पैदा करते हैं जिसमें कोई रसायन के अंश नहीं होते हैं,
1: जी
0: तो विदेशों में अच्छे दाम पर बेच के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो भाई देखिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विदेशों में जो हम माल भेजें, जो उसकी गुणवत्ता की जांच अगर उस देश में होती है, और देखिए होती ही है, देखिए कोई भी है वो जांच करके लेता है, चाहे वो विदेश की बात हो या हमारे देश की बात हो, सबसे पहले वो देखता है कि ये माल कैसा है, अच्छा है या नहीं है, तभी हमें अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा मूल्य मिलता है।
0: बिल्कुल। तो भाई देखिए, अभी भी समय है हमारे किसान भाई, अगर कुछ फ़ोन कोई करके कोई समस्या पूछना चाहते हैं तो एक बार और फ़ोन नंबर मैं बता देता हूँ,
1: जी
0: 9457-07-82-88 हमारा फ़ोन नंबर है, और भैया 0-13-41-230-105 एक दूसरा नंबर है, इनमें से किसी भी एक पर भी आप फ़ोन करके अभी भी डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं।
1: और देखिए, जब तक फोन आते हैं तो हम डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, और धीरे धीरे कार्यक्रम हमारा संपन्न होने वाला है। तो डॉक्टर साहब, चलने से पहले आप हमारे बहन भाइयों को बासमती धान की देखभाल के संबंध
0: लेकिन
1: में।
0: इस बीच में एक फ़ोन आ रहा है, पहले उनकी
1: जी
0: राय ले
1: जी
0: लेते हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: हाँ, हेलो।
2: हेलो
0: हाँ जी,
2: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बता
2: नमस्कार जी।
0: दीजिए।
2: राजपाल
0: हेलो
2: सिंह बोल रहा हूँ, सुखी डांगल
0: जी, राजपाल जी, क्या पूछना चाह रहे हैं बासमती धान से संबंधित?
2: भाई, मूंगी लगा रखी सरबत साहब,
1: जी जी
2: जी मुझे तितली हो रही।
1: बिल्कुल, तितली के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं
0: हाँ, देखिए
1: आपको।
0: आप ये कार्यक्रम तो सुन ही रहे होंगे। तितली दो तरह की होती हैं। अभी पहले भी एक प्रश्न था हमारे शेर सिंह जी का था और कुछ और लोगों का भी, तो दो तरह की
2: अच्छा
0: तितली होती हैं। एक होती है छोटी तितली है जो फुदकती बहुत है, इधर उधर जाती है पत्तियों पर, और उसकी पत्तियों जो पंख हैं उस पर धारियां होती हैं, ठीक है ना।
2: फुदकने वाली हो,
0: हाँ, और एक
2: फुदकने
0: है,
2: वाली, फुदकने
0: हाँ जी,
2: वाली हो रही हो।
0: हाँ, तो उसके लिए परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्लोरेंट्रो नीली प्रोल एक दवा आती है, उसको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डलवा दीजिए।
1: बिल्कुल, तो इस तरीके से आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये फर्टेरा के नाम से आती है बाजार में,
0: जी
1: और भी कई नामों से मिलती है, तो इसको आप ले सकते हैं और धान की फसल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना गंगाराम भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये था हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती। आपको पता ही है कि हमारे विशेषज्ञ आज थे डॉक्टर रितेश शर्मा, जो के निदेशक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के जो फ़ोन आए उनके निदान में आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोता जो सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और खास तौर से आकाशवाणी नजीबाबाद ने जिस तरह के ये कार्यक्रम किए हैं जिससे कि किसानों को सीधे अपने खेत में जो समस्या है उसको दूर कर सकें, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो वह देखो, डॉक्टर साहब ने आज बहुत अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिया है और हमारे लगभग सभी किसान भाइयों की समस्या का समाधान हो गया है,
0: जी,
2: क्योंकि जो तितली इस समय हमारे खेत में दिखाई दे रही है, और ये तितली देखो नुकसान नहीं करती है, केवल ये अंडे देती है,
0: बिल्कुल
1: बस ये तो अंडे देकर निकल जाती है और बाकी का काम भैया फिर हो जाता है, क्योंकि अंडों से हानिकारक कीट निकलता है और फिर वो जो है गोफ काट देता है, और हम कहते हैं कि हमारा तना ऊपर से सूख गया।
0: जी, हम ऊपर की गोब खींचते हैं तो वो जो है उसमें बदबू आती है और वो आसानी से बाहर निकल जाती है, तो ये काफ़ी आम बीमारी थी। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थीं, तो हमारे किसान भाइयों ने देखिए बहुत सारे प्रश्न हमारे किए और उनका निदान किया।
1: बिल्कुल।
0: आपको बता दें कि भाई जो हमारा अगला हेलो बासमती सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा वो होगा भैया 29 सितंबर 2026 को। तो भैया 29 सितंबर का आप इंतज़ार करिएगा, आप उस बीच में हमारे विशेषज्ञ आएंगे और आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य देंगे।
1: तो बासमती धान के बारे में पूरी जानकारी सुनने के लिए, तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए सुनते रहिएगा हर मंगलवार को हमारे विशेष कार्यक्रम
0: बासमती
1: बासमती
0: धान
1: धान रेडियो
0: रेडियो कृषि
1: कृषि पाठशाला।
0: पाठशाला।
1: अरे मास्टर जी,
0: हाँ भैया।
1: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
0: अरे भाई, लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय, सही मात्रा, सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
1: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
0: और भैया, वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
1: हाँ, देश किसान, किसान का मान, बासमती धान।
3: किसान भाई, करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
4: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
5: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
0: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
1: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
0: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।

0: ध्यान रखते हुए अपने खेती किसानी के काम करें और जो अपने पशुपालन है उसका भी ध्यान रखें कि भैया अपना चारा समय से ले आएं और अपने पशुओं का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें।
1: बिल्कुल। तो भैया किसान भाइयों, आपका हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगता है, इसमें आप किस तरह की जानकारी सुनना चाहते हैं, तो अपनी राय और मशवरा हम तक अवश्य पहुंचाएं। और भाई चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता
0: कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 2467।
1: तो भाई इस पते पर हमें थारी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। और अगर आप किसी वजह से भाई चिट्ठी नहीं लिख पाते हैं तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हमारे पास भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर आप जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज में भेज सकते हैं।
0: व्हाट्सएप भेजने के लिए भैया फोन नंबर बता देते हैं हम, 9457-07-82-88।
1: तो भाई इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं या हमें चिट्ठी लिख सकते हैं, या इसके अलावा भाई देखिए हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर आकाशवाणी नजीबाबाद से चैनल है भैया।
0: बिल्कुल, तो आप किसी तरीके से भी हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी जो खेती किसानी की समस्या है भैया, पशुपालन की, बागवानी आदि संबंधी कोई भी समस्या है, उसका निस्तारण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो भैया आप 6:05 से 6:45 तक हमारा कार्यक्रम प्रतिदिन अवश्य सुनिए और खेती बाड़ी पशुपालन के संबंध में जानकारी अवश्य लीजिए।
0: बिल्कुल, तो भैया देखिए बातें बतेरी हो गई, अब चलते चलते आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की, अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम,
1: और अपने भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।
0: किसान भाइयों, राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

किसान श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे दें।

आज रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण में आकाशवाणी मथुरा की प्रस्तुति प्रसारित की जाएगी, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। लखनऊ केंद्र से ही संध्या 6:50 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आज रात्रि 9:30 पर परिचर्चा हमारे श्रोता सुनेंगे। परिचर्चा का विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मातृशक्ति वंदन अधिनियम। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर अभय कुमार मित्तल, डॉक्टर अंजना राजपूत और डॉक्टर मृदुला त्यागी। संचालन एजाज अहमद का होगा। संध्या 7:32 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आनंद लीजिएगा पुनीत मेहरा के गाए भजन का। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत संध्या में आज रात्रि 8:30 पर। क्रम रहेगा एक ही फिल्म से का और रात्रि 10:30 पर पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे आपकी फरमाइश। कल संध्या 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में पेयजल समस्या को दूर करने हेतु शुरू की गई सरकारी योजना के अंतर्गत हर घर नल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के विषय में जानकारी हमारे श्रोताओं को दी जाएगी। युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:15 पर क्रम रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज यूथ कनेक्ट कहानी के उस पार में कहानी बड़े भाई साहब का एपिसोड 3 युवा श्रोता सुन सकेंगे और साथ ही क्रम रहेगा फिल्म संगीत का। कृषि जगत कार्यक्रम में कल संध्या 6:05 पर डॉक्टर सर्वेश कुमार संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से नरेश पाल सिंह की बातचीत का विषय रहेगा सर्दियों में फूलों की बुआई समय पुनः

0: संध्या 6:45 पर विविधा के अंतर्गत श्री जेरीन के थॉमस की वार्ता का विषय रहेगा मानवता की सेवा को समर्पित मदर टेरेसा की जीवन यात्रा। समय याद रखिएगा कल शाम 6:45 पर। युगराज सिंह के गाए शब्द हमारे श्रोता सुन सकते हैं हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल शाम 7:45 पर। चर्चा का विषय है कल रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और कानून की बात कार्यक्रम का समय रहेगा कल संध्या 7:32 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कल रात्रि 10:00 व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कम्पेट कार्यक्रम होगा। दिल ने फिर याद किया गीत संध्या रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से क्रम में और छाया गीत कार्यक्रम सुनिएगा कल संध्या 6:55 पर। मिड डे मेलोडी दिन में 12:30 पर और प्रातः 11:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। चित्रपट संगीत प्रातः 10:00 पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे हमारे श्रोता सुन सकते हैं और गोल्डन हिट्स का समय रहेगा कल प्रातः 8:45 पर। तो श्रोताओं ये थी हमारे कार्यक्रम संबंधी जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद। अभिषेक भैया
1: हालत ना भैया,
0: देखो इस जो है बरखा बूंदी में या क्या होता है कि अपने खेते में ये पानी भर जाता है, तो बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं कि जिनका पानी कम चाहे हो तो बुड़म चली जाती है और नुकसान हो जाता है।
1: रत्ना बहनी, अगर पंच भैया अपनी खेती पाती के लिए साथ में कृषि विविधीकरण का अपनावत है और खेती पाती के साथ में होने वाले काम जैसे डेयरी है, बागवानी है या इके साथ में कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन इतन के सब काम करते हैं, तो वही होए वाली नुकसान तेने बच सकते हैं और दुई पैसा जो नगदी के रूप में अपने हाथ में आवत है तो इसे किसान पंच भैया अपन आमदनी द्विगुनी कह सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात कहा थो, और द्विगुनी हमेशा बनी रहे इके खातिन जो है हम पंचन का जो रोज की खबरें हैं वही जरूर मालूम रहे चाहिए, तो सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2025-26 में देश में दलहन का उत्पादन बढ़कर लगभग 274 लाख टन पहुंच गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में करीब 17 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू उत्पादन बढ़ने का असर दलहन के आयात पर भी पड़ा है। वर्ष 2024-25 में करीब 73 लाख टन दलहन का आयात हुआ था, जो 2025-26 में घटकर करीब 60 लाख टन रह गया है, यानी आयात में लगभग 13 लाख टन की कमी आई है। वहीं दलहन की खेती का रकबा भी बढ़ा है और उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। सरकार का लक्ष्य देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत बेहतर और जलवायु अनुकूल बीजों को बढ़ावा देने, खेती का रकबा बढ़ाने और किसानों को तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहनी फसलों की सुनिश्चित खरीद उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। यानी बढ़ता उत्पादन और घटता आयात दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदम का संकेत है।
1: तो रही आज के लिए खबरें और बारी है आज की बातें सुने के। तो आज है खरीफ फसलों में पोषक तत्व कमी के लक्षण, उपचार और के बारे में बता रहे हैं जसवीर सिंह भैया, तो चलो सुना जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से धान, मक्का, मोटे अनाज, दलहनी फसलों में अरहर, उड़द और मूंग और तिलहनी फसलों में मूंगफली, तिल और कहीं कहीं सोयाबीन की फसल खेत में खड़ी है। जहां फसल खेत में है तो कई बार जो छिपी हुई भूख है पोषक तत्वों की, उसकी कमी के लक्षण दिखते हैं, तो इनका उपचार कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं जसबीर सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। सिंह साहब ये बताएं कि जो खरीफ फसलें हैं उनमें भूख मिटे, जो पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हैं उनका उपचार हो, इसके लिए क्या सलाह देंगे?
4: किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले हम जानते हैं कि खरीफ की कौन कौन सी मुख्य फसलें हमारे प्रदेश में बोई जाती हैं। तो धान्य फसलों की अगर हम बात करें तो धान, मक्का, ज्वार और बाजरा। दलहनी फसलों की बात करें तो अरहर, उड़द, मूंग और लोबिया। तिलहनी फसलों में तिल है, मूंगफली है और सोयाबीन है। इसके अलावा कुछ किसान भाई जो है वो सब्जियों की खेती करते हैं। अधिकतर फसलों में जो है किसी न किसी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। अगर उस कमी को हम पूरा ना करें तो उसकी वजह से हमारी फसल की उपज और किसान का आर्थिक लाभ जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है।
3: अक्सर किसान भाई बहन कुछ खास उर्वरक हैं जैसे यूरिया है, ज्यादा से ज्यादा डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं, जो और पोषक तत्व हैं उनकी कमी बनी रहती है।
4: किसान भाइयों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी विशेष रूप से हमारी फसलों में पाई जाती है। तो पहला मुख्य तत्व हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी को किसान भाई बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पुरानी और जो नीचे की पत्तियां होती हैं उसमें पीलापन आने लगता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, और अगर भारी कमी अगर होगी तो पूरा पौधा ही पीला हो जाता है। दूसरा तत्व हमारा फास्फोरस आता है। फास्फोरस में क्या होता है कि पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, पौधों में वृद्धि और विकास रुक जाता है, जिससे हम पहचान जाते हैं कि फास्फोरस की कमी इसमें आ गई है।
3: और पोटाश की?
4: पोटाश की कमी में क्या होता है किसान भाइयों कि किनारे से जो नीचे के पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये पत्ते सूख रहे हैं किनारे से या जो है झुलस रहे हैं। इसी तरह से जिंक है। जिंक में क्या होता है किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि धान की फसल में खैरा रोग लगता है, मक्के की फसल में जो है सफेद धारी रोग लगता है, तथा दलहन और तिलहन की फसलों में आपने देखा होगा कि जो ऊपर की पत्तियां होती हैं उनमें पीलापन आता है और लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। जैसे मूंगफली और सोयाबीन की फसल में विशेष रूप से आपने देखा होगा कि लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। फिर आता हमारा एक तत्व गंधक। इसको सल्फर बोलते हैं। सल्फर की कमी से क्या होता है कि ऊपर की पत्तियां पीली हो जाती हैं और नीचे की पत्तियां हरी बनी रहती हैं। फिर आता है बोरोन। बोरोन में क्या होता है कि पत्तियां कटोरी नुमा साइज में यानी कि सिकुड़ने लगती हैं
3: जी,
4: और उनको अगर हम छूके देखते हैं तो उनकी सतह जो है सामान्यतया कठोर दिखाई देती है। फल जो है जैसे खीरा आदि हैं सब्जियां, उनमें टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, और खासकर ये टेढ़े मेढ़े होने वाली समस्या जो सब्जियों और फलों में ज्यादातर पाई जाती है।
3: तो खरीफ फसलों में जहां नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिख रहे हैं सिंह साहब, तो इसका उपचार इस समय कैसे हो?
4: किसान भाइयों, अगर इन लक्षणों को जो हमने अभी बताए उनको हमने समझ लिया, तो नाइट्रोजन अगर हमें पूरी करनी है तो नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया दानेदार जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर हमने फास्फोरस की कमी को पहचान लिया है तो डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। पोटैश अगर हमने कमी को पकड़ लिया है तो पोटैश जो है बुवाई के समय तो हम 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करते हैं
3: जी।
4: और सल्फर का अगर प्रयोग करना है तो 8 से 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करते हैं। और लेकिन जो तिलहन वाली फसलें हैं उनमें हमें ये सल्फर की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, 12 से 15 किलोग्राम करनी चाहिए।
3: 12 से 15 किलोग्राम प्रति
4: एकड़ के हिसाब से
3: बेसल रोज
4: जी।
3: और जैसे आपने नाइट्रोजन की कमी के लक्षण बताए और इनके उपचार के लिए दानेदार यूरिया या नैनो यूरिया प्लस का अगर खड़ी फसल में छिड़काव करना है तो?
4: अब किसान भाइयों, हम इस बात पे आते हैं कि हमारी फसल खड़ी हुई है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बेसल डोज में ही डालते हैं, उन्हें हम नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है तो यूरिया दानेदार का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे नैनो उर्वरक भी बाजार में इस समय उपलब्ध हैं। नैनो उर्वरकों का प्रयोग करके भी हम जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक बोतल होती है 500 मिलीलीटर की, उस 500 मिलीलीटर की बोतल को 125 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ में

0: में इसका स्प्रे कर देना चाहिए 35 से 40 दिन की अवधि में।
1: और जहां फास्फोरस की कमी के लक्षण दिख रहे हैं खड़ी फसल में,
0: फास्फोरस की कमी के लिए शुरुआत में हमको बुवाई के समय फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए, और अगर खड़ी फसल में हमको लक्षण दिखाई देते हैं तो नैनो डीएपी जो है 500 मिलीलीटर उसको 125 लीटर पानी में उसी प्रकार से जैसे मैंने नैनो यूरिया का प्रयोग विधि बताई है उसी प्रकार से प्रयोग करके हम फास्फोरस की कमी को दूर कर सकते हैं।
1: किस अवस्था पर सिंह साहब?
0: नैनो डीएपी है उसको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों को एक साथ मिला के 35 से 40 दिन पे हम पहला छिड़काव कर सकते हैं।
1: और दोबारा
0: अगर करना है तो हम 20 दिन के बाद दूसरा छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए जो फूल आने से पहले की अवस्था पे हमको नैनो उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।
1: आपने कहा कि पोटास का बेसल डोज में प्रयोग हो, लेकिन कई बार किसान भाई बहन अपनी खरीफ फसलों में पोटास का प्रयोग नहीं कर पाए हैं और खड़ी फसल में उसके लक्षण दिख रहे हैं, तो खड़ी फसल में इस समय क्या करें?
0: किसान भाइयों, खड़ी फसल में अगर पोटास के और सल्फर के इन दो तत्वों की कमी के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो सल्फेट और पोटास एक आता है 0050 उस पे लिखा होता है, 1 किलोग्राम पैकिंग का ये होता है
1: जी,
0: इसका प्रयोग हमको जो है 1 किलोग्राम के पैकेट को 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में मिला के करना चाहिए, यानी कि 1% का घोल बना के हमको इसका खड़ी फसल में छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे हमारी सल्फर और पोटास दोनों ही तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि इसमें 50% जो है पोटास होता है और 17.5% जो है वो सल्फर पाया जाता है। और इसके अलावा जो है अभी हमारे दो तत्व और जो हमने जिनकी पहचान के लक्षण बताए थे, जस्ता में 5 से 8 किलोग्राम मोनो जिंक आती है उसका हमको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए, बोरोन की अगर हम बात करें तो इसका 5 किलोग्राम बोरोन 14.5% वाला उसका 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है बाजार में जिंक और बोरोन दोनों ही नैनो उर्वरकों के रूप में भी आ गए हैं
1: जी,
0: तो इनको हम जो है दोनों ही तत्वों को पानी में मिला के 1 एकड़ में अगर छिड़काव कर देंगे तो हमारे जिंक और बोरोन दोनों से संबंधित जो लक्षण है उनका उपचार भली भांति किया जा सकता है।
1: सिंह साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उपचार के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके इफ्को कार्यालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 99 56 39 12 43 99 56 3 91 243 99 56 39 12 43।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उपचार के बारे में? सिंह साहब,
0: किसान भाइयों हमारा यही कहना है कि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो उर्वरकों की सही मात्रा का सही समय पर प्रयोग करना चाहिए, उनके लक्षणों को खेत में जाकर देखना चाहिए और जो उनके लिए समुचित उर्वरक हैं सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करके हम बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: जसबीर सिंह साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रत्ना भाई ने देखो जानकारी की बातें हुई और पंच इंतजार कर रहे थे कि लोकगीत जरूर सुनावा जाए उनका, तो आज लोकगीत है खेमटा चांद कबले लुकाई, और स्वर है हीरालाल सैनी व साथी भयन कैद, तो सुना जाए यू लोकगीत खेमटा।

0: और मिर्च करेला के अलावा एक सब्जी भी आपने,
1: एक तुरई करते हैं रसा।
0: अच्छा
1: तुरई, वो भी मचान बीज से।
0: तो मचान पर करेला और तुरई,
1: ये मचान पे होता
0: बरसात
1: है
0: की वजह से,
1: बरसात की वजह से। और उसमें रसा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है और फ्रूटिंग फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है।
0: ये बताएं कि मिर्च की फसल कैसी चल रही है?
1: मिर्च की हमारी फसल लगभग एक महीने की हो गई है, उसमें अभी निराई गुराई चल रही है और फ्लावरिंग 10 दिन बाद आना शुरू हो जाएगा।
0: मिर्च का अंतरण कितना रखते हैं, लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी?
1: मिर्च का जो देसी प्रजातियां हैं उनका हम रखते हैं लाइन से लाइन 2 फीट और हाइब्रिड का रखते हैं 2 से 2.5 फीट और पेड़ से पेड़ की दूरी रखते हैं 1 फीट और हाइब्रिड की 1 से 1.5 फीट के बीच में रखते हैं।
0: अच्छा, फसल की भूख मिटाने के लिए क्या क्या आपने दिया बुआई के पहले, रोपाई के पहले और खड़ी फसल में?
1: हम लोग सब मिर्च है, करेला है, तुरई है या जो भी अन्य फसलें करते हैं, हम 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी खाद डालते हैं।
0: यानी 100 कुंतल?
1: 100 कुंतल पर एकड़। और इसके बाद जो है कुछ एनपीके, अब एनपीके की हमने मात्रा थोड़ी कम कर दी है, जो अब स्मार्ट फर्टिलाइजर है, नैनो है, इनका प्रयोग अब ज़्यादा करते हैं। फिर भी हमने करीब 1 एकड़ में 25 kg DAP, 20 kg पोटास और 25 kg यूरिया बेसल डोस में और 5 kg सल्फर
0: जी दिया है।
1: दिया है मिर्च और करेले दोनों में ही।
0: और तुरई में?
1: तुरई में भी लगता है यही है, रेशियो
0: रेशियो एक ही है।
1: रेशियो एक ही है।
0: तो फिर आगे भी खड़ी फसल में कुछ?
1: खड़ी फसल में 30 दिन बाद एक बेसल डोस और देते हैं 20 kg पर एकड़ का यूरिया का, और उसके बाद जब हर तुलाई होती है उसके बाद देते हैं। और इसके बाद हम इस समय जो सेल्युलर फर्टिलाइजर है NPK 52034 1919, नैनो DAP, नैनो यूरिया, इनका ज़्यादा उपयोग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग यूरिया का कम करते हैं।
0: यानी पानी छिड़काव करते हैं,
1: पानी छिड़काव ज़्यादा करते हैं।
0: स्मार्ट उर्वरकों में नैनो यूरिया प्लस और नैनो DAP
1: जी।
0: करेला और तुरई की बुआई कब आपने की और कौन सी वेराइटी आपने चुना?
1: देखिए करेला में हमने ईस्ट वेस्ट की प्राची है और तुरई में एक हमारी BNR की तुरई आती है, उसी को हमने डाला है।
0: इनकी खासियत क्या है, जिन प्रजातियों को आपने?
1: करेले में नक्शा होता है कि जैसे हमारे यहाँ जो डिमांड है वो चिकने करेले की ज़्यादा है, कहीं पे जैसे हमारा प्रयागराज का एरिया है, कुछ एरिया जहाँ पे कांटे वाला ज़्यादा

0: चलता है हमारे यहाँ चिकनी करेले की डिमांड ज़्यादा है, तो हमने चिकनी डाला है और इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है और इसकी हमारा जो कानपुर लखनऊ सराउंडिंग मार्केट है या दिल्ली, वहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा है।
1: इसकी बुआई आपने कब की, करेला और तुरई की?
0: करेला की बुआई हम जुलाई के पहले हफ्ते में, करेला और तुरई की दोनों की बुआई एक साथ ही की है, ये हमने 7 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में की है।
1: इस समय क्या स्थिति है और क्या कर रहे हैं करेला और तुरई?
0: इस समय हमारे अपने करेला और तुरई का हमने मचान बना दिया है और हमारा जो है करेला और तुरई मचान में फैल रही है तो, और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है।
1: जो भी सब्जियां इस समय हैं, चाहे मिर्च है, करेला है, तुरई है, आगे कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करेंगे खड़ी फसल में?
0: इसमें नक्शा, चूंकि बरसात की फसल है तो इसमें इंसेक्ट बहुत आते हैं, फंगस बहुत आते हैं,
1: कीड़ा और बीमारी दोनों?
0: हाँ, कीड़े और बीमारी दोनों आते हैं, तो इसके लिए हम प्रिकॉशन से में ही फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह या नीम ऑयल वगैरह डालते रहते हैं।
1: कितने दिन के अंतराल?
0: ये आप हर 10 दिन, जैसी भी स्टेज हो 10 दिन, या हम देखते हैं कि हमारे पेड़ की स्थिति क्या है
1: जी,
0: अगर कोई उसमें डिसीज नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, तो वो 10 से 20 दिन भी हो सकता है
1: जी, जैसी निगरानी हमेशा हाँ, करते रहते,
0: इसकी एक निगरानी हम प्रतिदिन करते रहते हैं।
1: चूंकि पिछले कई सालों से आप लगातार सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं, तो ये जो मिर्च है, करेला है और तुरई है, इसमें क्या आंकड़ा लगाए हैं कि कब से कब तक आपको फलत मिलेगी और बाजार भाव अच्छा मिलेगा?
0: मिर्च के रेट तो हमको सितंबर से शुरू होती है और जनवरी तक रेट लगभग ठीक मिलते रहते हैं। जहाँ तक हमारा तुरई और करेला का है, करेला के रेट हमको नवंबर तक, जब तक ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है तब तक करेले के रेट अच्छे रहते हैं। जब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो करेले का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और मार्केट में उसका कंजम्पशन भी कम हो जाता है, इसलिए नवंबर तक हम करेला रखते हैं और नवंबर तक ही तुरई रहती है, मिर्च हमारी जनवरी तक जाती है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बताते हैं।
0: 94-157-23-975 94-157-23-975 94-157-23-975।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
0: हर किसान से यही कहते हैं कि खेती को आप एक बोझ के रूप में न लीजिए, एक इंटरेस्ट के रूप में लीजिए, और जब आप इंटरेस्ट से खेती करेंगे, हाईटेक टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, तो खेती में आपको सब कुछ मिलेगा।
1: भंवरपाल सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो इस समय सब्जियों में आपके पास मिर्च है, मचान पर करेला और तुरई है और अच्छी स्थिति में है, अच्छी संभावना आपको दिख रही है उत्पादन और बाजार की, और कुल मिला जुला करके आप सब्जी उत्पादन करके खुशहाल हैं, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अभिषेक भैया देखो, पंच भाई बहनिन का मौसम की जानकारी बता दो ताकि मौसम के हिसाब से काम कर सके।
4: रत्ना बहनी, तो हमका यू मौसम का हाल जोन मिला है भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से मिला है के हिसाब से अगले 7 दिन का जोन वर्षा पूर्वानुमान है वो हम बतावे जा रहे हैं। 25 तारीख यानी कि आज संभाग में अनेक स्थान पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और 26 तारीख से लगाए के 27 तारीख तक संभाग में कुछ स्थान पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। 27 तने लगाए के यहाँ 31 तारीख तक का संभाग में कहूँ कहूँ वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और यू बहनी दोनों जगह ये तनक हाल रहने वाला है।
3: और साथ ही जो चेतावनी की बात कही जाए तो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ 27 से लगाए के 31 तारीख तक कोई चेतावनी नहीं है। 25 और 26 दो दिन पर संभावना है बरखा होगी।
4: बिल्कुल बहनी, तो ये तो मौसम का हाल रहा।
3: देखो पंच भाई, अपन बात कुछ कहा चाहते हैं या अपन कोई सुझाव देवा चाहते हैं तो उनके खातिर जो है हमारे पंचन के पता जरूर लिख ले। तो पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन है 226001।
4: पंचो यू तो रहा पता ही के साथ साथ में अगर ईमेल करा चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस जरूर नोट कर लें। हमारे ईमेल एड्रेस है farmandhome@gmail.com।
3: पंच भाई बहनी देखो, यू रहा है हम पंचन के पता और वही के साथ साथ अब चलक हो रही बिरिया तो पंच भाई से लीन जाए आज्ञा।
5: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। गंगा एक्सप्रेसवे का

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।
1: गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारीकरण अप टू 8 लेन आज मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के तैयार होगा। इसमें खास तौर से जनपद बिजनौर और उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग NH 34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा ही उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा एवं गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से इसका सुलभ प्रदेश की राजधानी से भी होगा।
0: बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 8 मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जाने की संस्तुति को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में 7,968 करोड़ रुपए से बनने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए चयनित 3,446 प्राविधिक सहायक और मंडी परिषद में 126 मंडी सचिवों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

0: चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। लखनऊ दौरे के दूसरे और अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। श्री कुमार ने कहा कि प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी अपनी निष्ठा और पारदर्शिता के लिए मतदाताओं के बीच जाने जाते हैं। उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने की अपील की।
1: बूथ लेवल ऑफिसर्स भारत के लोकतंत्र की आधारशिला। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है, बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए लखनऊ आए थे।
0: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योजना के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
2: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निपुण भारत मिशन के अंतर्गत केन्या, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के लगभग 70 सदस्यीय दल ने गाजियाबाद के 11 विद्यालयों का दौरा किया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN सुधारों को समझना और अनुभव साझा करना है। ईद मिलादुन्नबी का पर्व कल पूरी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में जुलूस और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस मौके पर लखनऊ में निकलने वाले जुलूस ए मोहम्मदी को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए आज मोहम्मदी मिशन और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में ADCP वेस्ट धनंजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि जुलूस ए मोहम्मदी परंपरागत तरीके और निर्धारित मार्ग से ही निकाला जाएगा।

मतदाता तक पहुंचने का किया आह्वान। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को जारी किए सख्त निर्देश। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में कल भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर 2 में से 1 ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के अंतर्गत श्रोताओं लीजिए सुनिए पुनीत मेहरा के गाए भजन।

सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे पुनीत मेहरा के गाए भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में। कार्यक्रम का पहला गीत श्रोताओं आप सबके लिए फिल्म शंकर हुसैन से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना कमाल अमरोही की और संगीत खयाम का।

मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम है गीत संध्या।

शंकर जयकिशन का संगीत बद किया हुआ शैलेंद्र का लिखा गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म थी ससुराल। गीत संध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सत्ते पे सत्ता से, स्वर किशोर और अनितिका, गीतकार गुलशन बाबरा और संगीतकार आर डी बर्मन।

छैला बाबू, आपने सुना इस फिल्म का गीत। आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की थी। शब्द रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस वक्त श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या।

यशोदास और आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना फिल्म छोटी सी बात का गीत। गीत के बोल लिखे थे योगेश ने और संगीत दिया था सलील चौधरी ने।

आम्रपाली, आपने सुना इस फिल्म का गीत। स्वर लता मंगेशकर का था, शब्द रचना थी शैलेंद्र की और संगीत था शंकर जयकिशन का। और श्रोताओं लीजिए सुनिए अब कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ फिल्म है तेरे घर के सामने। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं एस जी बर्मन।

फिल्म तेरे घर के सामने के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का गीत संध्या कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं के कुछ गीत। इन गीतों को लिखा है रानी मलिक ने, संगीत नदीम श्रवण का है। तो आइए लीजिए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ।

एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं के कुछ गीत। इन गीतों को लिखा है रानी मलिक ने और संगीत तैयार किया है नदीम शवन ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में, फिल्म दिल है कि मानता नहीं से।

0: एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं, आज हमने आपको सुनवाए फिल्म दिल है कि मानता नहीं के कुछ गीत। गीतों को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम शवन ने। और अब इस गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से $200 अरब की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
2: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
3: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे होना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
2: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
4: NPCI के द्वारा जो UPI लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
2: महज एक दशक में ही UPI ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
5: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी

0: से काम करते हैं।
1: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
2: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
3: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
4: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
0: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग OBC क्रीमी लेयर के मानदंड से

0: दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग श्रोताओं, नमस्कार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमने कई
3: The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technologies developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India in first innings as rain forces early stumps on day 3 of Colombo test. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000.

0: Relations Departments of States and Union Territories in New Delhi. Mr. Kumar said, India, as a creative economy, has the potential to generate employment, attract investment, and enhance the country's global influence. The Publications Division of the Ministry of Information and Broadcasting has received 7 awards at the Federation of Indian Publishers FIP Awards for Excellence in Book Production 2026. Director General, Publications Division, Dr. Dheeraj Kakadia said, the books and journals published by the division play an important role in bringing diverse and valuable content related to national development, literature, culture, art, and contemporary issues to readers. President Draupadi Murmu has extended greetings to people on the eve of Onam and Eid-e-Milad-un-Nabi. In her message, the president said, Onam is an occasion to express gratitude to nature on arrival of the new harvest. She expressed hope that the festival will inspire the citizens to contribute to the nation's progress. On Eid-e-Milad-un-Nabi, the president said, it is an occasion to recall the preachings of Prophet Muhammad. She said the noble ideas of Prophet Muhammad inspire countrymen to contribute actively towards building an inclusive and developed country. Benchmark domestic equity indices ended in a positive zone today. The Sensex surged 287 points to close at 77,656. The Nifty advanced 115 points to settle at 24,334. In men's cricket, host Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of the Colombo Test. Sri Lanka are trailing by 238 runs. Earlier, visitors declared their first innings at 503, powered by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal centuries. India are currently leading the two-match series 1-0. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Chhattisgarh and East Rajasthan tomorrow. Meanwhile, parts of Delhi NCR witnessed light to moderate rain during the day. IMD has said that cloudy sky conditions will continue to prevail over Delhi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. UPI completes a decade, making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technologies developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representatives talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। अदायगियों के मरबूत निजाम यूपीआई को 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। भारत बरवक्त अदायगियों के साथ डिजिटल लेन देन में दुनिया में एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म की रसाई और वसअत हर भारतीय के लिए बायसे फख्र है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भारतीय कंपनियों को मुंतकिल की जाने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है ताकि घरेलू पैदावार को फरोग दिया जा सके। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने सरहदी मामले और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के सिलसिले में बीजिंग में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भारत को आलमी डेटा सेंटर हब करार दिया है। उन्होंने आलमी कंपनियों की जानिब से 200 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के वादों को उजागर किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी और ओनम के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में मेजबान श्रीलंका अपनी पहली इनिंग्स में भारत से 238 रन पीछे है। अब खबरें तफसील से। अदायगियों के मरबूत निजाम यूपीआई का आज ही के दिन 2016 में आगाज हुआ था और इसने मुल्क और बैरून मुल्क डिजिटल अदायगियों की यकसर तब्दीली के 10 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। यूपीआई की गैर

0: सहूली रसाई, तादाद और भरोसे को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया और आज ये निजाम 11 मुल्कों में नाफिज है। ये मुल्क के डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के सबसे कामयाब सुतून के तौर पर उभरा है, जो बरवक्त अदायगी से मुतालिक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। यूपीआई लेन देन में तकरीबन 13,000 गुना इजाफा हुआ है। वजारत खजाना ने कहा है कि सालाना लेन देन 2016-17 में महज 1.78 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 24,162 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच गई। इसी अरसे के दौरान लेन देन की कदर में भी 7,000 करोड़ रुपए से तकरीबन 314 लाख करोड़ रुपए का काबिल कदर इजाफा हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अदायगी के मरबूत निजाम की एक दहाई तवील कामयाब खिदमात की सताइश की।
1: भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से ज्यादा लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई भारत की डिजिटल अदायगी को आलमी सतह पर भी तस्लीम किया गया और अब ये फ्रांस, सिंगापुर, मुत्तहदा अरब अमारात, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस समेत 11 मुल्कों में खिदमात अंजाम दे रहा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए दिल्ली के एक दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने अदायगियों में सहूलत पैदा की है। उन्होंने कहा कि ये सभी के लिए दस्तियाब है और इससे लोगों को फायदा हुआ है।
2: ये 10 साल हो गए पेटीएम को यूज करते हुए, यूपीआई को चेंज की कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है, मतलब वॉलेट में पैसे हो ना हो, यूपीआई तो होता ही है। ये बेनिफिट मिला है, अच्छी चीज जो डिस्कवर हुई है।
1: बिहार के एक बाशिंदे सोनू भारती ने कहा कि 2016 में शुरू हुए यूपीआई ने फर्द से फर्द और फर्द से कारोबारी तक लेन देन में हर किसी के लिए सहूलत पैदा की है।
3: NPCI के द्वारा जो UPI लाया गया 2016 में, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके मदद से एक आम व्यक्ति हो या फिर सब्जी वाले, ठेला वाले, उनके द्वारा भी पेमेंट आसानी से दिया जा सकता है।
1: सिर्फ एक दहाई में UPI ने मुल्क भर में डिजिटल अदायगियों के मामले में यकसर तब्दीली पैदा की है और लेन देन को तेज, सहल और ज्यादा काबिल रसाई बनाया है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के मकसद से DRDO के जरिए तैयार की गई मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजीज को मुल्क की प्राइवेट दिफाई सनत को मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। टेक्नोलॉजी मुंतकली का अमल घरेलू सनतों को स्वदेशी पैदावार के काबिल बनाते हुए उनकी ज्यादा शराकतदारी को फरोग देने की राह में अहम संग मील है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: टेक्नोलॉजी की मुंतकली का ये अमल जदीद दिफाई निजामों के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारतीय सनतों की अहलियत को फरोग देने की खातिर DRDO की जारी कोशिशों की अक्कासी करता है। इस कदम का मकसद सप्लाई चेन में भारतीय MSMEs और दीगर टेक्नोलॉजी शराकतदारों की शमूलियत की खातिर मौके पैदा करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग अहलियतों को बढ़ावा देते हुए दिफाई सनती बुनियाद को मुस्तहकम करना है। इस पहल का मकसद कार्रवाई जाती सलाहियत में इजाफा करना, दरामदात पर इन्हेसार कम करना और घरेलू कदर में इजाफा करना है। DRDO ने जदीद दिफाई टेक्नोलॉजियों की मुंतकली और उन्हें अपनाने को आसान बनाने के लिए भारतीय सनत के साथ मिलकर काम करने और मुल्क की स्वदेशी दिफाई अहलियत को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामलात और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के सिलसिले में चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत की। सितंबर की 12 और 13 तारीख को ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए चीन के सदर शी जिनपिंग के इम्कानी दौरे से कबल हुई ये बातचीत अहमियत की हामिल है। जनाब डोभाल और जनाब वांग यी सरहद से मुतालिक बातचीत के तरीकेकार के लिए नामजद खसूसी नुमाइंदे हैं, जिसका कयाम 3,400 किलोमीटर से ज्यादा भारत चीन सरहद पर तनाजे के जामे तौर पर इजाले की खातिर 2003 में हुआ था। बातचीत से पहले जनाब डोभाल ने, जो कल दो रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं, चीन के नायब सदर हान जिंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर भारतीय सिफारतखाने ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने सरहदी इलाकों में अमन सुकून को मुस्तहकम करने और दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान हुए इत्तफाक राय के मुताबिक इक्तिसादी, सियासी और कसीर रुखी बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान चीन के नायब सदर ने कहा कि चीन और भारत को दोतरफा ताल्लुकात को कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नजर से देखना चाहिए और अपने रहनुमाओं में हुए अहम इत्तफाक राय के सिलसिले में मिलकर काम करना चाहिए।

0: सकती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने डेटा सेंटर्स के लिए भारत को पुरकशिश मुकाम करार देते हुए कहा कि भारत इस शोबे को डेवलप करने के लिए जापानी कंपनियों के साथ काम कर सकता है और भारत ने इस शोबे की बड़ी आलमी कंपनियों के जरिए 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी की अहदबस्तगी हासिल कर ली है। आज टोक्यो में मईशत, तिजारत और सनत के जापानी वजीर अकाजावा रुसई से मुलाकात के दौरान जनाब गोयल ने यह बात कही। जनाब गोयल ने कहा कि इस साझेदारी की चार सुतूनों में दर्जाबंदी की जा सकती है, जो इस तरह हैं: तिजारत में इजाफा, टेक्नोलॉजी इश्तराक को मुस्तहकम करना, सरमायाकारी को फरोग देना और सियाहत को बढ़ावा देना। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के अपने हम मनसब सरगई लावरोफ के साथ वसीतर मामलात पर बातचीत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने बाहमी इश्तराक, इलाकाई मामलात, आलमी चैलेंजों और कसीर रुखी मामलात पर तबादला ख्याल किया। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने कहा है कि दोनों वज़राए खारजा ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान से मुतालिक मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की। इससे कबल डॉ जयशंकर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और तरफेन ने तिजारत, तवानाई, खाद और न्यूक्लियाई इश्तराक जैसे अहम शोबों और इक्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ सतह के अफसर बीएलओ भारतीय जमहूरियत की बुनियाद हैं। चीफ इंतखाबी कमिश्नर उत्तर प्रदेश के दो रोजा दौरे पर हैं और उन्होंने आज लखनऊ में तकरीबन 500 बूथ सतह के अफसरों के साथ एक राब्ता प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में इंतखाबी अमल को ज्यादा मुअसर, शफाफ, काबिल रसाई और शहरियों पर मरकूज बनाने पर तवज्जो दी गई। जनाब कुमार ने कहा कि हर बूथ सतह के अफसर को वोटर काम के लिए खुद को वक्फ करने और शफाफियत के लिए जानते हैं।
1: बूथ लेवल ऑफिसर भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है, बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है।
0: चीफ इंतखाबी कमिश्नर ने बूथ सतह के अफसरों से उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग फीसद बढ़ाने और हर अहल वोटर तक पहुंचने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में इंतखाबात आईन, कानून और इंतखाबी कमीशन की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ने इस बात को उजागर किया कि भारत में तकरीबन 97 करोड़ वोटर हैं, जो कई मुल्कों में वोटरों की मजमू तादाद से भी ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान तकरीबन 1.5 करोड़ अहलकारों को तैनात किया था, जिससे ये दुनिया भर में सबसे बड़ी इंतखाबी तंजीम बन गई। भारत और न्यूजीलैंड ने कल वेलिंगटन में मुनक़िदा दिफाई स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे एडिशन के दौरान खुले, आजाद और शमूलियाती भारत बहरुल काहिल खत्ते की अहदबस्तगी के तई अपने अज़्म की तौसीक़ की है। इस आला सतही मुज़ाकरात के दौरान बहरी सलामती में इजाफा करने, मुश्तरका फौजी तरबियत और मजमू दिफाई इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि दोनों वफूद ने हाल ही में तश्कील दी गई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाने से मुतालिक जामे बातचीत की। इस दौरान भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक शराकतदारी रोडमैप 2030 में वजह किए गए स्ट्रेटेजिक अहदाफ के नफाज से मुतालिक कलीदी निकात पर गौर खोज किया गया। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने नौजवान तलबा को ज़राई डिग्री प्रोग्रामों की तरबियत से लैस करने की अहमियत पर जोर दिया है। जनाब चौहान नई दिल्ली में ICAR इंस्टीट्यूट्स के वाइस चांसलर और डायरेक्टरों की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ज़राई तालीम के बारे में बोलते हुए जनाब चौहान ने कहा कि इस तरह की तालीम क्लासरूम में नहीं दी जा सकती और ये दीगर किसानों के खेतों में दी जानी चाहिए। जनाब चौहान ने यूनिवर्सिटियों पर जोर दिया कि वो मौजूदा वक्त की बढ़ती जरूरतों से हम आहंग रहने के लिए AI पर मबनी टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने तरीके तालीम में तब्दीली लाएं। जनाब चौहान ने वाइस चांसलर से अपील की कि वो अपने तलबा के साथ गैर रस्मी ताल्लुकात कायम करें ताकि वो उनसे ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सकें। सारिफीन के उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा है कि कांदा एक्सप्रेस के जरिए 800 मैट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में सेक्रेटरी ने बताया

बना लिए। इसके बाद बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया। श्रीलंका 238 रन से पीछे है। श्रीलंका के सोनल दिनुषा 85 रन और लाहिरु कुमारा 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। अदायगियों के मरबूत निजाम यूपीआई को 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। भारत बरवक्त अदायगियों के साथ डिजिटल लेन देन में दुनिया में एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म की रसाई और वसअत हर भारतीय के लिए बायसे फख्र है। दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने भारतीय कंपनियों को मुंतकिल की जाने वाली मिजाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है ताकि घरेलू पैदावार को फरोग दिया जा सके। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने सरहदी मामले और ताल्लुकात को बेहतर

0: अज अहमद।
1: श्रोताओं नमस्कार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। विपरीत परिस्थितियों में कभी हिम्मत नहीं हारी। विकास और प्रगति के पथ पर देश मजबूती से आगे बढ़ा। हर क्षेत्र में हमने नित नए आयाम तय किए। देशवासी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इन ऐतिहासिक पलों के दौरान हमें दो ऐसे सुनहरे अवसर मिले जिससे राजनीति के क्षेत्र में गौरव बढ़ा। देश को लोकतंत्र के मंदिर के रूप में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया संसद भवन मिला। दूसरा, सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ। राजनीति के क्षेत्र में गवाह बना हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जिसे देश की आजादी का गवाह हम कह सकते हैं और देश की आधी आबादी की एक तिहाई सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक आम सहमति से इसी मंदिर में पारित हुआ। राज्यसभा ने सर्वानुमति से महिला आरक्षण विधेयक पर मोहर लगाई। पक्ष में 215 मत पड़े जबकि विपक्ष में कोई मत नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। उन्होंने इसे संसद का नारी शक्ति बंधन नाम दिया। श्रोताओं, राजनीति का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, सीमा पर सुरक्षा हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, महिला स्वयं को मील का पत्थर साबित कर रही हैं। महिला आरक्षण बिल पारित होने से सशक्तिकरण को नई ऊर्जा मिली है। श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में महिला आरक्षण विधेयक पर परिचर्चा का आयोजन किया है। विषय है महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में नारी शक्ति बंधन अधिनियम। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं साहूजैन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अभय कुमार मित्तल, इम्पीरियल इंटरनेशनल स्कूल नजीबाबाद की प्रधानाचार्या डॉक्टर अंजना राजपूत, रमाजैन कन्या महाविद्यालय नजीबाबाद की कार्यवाहक प्राचार्या डॉक्टर मृदुला त्यागी और मैं नजीबाबाद से मीडियाकर्मी एजाज अहमद। परिचर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं अभय कुमार मित्तल जी से। आपसे हम जानना चाहेंगे कि महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं को कितना सशक्त बना पाएगा।
2: धन्यवाद एजाज जी। सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण की बात अगर हम करते हैं
1: जी,
2: तो महिला सशक्तिकरण नीति सन 2001 में बनाई गई और उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी प्रक्रिया, पोषण, पर्यावरण, घर तथा आश्रय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जनसंचार, बालिकाओं के अधिकार, महिलाओं के प्रति हिंसा, पेयजल, स्वच्छता, इन सब बिंदुओं को कवर करके महिला सशक्तिकरण के प्रयास प्रारंभ किए गए
1: जी।
2: हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि महिला आरक्षण की बात जो अब तक केवल स्थानीय निकाय के चुनावों में नगर पालिका तक सीमित थी, अब हमारी महिलाएं अपने आप को अपने प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा और विधानसभा में प्रस्तुत कर पाएंगी और महिलाओं के अधिकारों की बात कर पाएंगी। मेरी सम्मति में महिलाओं को अपनी बात का प्रस्तुतिकरण विधानसभा और लोकसभा में करने से बहुत बल मिलेगा और वो सारे मुद्दे जो कि अब तक अनछुए रहे हैं, जो कि पुरुष शायद उन मुद्दों को न छू पाते हैं, न समझ पाते हैं, वो अपने बातों को स्वयं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे।
1: बिल्कुल सही आपने फरमाया कि महिला आरक्षण जो विधेयक है ये महिलाओं को एक दिशा देगा, देश को एक दिशा देगा, और दिशा जब देगा तो विकास की हमारी जो एक गति है उसको एक निश्चित रूप से एक अच्छा मजबूत आयाम मिलेगा
2: जी।
1: मैं यहाँ पर इम्पीरियल स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर अंजना जी उपस्थित हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण की बात हो रही है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे।
3: धन्यवाद एजाज जी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे देश की महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। अगर हम बात करते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जा रहा है
1: जी,
3: यह प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान कर रहा है, जो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में मेडिकल है या एजुकेशन है या किसी भी ग्राम विकास से लेकर किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही हैं, बट कुछ अनछुए पहलू ऐसे हैं जिनको आगे बढ़कर रखने की जरूरत है, जहां संसद में, लोकसभा में या विधानसभा में हमें जहां कहीं भी अपनी बातों को रखना है, अपने अधिकारों की बात करनी है
1: जी।
3: उसके लिए एक अधिनियम जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही सराहनीय कदम है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये विधेयक जो है ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में हमारे सामने आया है
3: जी,
1: और जहां तक विधेयक पे अगर हम इसके इतिहास पे पीछे जाएं तो वर्ष 1996 में आरक्षण विधेयक आया था, संसद में पेश किया गया था। फिर उसके बाद वर्ष 1998 से 2003 में तत्कालीन सरकार ने 4 बार विधेयक संसद में लाए। 2009 में विधेयक के बावजूद चर्चा हुई, चर्चा के बाद फिर ये सहमति नहीं बन पाई। 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा ने इस पे चर्चा की और लगभग पारित सा हुआ, लेकिन ये बीच बीच में इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहीं, विचार विमर्श में कुछ वो रहा राजनीतिक। लेकिन उसके बाद जो ये हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जो हमारे सामने आया है, ये सितंबर 2023 में स्वर्णिम अवसर लेके आया है। मैं यहाँ पर डॉक्टर मृदुला त्यागी जी से जानना चाहूँगा कि ये जो हमारा नया विधेयक महिलाओं के आरक्षण के से संबंधित है, ये आपकी दृष्टि से कहाँ तक महिलाओं को क्या दिशा देगा, क्या आगे हमारे देश को प्रगति मिलेगी और महिलाओं का जो अपना एक स्वाभिमान है उसकी रक्षा कैसे हो सकेगी?
3: धन्यवाद एजाज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण के राह में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इससे बहुत फायदे महिलाओं को होंगे। एक जो भेदभाव की भावना एक रहती है महिलाओं के प्रति, उसमें कमी आएगी और उसको खुद को साबित करने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिला अपने घर के हर निर्णय के लिए पुरुषों पर निर्भर होती है, बहुत सारी सामाजिक बंदिशें उसके ऊपर होती हैं, तो वो अपना जो निर्णय है, अपना पक्ष है, वो राजनीति में अगर वो आती है बहुत मजबूती से रख सकती है। बहुत सारे ऐसे अत्याचार हैं महिलाओं के प्रति, हिंसा है, अत्याचार हैं, जो वो अच्छी तरह समझकर और जो कानून बने हैं को और अच्छी तरह से वो सबके सामने पेश कर सकती है संसद में। और जो बालिकाएं हैं उनके लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य कर सकती हैं, क्योंकि उनको देखकर और महिलाएं और जो बच्चियां हैं वो भी राजनीति में कार्य करने के लिए प्रेरित होंगी।
1: रोल मॉडल की आपने बात कही
3: जी।
1: प्रधानमंत्री जी ने जब ये विधेयक आया था उस वक्त इसी बात को उजागर किया था। उन्होंने कहा था जब महिलाएं समृद्ध होती हैं आत्मविश्वास पैदा होगा और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर हम इसके उस पे जाएं जिस वक्त चर्चा हो रही थी, तो एक बहुत अच्छी एक याद बात जो आई थी वो आई थी महिला विधेयक पर चर्चा के दौरान सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी ने 13 सांसद महिलाओं को सभापति के रूप में सामने लाए थे और उनका एक बात ये कहना था कि सभापति पैनल में जब महिलाएं सांसदों के रूप में शामिल होंगी तो उसमें जब वो नेतृत्व करेंगी तो दुनिया को एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया की निगाह उस दिन सदन पर थी। जहां तक इस पैनल की बात है, आपको तो ध्यान होगा कि जया बच्चन जी, पीटी उषा, सरोज पांडे सहित 13 महिलाएं इसमें शामिल थी। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने उस दिन सदन में भी नेतृत्व महिलाओं से कराया, तो कितने गौरव की बात है। मैं मित्तल साहब से ये जानना चाहूंगा कि आज जब हम एक विधेयक के रूप में सक्षम हो चुके हैं, विधेयक हमारे सामने आ चुका है, तो आप क्या मानते हैं कि महिलाओं में अपने आप क्या आत्मविश्वास पैदा होगा जिससे वो राजनीति में एक नए आयाम तय करें?
2: मेरा मानना ये है कि सर्वप्रथम हमें सामाजिक चेतना पर ध्यान देना होगा
1: जी।
2: हमें पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन लाना होगा और ये विधेयक उसमें बहुत मददगार साबित होगा
1: जी।
2: जैसे अगर हम स्थानीय निकाय की बात करें तो वहाँ प्रधानपति तो उस तरह की जो बात है उससे हटकर यहाँ पर संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में महिलाएं स्वयं उपस्थित होकर अपने क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी और जैसा कि अभी मृदुला त्यागी जी ने कहा, वो एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगी और उनके अंदर स्वयं आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा बल्कि उनके क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको भी आगे विकास के लिए काम करने के लिए एक प्रेरणा प्राप्त होगी। तो जितनी भी महिलाएं, जितनी भी मातृशक्ति, जितनी भी बहनें हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करेंगी और विकास के कार्यों में अपने आप को अग्रणी साबित करें।
1: जी, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, भारत सरकार ने 2001 में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात

0: कही थी। थी तो उस वक्त एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी 2001 में। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण जो है ये महिलाओं को दिशा देगा, महिलाओं को अपने फैसले करने में बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ है। जहां हम महिलाओं की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान, अभी आपने बात कही कि समाज हमारे ऊपर हावी है। ग्राम पंचायतों में आप देखते ही हैं कि प्रधान सरपंच महिला होने के बावजूद उनके पति उसका संचालन करते हैं। ये जो धारणा हमारी बनी हुई है, इसको आप कहाँ तक अंजना जी उचित मानती हैं?
1: धारणा, जैसे कि अभी डॉक्टर मित्तल जी ने अभी कहा कि सबसे पहले हमें एक चेतना लाने की जरूरत है
0: जी,
1: क्योंकि आज भी एक फीमेल प्रधान तो है लेकिन वो डिसीजन नहीं ले रही
0: जी।
1: है। रीजन इसके पीछे यही है कि वो आज भी ये समझती हैं कि वो नहीं कर सकते जो पुरुष प्रधान आज की सोसाइटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बेहतर डिसीजन ले सकती हैं। उनके अंदर एक विश्वास की चेतना जगाने की जरूरत है और ये विधेयक इसी के लिए तत्पर है। मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छा मार्ग प्रशस्त कर रहा है नारी शक्ति के लिए। अगर मैं बात करूं, देश में महिलाओं की हिस्सेदारी है वो लगभग 50% है
0: जी।
1: वर्तमान में हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं वो उतनी सुदृढ़ नहीं है। संसद के दोनों सदनों में अभी तक महिलाओं की हिस्सेदारी 10% से भी कम है अगर हम बात करते हैं, और इनके लोकसभा में जो सदस्य हैं सिर्फ 82 हैं और 15% से कम, तथा 24% के औसत से भी काफी कम आती है जो हम वैश्विक औसत निकालते हैं जब ये सारी चीजें देखते हैं। 1950 में संसद में महिला की जो संख्या थी सदस्यों की वो सिर्फ 5% थी
0: जी,
1: अगर हम एक कंपैरिजन करते हैं, और पिछले जो 73 इयर्स में हुआ है अब तक वो 9% तक वृद्धि हुई है, जो हमें ये बताता है कि कितनी धीमी गति से हम आगे बढ़े हैं। लेकिन ये विधेयक आने के बाद जो ये एक असमानता है, महिलाओं के अधिकारों को अभी भी रोका हुआ है, उनके डिसीजन पावर को कम आंका गया है
0: जी,
1: उसको एक बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ मैं एक जोड़ना चाहूंगी, अभी हम लोग भी ये सर्वे करते रहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आता रहता है कि कितने स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं गर्ल्स के
0: जी,
1: तो वो दर भी अब कम हुई है। मैं ये कहूंगी कि ये बहुत अच्छा एक आगे जाकर हमारे लिए मील का पत्थर, जैसा आपने भी पहले कहा था, साबित होगा। और नारी शक्ति के लिए दोनों तंत्रों में, जो राजनीति के तंत्र, भारत का लोकतांत्रिक मूल्य की बात करें तो बहुत ही सुदृढ़ भूमिका ये निभाएगा।
0: हाल ही में हमारी उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं
1: जी,
0: आनंदीबेन पटेल जी,
1: यस,
0: उन्होंने कहा था कि महिला किसी भी समाज की धुरी होती हैं। एक महिला जब विकास करती है तो पूरे परिवार का विकास होता है, और जब परिवार का विकास होता है तो समाज का होता है, समाज का होता है तो राष्ट्र का होता है,
1: राष्ट्र का होता है।
0: तो निश्चित रूप से जब महिलाओं के हाथ में एक नेतृत्व आएगा, महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, चाहे वो राजनीति में हो या समाज किसी भी क्षेत्र में, तो उस समाज में एक बदलाव आएगा। क्योंकि माँ जितनी अच्छी तरह से परिवार को चला सकती है, समाज को चला सकती है, मैं समझता हूँ कि पुरुष प्रधान समाज में उसकी कल्पना कम की जाती है। आपका क्या मानना है मृदुला जी?
2: जी, सही कह रहे हैं आप। पहले तो महिला को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, कि अभी भी कहीं कहीं हमने देखा है कि गांव में, दूर दराज के इलाकों में अभी भी लड़कियों को थोड़ा सा रोका जाता है शिक्षा के लिए, तो लेकिन अगर शिक्षा होगी, वो घर से बाहर निकलेगी तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करेगी, और ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा वो दृढ़ निश्चयी हो और जागरूक हो, क्योंकि समाज में बहुत सी महिलाएं बहुत अच्छे पदों पर काम कर रही हैं, तो निश्चय ही हमें इस विधेयक का आगे

0: सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम
1: जी,
0: बाल विवाह निषेध अधिनियम
1: जी,
0: राष्ट्रीय सुरक्षा महिला कानून
1: जी,
0: पॉक्सो एक्ट, दहेज निषेध अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, उषा कल्याण योजना, न जाने कितनी योजना सरकार की ओर से लागू है, लेकिन फिर भी जो प्रभावित महिला वर्ग है अनेकों बार वो मौन धारण कर लेता है
1: जी।
0: चाहे वो पारिवारिक कारणों से, चाहे सामाजिक कारणों से, अथवा उसकी सुरक्षा के लिए जो अधिनियम, जो नियम बनाए गए हैं उनके प्रचार प्रसार न होने के कारण
1: जी।
0: तो महिला सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि सरकार जो भी योजना बनाए वो उन महिलाओं तक सार्थक रूप से हम पहुंचा पाए
1: जी।
0: और संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश हो कि बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी फॉर्मेलिटीज के उन पर अमल किया जाए
1: जी।
0: जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक हम उन योजनाओं का, उन अधिनियमों का वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभार्थी जो कि हमारी महिला है, वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा है। जहां तक सुरक्षा की बात है तो समय समय पर हमारी सरकार सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध करती आई है, और आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश है और दूसरे राज्य हैं उसमें महिला सुरक्षा से संबंधित सरकार बहुत गंभीर है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग से अगर कोई शिकायत किसी महिला को करनी है तो उसका नंबर है 7827170170। ये महिलाओं की जो सुरक्षा की बात आपने कही है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पूरी तरह से महिला का पता और वो सब गोपनीय रखा जाता है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि और भी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: एजाज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एक बार फिर दोबारा से डिटेल में कि किस नंबर पर कब कॉल की जाए, कहाँ किस स्थिति में अगर कोई महिला, लड़की या कहीं भी कहीं फंसी हुई है तो वो कितनी जल्दी उनको बुला सकती है
1: जी,
2: प्लीज थोड़ा सा एक बार बताएं।
1: आपातकालीन कानूनी मदद के लिए घरेलू अगर हिंसा का कोई मामला है तो उसको 1091 पे कॉल की जा सकती है,
2: वीमेन
1: पावर लाइन
2: जी।
1: इसके लिए 1090 है,
2: 1090
1: जी,
2: जी।
1: महिला हेल्पलाइन का नंबर है
2: 181 181।
1: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर है
2: 1076 1076।
1: आपातकालीन अगर कोई सेवा पुलिस से लेनी है तो 112 नंबर है उसका,
2: 112
1: जी। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098 1098। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी 102 उपलब्ध है। एम्बुलेंस सेवा अगर चाहिए तो 108। तो ये तो रही सुरक्षा की बात
2: जी।
1: अब सवाल ये, हमें सुरक्षा भी मिल गई और हम समाज के आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मान लीजिए कोई महिला है वो, उसके साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है तो वो उस चीज़ को उजागर करने में हिम्मत नहीं कर पाती, तो आप क्या मानती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे उनको फैमिली सपोर्ट मिले, फैमिली से कैसे डिस्कस करें ताकि वो राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र कहीं पर भी जा रही है तो सुरक्षित महसूस कर सकें
2: जी। बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं सभी परिवार वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक ऐसा माहौल दें कि हमारी बच्ची ऐसा फील करे कि सब मेरे साथ हैं
1: जी।
2: इवन हमारी सोसाइटी की भी ये सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम एक उस डर को मिटाएं, बच्ची को हम एक विल पावर क्रिएट करें कि वो सब कुछ कह सकती है, वो कैसा महसूस कर रही है, कहाँ डर रही है, क्यों अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, वो उसको बताएं। जगह जगह पर ये प्रोग्राम भी होने चाहिए, जैसा कि स्कूल में भी हम कई बार करवाते हैं, हम काउंसलिंग भी करवाते हैं, तो ये एक जो परिवार है, सोसाइटी है, सबको मिलकर इसके लिए आगे आना होगा कि हम अपने बच्चियों को ये एक एहसास कराएं कि वो सुरक्षित हैं और वो जो कहना चाहती हैं कहें, सो दैट आगे जाके वो अपने अधिकारों के लिए भी बोल सकें और ये उत्पीड़न ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा
1: जी। बहुत सही आपने कहा। मृदुला जी से हम जानना चाहेंगे कि राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि अब आरक्षण की बात हुई है, आरक्षण मिला है, एक तिहाई आरक्षण हमें मिल गया है, तो हम अपनी बालिकाओं को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसे उस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं, खासतौर से स्कूल लेवल से आगे बढ़ने के लिए
3: जी। बिल्कुल सही आपने कहा, लड़कियां, बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में आती हैं, वो पढ़ाई के अतिरिक्त और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और वो इतना सशक्त बने कि उन्हें आगे चलकर वो अच्छे पदों पर पहुंचें। जैसा कि अभी एक और गवर्नमेंट का एक और सुरक्षा के लिए उन्होंने चलाया है एंटी रोमियो एक्ट, उसके लिए उन्होंने एक एक बॉक्स हर कॉलेज में लगाया है, जिससे कि कुछ परेशानी कोई बालिका महसूस कर रही है या कोई उसे रास्ते में परेशान कर रहा है।

0: या उसे कुछ इस तरह का परेशानी है, तो वो अपनी शिकायत लिखकर उसमें डाल सकती है, जिससे कि हम लोगों को भी जानकारी होगी कि किस मुसीबत में है, और हम पुलिस से भी उस बच्ची को ये उसकी परेशानी को पहुंचा सकते हैं। और आगे राजनीति में महिलाएं आएंगी, वो जागरूक हों और हम सभी से प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ती रहती हैं।
1: बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जब तक हमें समाज का और उसका एक सहयोग नहीं मिलेगा, हम अपने आने वाली पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ तक स्वतंत्रता आंदोलन की बात है, राजनीति की बात है, तो हमारे देश में किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान कम नहीं रहा है। हम अगर बात करें स्वतंत्रता आंदोलन की, तो नमक सत्याग्रह था, भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें भी हमारी महिलाएं जो थे देश की थी, उन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में
0: बिल्कुल
1: बहुत अहम भूमिका निभाई है। यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे अरुणा आसफ अली जी का और सुचेता कृपलानी जी का। इन्होंने जो अपना सहयोग हमारे नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में दिया, वो आज भी मिसाल है। तो आप क्या मानते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में मित्र साहब, हमारी जो महिलाएं हैं वो कितनी उन्होंने देश की सेवा करी, किस तरह से उन्होंने देश को एक अपना योगदान दिया है?
2: स्वतंत्रता की बात अगर हम करते हैं तो दोनों तरह के आंदोलन, जिस तरह का एक आंदोलन आपने बताया, और अगर स्वतंत्रता आंदोलन में हम रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र ना करें
1: जी
2: तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अधूरा रहेगा।
1: जी
2: और उसी श्रृंखला में ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये नारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है,
1: जी
2: एक सम्मान है। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बहुत सारी विधानसभा ऐसी भी हैं जहां पर बहुत कम प्रतिशत है या कोई प्रतिनिधित्व महिलाओं का है ही नहीं।
0: बिल्कुल
2: जी
0: बिल्कुल
2: तो
0: आप सही कह
2: ऐसी
0: रहे हैं।
2: स्थिति में ये अधिनियम वास्तव में बहुत कारगर साबित होगा प्रत्येक विधानसभा में महिलाओं को माकूल प्रतिनिधित्व देने के लिए।
1: जी
2: इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात अभी चल रही थी कि हमें जो सोच बदलनी है वो पारिवारिक स्तर से बदलनी होगी। जब तक पारिवारिक स्तर से हम सशक्त महिलाओं को और अपनी बच्चियों को नहीं बुलाएंगे, जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक इस प्रकार का कोई भी अधिनियम उतना कारगर सिद्ध नहीं होगा जितना कि हम चाहते हैं।
0: बिल्कुल
2: एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि अगर आप शाम को 7 बजे बाद घर के बेटे को कहीं जाना है वो जा सकता है, लेकिन
1: जी
2: बेटी को जाना है तो आप कहेंगे भैया को साथ ले जाओ।
1: जी
2: तो ये जो सोच है, ये
0: जी
2: सोच जब तक परिवर्तित नहीं होगी तब तक हमारे किसी भी अधिनियम को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा जो वास्तव में सरकार प्रदान करना चाहती है।
1: बात आपने सोच की कही, निश्चित रूप से सोच आज हमें बदलनी होगी। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। जहाँ तक अगर हम अलग अलग बात करें, तो राजनीति के क्षेत्र में बेगम हजरत महल का नाम लिया जा सकता है, भिकाजी कामा का नाम लिया जा सकता है,
2: चांद बीबी
1: कस्तूरबा गांधी जी
2: जी
1: का नाम लिया जा सकता है, कमला नेहरू जी का नाम लिया जा सकता
2: जी
1: है।
2: बिल्कुल
1: और अब आइए अगर हम इसकी बात करें कि हमारी महिलाओं ने हर क्षेत्र में आगे बढ़ के काम किया है, तो उसमें कल्पना चावला भारतीय अंतरिक्ष
0: यस
1: यात्री
0: जी
1: पहली
0: बिल्कुल
1: हमारी
0: बिल्कुल
1: साबित हुई। किरण बेदी जी को सभी
0: किरण
1: जानते हैं
0: बेदी
1: कि
0: जी
1: पुलिस
0: को
1: सेवा में उन्होंने
0: नहीं बिल्कुल
1: काम
0: फर्स्ट
1: किया और
0: आईपीएस
1: राजनीति में भी
0: जी
1: उनका अच्छा योगदान रहा।
0: यस
1: बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चढ़ने
0: जी
1: वाली
0: माउंट
1: पहली
0: एवरेस्ट
1: महिला थी,
0: पहली
1: और
0: महिला
1: मदर
0: ही है,
1: टेरेसा को आप सभी जानते हैं कि ये
0: सभी
1: भी देश
0: जानते
1: की
0: हैं
1: एक गौरव रही हैं
0: बिल्कुल
1: जिन्होंने दीन दुखियों की सेवा की है। सरोजिनी नायडू जी को हम नहीं
0: सरोजिनी
1: भूल
0: नायडू
1: सकते, हम मिताली राज जी को नहीं भूल सकते। और देखिए पहली जो महिला राष्ट्रपति थी
2: प्रतिभा
1: प्रतिभा
2: देवी पाटिल
1: देवी
0: प्रतिभा जी
1: पाटिल, वो
0: पाटिल
1: भी
0: यस
1: हमारी एक महिलाओं के लिए एक
0: महिला
1: गौरव बन के
0: गौरव
1: सामने आई थी।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसा नहीं है कि हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे रही हूं। अब सवाल यह है कि उनका थोड़ा सा हिस्सेदारी कम थी, आज हिस्सेदारी बढ़ गई है। तो आप इस चीज को लेकर अंजना जी क्या महसूस करती हैं, जो हिस्सेदारी बढ़ी है उसको हम कहाँ तक पाने के लिए सक्षम होंगे?
0: हमारी महिलाएं हर कदम पर आगे होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा गौरवान्वित फील करवाती हैं, महसूस कराती हैं। इस हिस्सेदारी बढ़ने से आज फिर हम और ज्यादा सक्षम होंगे। इवन मैं बात करूंगी, यहाँ नहीं भूलना चाहूंगी कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो भी भारत में महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है, इसमें व्यापक नीतियों को भी विभिन्न पहलुओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण, यहाँ तक कि लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी संबोधित किया है, जिसके नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। स्कूल्स में से बच्चियां कम जा रही हैं, आगे हर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अब ये जो एक पहल है जिस सशक्तिकरण से हम आगे बढ़ेंगे, एक अच्छी दिशा में देश को लेकर जाएंगी, हमारे समाज को लेकर जाएंगी, और जो हमारी बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो अभी फील करती थी कि हमारी भागीदारी नहीं है या हम अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, वो आज रख सकती हैं, और इसका एक बहुत ही

0: प्रभाव आएगा और देश को भी कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी और महिलाएं हैं जो अनछुए पहलू पर हैं, लेकिन वो अब आगे बढ़ेंगी तो देश को गौरवान्वित फील करवाएंगी।
1: प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही थी कि जो
0: जी
1: विधेयक हमारा है ये अकल्पनीय शक्ति हमें प्रदान करेगा,
0: यस
1: महिलाओं को आगे
0: यस
1: बढ़ने का एक नया
0: आगे
1: अवसर देगा और
0: अवसर
1: देश को
0: देगा।
1: विकास भी
0: जी
1: देगा। चलते चलते हम एक आपसे एक बात और करना चाहेंगे मृदुला जी,
0: जी
1: कि जो हमारा ये आरक्षण है
0: जी
1: इसके लिए समाज क्या सोचता है, समाज की क्या एक अवधारणा रहेगी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में हम जीते आए हैं और पुरुष प्रधान समाज में आप देख रहे हैं कि बहुत
0: जी
1: सारे पुरुष आज भी ग्राम पंचायत स्तर पर देख
0: जी
1: लीजिए
0: जी
1: कि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो
0: जी
1: उन्हें अपनी सोच कैसे बदलना होगी ताकि महिलाएं प्रगति कर सकें, राजनीति में अपनी पहचान अलग से बना सकें। खासतौर से हम लेना चाहेंगे ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय
0: जी
1: पंचायत स्तर पर,
0: जी
1: इसकी सोच बदलने के लिए महिलाओं को क्या करना है।
0: महिलाओं को एक तो अपने आप को स्वतंत्र रूप से उन्हें कार्य करना होगा। देखा गया है कि जब से पंचायती राज में जो ये आरक्षण हुआ था
1: जी
0: तो इसमें ये देखा गया कि महिलाएं महिला प्रतिनिधि को ही ज़्यादा वोट देती हैं और अधिकतर देखा गया है महिलाएं ही ज़्यादा मतदान में भाग लेती हैं, और वो जो महिलाएं वहाँ से निकल कर आती हैं और देखा गया कि बहुत उन क्षेत्रों में बहुत ही विकास कर रहे हुए हैं,
1: जी
0: और समय समय पर हम देखते रहते हैं कि इस तरह की महिलाएं सम्मानित भी होती रहती हैं। तो ये आगे बढ़कर महिलाओं को एक अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा, और जो आप आस पास जैसा वो महसूस करती हैं जो परेशानियाँ हैं महिलाओं की, क्योंकि महिला महिला की परेशानी को वो बहुत अच्छी तरह समझ सकती है, वो उन अत्याचारों के प्रति जो नियम बने कानून बने हुए हैं उनकी चर्चा करें, उनको महिलाओं को अवगत कराएं और अपने क्षेत्र का विकास करें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी विकास होगा। जैसे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं पंचायती राज में आरक्षण के देखने में, तो मुझे लगता है इस क्षेत्र में भी हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और हम बहुत आगे तक जाएंगे।
1: मतदान की आपने बात कही, हमारी सरकार लगातार मतदान के प्रति समाज को जागरूक करती आई है,
0: जी
1: समय समय पर अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए प्रेरित किया जाता है। मित्तल जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मतदान के प्रति इतनी जागरूकता के बीच समाज में निरस्ता क्यों रहती है, और उसको मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें कैसे समाज की सोच बदलना है ताकि मतदान से वो एक अच्छी सरकार चुन सकें।
2: सरकार प्रत्येक स्तर पर सामाजिक संगठनों के माध्यम से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से लगातार प्रयास करती है कि मतदान हो, तरह तरह के नारे देती है, पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ मतदान के प्रति उदासीनता देखी जाती रही, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं लगातार हमारे यहाँ मतदान में वृद्धि हुई है, और पिछले आंकड़े यदि आप उठाकर देखें तो महिलाओं की भागीदारी लगभग 66.67% तक रही है। इस मतदान के प्रतिशत की हम निरंतर बढ़ाने के लिए कार्य स्वयं भी करें, अपने परिवार में जागरूकता फैलाएं, अपने मोहल्ले पड़ोस में जागरूकता फैलाएं, तो अगर हमारा मतदान बढ़ेगा और विशेषकर महिलाओं का जो आरक्षण हमने अब किया है उसी प्रकार से हम अपने मोहल्ले पड़ोस में ये एक जागरूकता फैलाएं कि मतदान भी एक आरक्षण है, हर एक को जिस प्रकार से हमें आरक्षण का लाभ मिलेगा इसी प्रकार से हमें मतदान का भी लाभ मिलता है, ऐसी एक भावना जागृत करें, तभी हम अपनी एक राजनीतिक दिशा अपने देश को दे पाएंगे।
1: निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका अहम होगी। महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण अधिनियम पर विस्तृत चर्चा के बाद हम यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महिला आरक्षण अधिनियम से महिलाएं राजनीति में ही नहीं सामाजिक दायित्व के निर्वाह में मजबूत कड़ी के रूप में सशक्त होंगी। परिवार, समाज और देश के प्रति दायित्वों को पुरुष प्रधान मानसिकता जो है उससे ऊपर उठकर आत्मविश्वास पूरा कर अपने आप को सशक्त नारी के रूप में ढाल सकेंगी। इसमें दो राय नहीं कि महिलाओं के मजबूत इरादों और हौसलों की उड़ान ने समाज को एक नई दिशा दी है, समाज की तस्वीर बदली है, देश को दिशा दी है। राजनीति का नारी शक्ति बंधन राष्ट्र की एकता, अखंडता और नारी स्वाभिमान को स्वर्णिम भविष्य देगा, हमें पूरी उम्मीद है। परिचर्चा को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। प्रतिभागी प्रोफेसर अभय कुमार मित्तल, डॉक्टर अंजना राजपूत और डॉक्टर मधुला त्यागी का मैं एजाज अहमद आकाशवाणी परिवार की ओर से प्रतिभा करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।
3: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे परिचर्चा, विषय था महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मातृशक्ति वंदन अधिनियम। प्रतिभागी थे डॉक्टर अभय कुमार मित्तल, डॉक्टर अंजना राजपूत और डॉक्टर मृदुला त्यागी। संचालन कर रहे थे एजाज

0: मीडियम वेव खेल दर्पण।
1: श्रोताओ नमस्कार, खेल दर्पण के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओ, खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ये हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत रखते हैं और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इन खेलों का बड़ा योगदान होता है। यूं तो भारत में खेलों के कई प्रकार सदियों से प्रचलित रहे हैं और आज जिन आधुनिक खेलों को हम देखते हैं वे हमारे पारंपरिक खेलों का ही बदला हुआ स्वरूप है। कैसे हमारे पारंपरिक खेल परिवर्तित होकर नए कलेवर में बदल गए, बता रहे हैं आलोक सिंह।
2: प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा की परंपरा थी, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे अपने गुरु के साथ जंगलों में आश्रम में रहते थे। वहां इन बालकों को वेदों आदि के अध्ययन के साथ ही विभिन्न शारीरिक क्रियाएं भी कराई जाती थीं। इनमें प्रमुख घुड़सवारी, तलवारबाजी, शारीरिक क्रियाएं भी कराई जाती थीं। पहलवानी, भाला फेंक, योगासन आदि थे। इन खेलों का उद्देश्य बालकों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के साथ ही युद्ध के लिए तैयार करना था। यही पारंपरिक खेल आज वर्तमान युग में आकर्षक एवं मनमोहक कलेवर में है। पहले का घुड़सवारी आज हॉर्स राइडिंग, धनुर्विद्या, तीरंदाजी, पहलवानी, कुश्ती, योगासन, जिम्नास्टिक तथा भाला फेंक, एथलेटिक्स आदि पारंपरिक खेल नए अवतरित रूप में है हमारे बीच में। पहले यहाँ अखाड़ों में पहलवानों का जमघट शक्ति प्रदर्शन के लिए लगाया जाता था, वहीं आज कुश्ती की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सबसे अधिक तो जिम्नास्टिक ने अचंभित किया है। कैसे कैसे ये पारंपरिक योग एक खेल के रूप में ढल गए। पहले जहां योग आसनों से शरीर को स्फूर्ति एवं लचीला बनाया जाता था, वहीं आज का जिम्नास्टिक लचीलेपन तथा ग्लैमर का मिश्रण हो गया है। तीरंदाजी जहां पहले शिकार करने एवं युद्ध में दुश्मनों को परास्त करने के काम आती थी, वहीं आज यह डार्ट पर निशाना लगाने के लक्ष्य किया जाता है। आज का पोलो भी पारंपरिक राजघरानों का मनपसंद खेल था, तब इसकी स्टिक एवं गेंद में काफी अंतर था। डिस्कस थ्रो एवं हाई जंप भी पारंपरिक खेलों का नया अवतार है। भारत में सदैव ही खेल प्रेमी रहा है। यहाँ खेलों का जुनून ऐसा है कि उचित साधन न होने पर भी लोग अपने पास से उपलब्ध साधनों से ही खेल का मजा ले लेते हैं। कुछ एक पारंपरिक खेल उचित ध्यान न मिलने से बहुत ही निम्न दशा में है। ऐसे खेल जो गाँव की गलियों से निकलकर शहरों तक पहुँचे हैं, इनमें कबड्डी मुख्य है। पश्चिम का क्रिकेट भारत की गिल्ली डंडे से काफी मिलता है। समय के परिवर्तन के साथ ही साथ खेलों के स्वरूप बदलते गए। भले ही आज इनका उद्देश्य भिन्न हो, परंतु इस प्रकार से हमारे पारंपरिक खेल संरक्षित तो हैं, परंतु आवश्यकता है आज भी इसके उचित संरक्षण की। भारतीय पारंपरिक खेल का एक अति उज्जवल समय था, तब इसी कारणवश भारत का वर्तमान खेल परिदृश्य इतना सुदृढ़ बन पाया, पर यह प्राचीन खेल की नई पीढ़ी का संज्ञान में तो है।
1: श्रोताओं, जब कोई भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रदर्शन से तिरंगे का मान बढ़ाता है तो प्रत्येक भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि खिलाड़ी न केवल अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए पदक हासिल करता है और अपने देश का गौरव बढ़ाता है। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में, जिसमें भारत ने कुल 39 पदक जीतकर विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत की उपलब्धियों के विषय में बता रहे हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
3: राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम दुनिया का एक प्रमुख बहु खेल आयोजन है, जिसमें मुख्य रूप से वे देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। इन खेलों की सबसे पहली अवधारणा 1891 में एस्टली कूपर ने सद्भावना और भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। इसका पहला आधिकारिक आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ, जिसकी नीम खेल पत्रकार मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन ने रखी थी। पहले संस्करण में 11 देशों के 400 एथलीटों ने 6 खेलों में भाग लिया था। समय के साथ इन खेलों के नाम 4 बार बदलाव किए गए। साल 1930 से 1950 तक इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा गया। 1954 से 1966 तक इस खेल को ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रखा गया, लेकिन 1978 से इसे कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया, जो वर्तमान में भी इसी नाम से चल रहा है। यह दुनिया का पहला ऐसा खेल आयोजन है जहां पुरुष और महिलाओं के लिए समान संख्या में पदक दिए जाते हैं। ओलंपिक मशाल की तर्ज पर इन खेलों में 1958 से बंकिंगम पैलेस से क्वीन वेटम रिले की शुरुआत की गई थी। यह खेल प्रतियोगिता दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन बन चुका है, जिसमें ओलंपिक और एशियाई खेलों की तरह हर 4 साल में दुनिया भर के एथलीट भाग लेते हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम्स केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खेल नवाचार और लैंगिक समानता का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। इन खेलों का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिता आयोजित करना नहीं, बल्कि सदस्य देशों के बीच मित्रता, सहयोग, समानता, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा खेल भावना को बढ़ावा देना भी है। इन खेलों में एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, निशानेबाजी और अन्य खेल शामिल होते हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे किसी राष्ट्र के आत्मविश्वास, अनुशासन, परिश्रम और सामूहिक संकल्प का प्रतीक भी होते हैं। जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान की धुन बजती है, तो वे क्षण केवल खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव का क्षण बन जाता है। ऐसे ही गौरवपूर्ण क्षण को बार बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में प्राप्त किया है। भारत को पहली बड़ी सफलता 1934 के खेलों में मिली, जब भारतीय पहलवान रशीद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतकर पहला पदक दिलाया। यह भारतीय खेल इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण था। भारत को अपने पहले स्वर्ण पदक के लिए 1958 में वेल्स के कार्डिक में आयोजित खेलों के महान धावक 440 गज दौड़ में मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुश्ती, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, हॉकी और टेबल टेनिस जैसे खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय पहलवानों ने हर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया। निशानेबाजी में भी भारत ने विश्व स्तर की पहचान बनाई और अनेक स्वर्ण पदक अपने नाम किए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि 2010 में रही। पहली बार भारत की राजधानी नई दिल्ली को इन खेलों की मेजबानी मिली। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 101 पदक जीतकर नया इतिहास बनाया। इसमें 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल थे। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। यह आज भी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। 2010 के बाद से भारत में खेल संस्कृति को नई गति मिली। भारत में खेलो इंडिया के कारण भारतीय खिलाड़ियों में नई ऊर्जा मिली। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने चुनौतियों के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी जैसे भारत के पारंपरिक पदक दिलाने वाले खेलों को हटाए जाने के कारण यह आयोजन भारत के लिए काफी सीमित था। इसके बावजूद भारतीय एथलीटों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद भारत का ये चौथा स्थान रहा। सीमित खेलों के बावजूद 2026 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के खेल कौशल, विविधता और उभरती नई प्रतिभाओं के दृष्टिकोण से बेहद सफल रहे। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में प्रतीकात्मक राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और बैटन औपचारिक रूप से भारत को सौंप दी गई। इसे भारत की ओर से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक की अध्यक्ष पीटी उषा ने प्राप्त किया। अब यह झंडा मशाल गुजरात पहुंच चुके हैं, जिससे शताब्दी संस्करण अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2030 के आयोजन में भारत को अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला, विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और

0: अधिक मजबूत होगी। विभिन्न खेलों के अधिकारी, खिलाड़ी, पत्रकार और पर्यटक भारत आएंगे। इससे भारत की संस्कृति, परंपरा, पर्यटन और अतिथि देवो भव का भाव व्यापक प्रचार प्रसार होगा। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से होटल उद्योग, खेलों से जुड़े निर्माण कार्य, परिवहन, संचार, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। स्थानीय उद्योग व छोटे व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
1: श्रोताओं, प्रत्येक चार वर्ष की अवधि में एक बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में ओलंपिक खेलों का विशेष स्थान है, जिसमें दुनिया भर के खेल महारथी भाग लेते हैं और अपने जौहर दिखाते हैं। ओलंपिक खेलों में जीता हुआ एक पदक खेल की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, और इन खेलों का आयोजन अपने देश में होना अर्थात ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना किसी भी देश की प्रतिष्ठा और गौरव को बढ़ाने का अवसर देता है। क्या भारत वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अपना दावा पूरा करने में समर्थ होगा? क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि प्रत्येक भारतवासी के लिए अपने देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना गर्व और सम्मान की बात है। भारत में इस मिशन ओलंपिक 2036 की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं शरद श्रीवास्तव।
2: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इन खेलों के आयोजन के लिए किसी देश के दावे को स्वीकृति तभी प्रदान की जाती है जब समिति उस राष्ट्र की आर्थिक क्षमता, वहां के सुदृढ़ खेल ढांचे और इतने बड़े आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कर पाने की उसकी योग्यता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो जाए। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अवसर एक राष्ट्र की विश्वव्यापी प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ा देता है। वर्ष 2036 के ओलंपिक के मेजबानी के लिए भी भारत के अलावा इंडोनेशिया और टर्की भी दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्रतिद्वंदी दावेदारों के मुकाबले भारत का दावा कहीं अधिक मजबूत है। आर्थिक संसाधनों के लिहाज से देखें तो भारत विश्व में आज पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2030 तक इसके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मेजबानी का फैसला करते समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक और पहलू को दृष्टिगत रखा जाता है कि दावेदार राष्ट्र की सामान्य जनता ओलंपिक आयोजन को लेकर कितनी उत्साहित है। इस कसौटी पर भी हमारा देश पूरे अंक हासिल करता है, क्योंकि लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश में हर नागरिक ओलंपिक आयोजन को लेकर बेहद उत्सुक, सजग और उत्साहित है। हर्ष का विषय है कि हमारे अहमदाबाद शहर को वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है, और यह विशाल आयोजन एक प्रकार से ओलंपिक 2036 की मेजबानी का पूर्वाभ्यास माना जा सकता है। इन दिनों अहमदाबाद और गांधीनगर क्षेत्र में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी हैं। सरकार का प्रयास है कि आयोजन की सभी व्यवस्थाएं, चाहे वह नए खेल परिसरों का निर्माण हो या फिर आवागमन और रिहायश सुविधाओं का विस्तार, ये सारे कार्य समय रहते पूरे कर लिए जाएं, ताकि राष्ट्रमंडल खेलों को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। गौर करने की बात यह भी है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी करके भारत पूरे विश्व को यह संदेश देने में भी कामयाब होगा कि वह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी और वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन भी भारत में हो चुका है। यह दोनों आयोजन राजधानी नई दिल्ली में हुए थे, लेकिन अब गुजरात का अहमदाबाद शहर देश में खेल संस्कृति के नए केंद्र के रूप में दुनिया के सामने आने जा रहा है। जैसा पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार अहमदाबाद को देश की खेल राजधानी के रूप में विकसित करने को प्रयासरत है। राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व वर्ष 2029 में अहमदाबाद में ही यूथ ओलंपिक का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसमें विश्व भर से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के एथलीट भाग लेंगे। यूथ ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के दृष्टिगत इन दिनों अहमदाबाद और उसके निकटवर्ती इलाकों में युद्ध स्तर पर निर्माण और विस्तार कार्य जारी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का निर्माण और विकास, जो कि आने वाले वर्षों में गुजरात प्रांत के खेल ढांचे की आधारभूत संरचना बनने वाला है। इस विशाल परिसर में विभिन्न खेलों के मैदान, टेनिस कोर्ट, प्रशिक्षण केंद्र और खेल गांव समाहित होगा। ये सारी सुविधाएं राष्ट्रमंडल खेलों के संपन्न हो जाने के बाद राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं और खिलाड़ियों

0: के लिए काफी मददगार साबित होंगी और इनमें विस्तार तथा नवीनीकरण करके इन्हें ओलंपिक 2036 के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी काफी दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती है। ऐसे आयोजन न सिर्फ देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक होते हैं, बल्कि युवा खेल प्रतिभाओं के लिए भी यह प्रोत्साहन और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं। साथ ही ऐसे आयोजनों के माध्यम से मेजबान शहर या देश में नए स्टेडियमों, खेल मैदानों तथा अन्य सुविधाओं का एक ऐसा विश्व स्तरीय ढांचा उपलब्ध हो जाता है जो कि खिलाड़ियों की आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए मददगार साबित होता है। ऐसे विश्व स्तरीय आयोजनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ भी कम नहीं है। रोजगार, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई क्षेत्रों में इन आयोजनों का विशेष लाभ मिलता है। वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक अनुमान के अनुसार अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 20,000 अतिरिक्त होटल रूम्स की जरूरत पड़ेगी। इसका अर्थ है कि 2030 तक इस क्षेत्र में होटल सुविधाओं का विस्तार होना अनिवार्य है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव रोजगार सृजन के रूप में भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन से उस देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखर जाती है और भविष्य में उसके लिए इस प्रकार के अन्य आयोजनों की मेजबानी हासिल करने का रास्ता भी खुल जाता है। खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गंभीर हैं, यह किसी से भी छिपा नहीं है। इस गंभीरता का ही परिणाम है कि हमारे देश का खेल बजट वर्ष 2014 तक मात्र 800 करोड़ रुपए का था, जो कि आज 3,800 करोड़ रुपए का हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू किए गए हैं, जिनका सकारात्मक असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर स्पष्ट रूप से दिखता है। विश्व स्तर की स्पर्धाओं के अपने देश में आयोजन का प्रभाव खिलाड़ियों की सफलता और प्रदर्शन पर भी पड़ता है, क्योंकि अपनी धरती पर अपने दर्शकों की मौजूदगी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने को प्रेरित करती है और वे मैदान में जाकर बढ़ चढ़ कर अपने जौहर दिखाते हैं। 1978 में बैंकॉक एशियाड में भारत ने कुल 28 पदक जीते थे, लेकिन इसके चार वर्ष बाद वर्ष 1982 में जब यह स्पर्धा नई दिल्ली में हुई तो भारतीय एथलीटों ने इसके दोगुनों से भी ज्यादा कुल 57 पदकों पर कब्जा जमाया, जिनमें से 13 स्वर्ण पदक थे। इसी तरह राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो वर्ष 2006 में मेलबर्न में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल ने 50 पदक जीते थे, लेकिन चार वर्ष बाद 2010 में जब यह स्पर्धा भारत में हुई तो हमारे एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदकों का शतक जमा दिया और कुल 101 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। यदि भारत को 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अवसर हासिल होता है तो इन खेलों के सफल आयोजन के जरिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में तो निखार आएगा ही, साथ ही हमारी खेल प्रतिभाओं के लिए भी सर्वोच्च स्तर पर अपने जौहर दिखाने का यह एक सुनहरा अवसर होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि विश्व के इस सबसे बड़े खेल मंच पर पदकों का अंबार लगाकर हमारे खिलाड़ी देश की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।
1: और श्रोताओं, अब खेल की सुर्खियों के साथ हैं विजय यादव।
2: 16 जुलाई 2026 को भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में पुरुष, महिला और मिश्रित युगल वर्ग में भारत की तीन जोड़ियां विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंच गईं। ये तीन जोड़ियां थीं पुरुष युगल में मानव ठक्कर और मानुष शाह, महिला युगल में दिया चितले और यशस्विनी घोरपड़े तथा मिश्रित युगल में मानुष शाह और दिया चितले। एकल रैंकिंग में मानव ठक्कर 38वें स्थान पर भारत के शीर्ष रैंक वाले पुरुष खिलाड़ी हैं, जबकि मानुष शाह उनसे दो पायदान पीछे 40वें स्थान पर और मनिका बत्रा नंबर 51 पर भारत की शीर्ष रैंक वाली महिला एकल खिलाड़ी बनी हुई हैं। पूर्व राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन को 2026 एशियाई खेलों के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल किया गया था। रैंकिंग में यह बढ़ोतरी एशियाई खेल 2026 से ठीक दो महीने पहले हुई है, जो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची नागाया में होने वाले हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी अहम है क्योंकि टेबल टेनिस के पावर हाउस चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाड़ियों की चुनौती तोड़कर भारतीय खिलाड़ियों ने यह सफलता हासिल की है। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी के महिला वर्ग में शानदार प्रदर्शन करके 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अंडर 19 महिला वर्ग में भारत ने 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक जीते। चंद्रिका भोरे

पुजारी 51 किलोग्राम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान की नाजोगत मार्डोनोवा को 5-0 से हराकर, जबकि प्राची ने इंडोनेशिया की द्रा अर्डिका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर 19 में भारत के अन्य फाइनलिस्ट ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंडर 23 महिला वर्ग में भी भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। निशा ने 54 किलोग्राम भार में जापान की कोइन कोकुफू को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जापान में हुए जापान ओपन मुकाबलों में टोक्यो में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को जापान ओपन बैडमिंटन में इतिहास रच दिया। उन्होंने आक्रामक खेल के दम पर मेजबान खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराकर पहली बार इस सुपर 750 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। इसके साथ ही वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई। 31 वर्षीय सिंधु ने लगातार आक्रमण के साथ साथ बेहतरीन प्लेसमेंट और अहम पलों में संयम रखते हुए 3 बार की विश्व चैंपियन यामागुची को 21-17 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का समापन स्पेन की ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ। न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मैच का इकलौता गोल फॉरेन टोरेस ने 106वें मिनट में दागा। इस बार स्पेन ने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीती बल्कि व्यक्तिगत अवार्ड्स पर भी अपना दबदबा कायम रखा। टीम के कप्तान और मिडफील्ड के मास्टर रोड्री को पूरे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और उन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। वहीं फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे भले ही अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने 10 गोल दागकर गोल्डन बूट अपने नाम किया। इसके साथ ही वह लगातार दूसरी बार विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। स्पेन की गोलकीपर उनाई सिमोन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। उन्होंने पूरे विश्व कप में 7 क्लीन शीट रखी और कई महत्वपूर्ण मौकों पर टीम को गोल खाने से बचाया। उन्हें गोल्डन ग्लव से सम्मानित किया गया। फीफा विश्व कप के समाप्त होने के तुरंत बाद खेल प्रेमियों के लिए 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2 अगस्त तक हुआ। इस बार इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिताओं के लिए आधिकारिक शुभंकर फिन्नी द यूनिकॉर्न बनाया गया। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ 10 खेलों को ही शामिल किया गया था, जबकि पिछली बार इसमें कुल 19 खेल थे। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, निशानेबाजी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती जैसे खेल इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं थे। बर्मिंगम 2022 में भारत ने इन्हीं खेलों में 30 मेडल जीते थे। बर्मिंगम 2022 में 210 एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि ग्लासगो में कुल 125 खिलाड़ी भारत की ओर से गए थे। ऐसे में इस बार का प्रदर्शन शानदार माना जा रहा है। भारत के लिए 7 स्वर्ण समेत सबसे ज्यादा 10 पदक मुक्केबाजी में आए, जबकि एथलेटिक्स ने भी हमें कुल 10 पदक जिताए। भारोत्तोलन में 8, जूडो में 4 और पैरा खेलों में कुल 7 पदक मिले। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइकिलिंग, लॉन बॉल्स और तैराकी में हमारे हाथ खाली रहे, जबकि नेटबॉल और बास्केटबॉल में हमारे देश से कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं गया था। बास्केटबॉल के महिला व्हीलचेयर इवेंट में जरूर हमारी टीम थी, लेकिन ये टीम एक भी मुकाबला जीते बिना ही पहले चरण से बाहर हो गई। 32 सदस्यीय एथलेटिक्स दल में सर्वेश कुमार ऊंची कूद, गुलवीर सिंह 10,000 मीटर, श्री शंकर मुरली लंबी कूद, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, प्रवीण चित्रवेल ट्रिपल जंप ने चांदी जीती, जबकि गुलवीर सिंह 5,000 मीटर, सिल्वा प्रभु ट्रिपल जंप, यशवीर सिंह भाला फेंक, तेजस्विनी शंकर डिकातलान और सीमा कालीरमण चक्का फेंक ने कांस्य पदक जीते, जबकि 14 मुक्केबाजों में से साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घंगस, अरंधुति चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश पंधाल ने सोना जीता, जबकि नरेंद्र बरवाल, जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहाई ने चांदी जीती। 14 सदस्यों वाले जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 12 सदस्यों वाले भारोत्तोलन दल में मीराबाई चानू और ऋषिकांत सिंह ने स्वर्ण, जबकि राजू मुत्तु पांडी, ज्ञानेश्वरी यादव, अजय बाबू, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह ने रजत पदक और विद्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता। इनके अलावा पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनगढ़ ने शॉटपुट F57 में स्वर्ण, जबकि मोहम्मद बासिल 100 मीटर T47 में रजत पदक के विजेता रहे। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार और महिला शॉटपुट F57 में शिल्पा शाइला ने कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया 166 पदक लेकर पहले

0: स्थान पर रहा। इंग्लैंड कुल 108 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। कनाडा 61 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। चौथे स्थान की रेस में भारत ने बाजी मारी। भारत ने 39 पदक हासिल किए, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा, जबकि स्कॉटलैंड ने कुल 13 पदक और नाइजीरिया ने 10 पदक जीते। भारत का माइपे ओपन में 18 साल से चल रहा खिताबी सूखा रविवार को 17 साल की तन्वी ने खत्म कर दिया। पंजाब की इस युवा शटलर ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब महज 36 मिनट में जीत लिया। तन्वी ने ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त शटलर थुए लिन्ह न्यूगेन को सीधे गेमों में 2-0 से एक तरफा मात दे दी। पिछले साल US ओपन सुपर 300 के फाइनल में चूक गई तन्वी के सामने विश्व नंबर 21 किसी भी पल ठहरती हुई नजर नहीं आई। इस जीत के साथ ही तन्वी BWF सुपर 300 टूर्नामेंट जीतने वाली महज चौथी भारतीय महिला बन गईं। केवल 17 साल 222 दिन की तन्वी ताइपे ओपन खिताब जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। वहीं तन्वी ने कोरिया के ली योंग डे का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो 2006 में मेंस डबल्स के फाइनल में खेलते समय 17 साल 287 दिन के थे। इसके अलावा तन्वी एशियाई टीम चैंपियनशिप का इकलौता खिताब जीतने वाली भारतीय टीम में भी रह चुकी हैं। श्रीलंका के गाल में चल रहे विश्व चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए प्रयास कर रही भारतीय टीम ने श्रीलंका दौरे पर 5 दिन अभ्यास किया और 3 दिन अभ्यास मैच खेला, जिसका फल उसे गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 165 रन की जीत के रूप में मिला। 372 रनों के असंभव लक्ष्य को हासिल करने उतरी श्रीलंकाई टीम के लिए कप्तान धनंजय डिसिल्वा 59 और पिछले मैच के शतकवीर सोनल दिनुषा 84 ने 5वें विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी करके भारतीय आक्रमण को रोकने की कोशिश की। पहले कप्तान और उसके बाद डिकवेला के आउट होते ही मानव सुथार ने यहां श्रीलंकाई किले को ऐसे ध्वस्त किया जैसे 26 दिसंबर 2004 में सुनामी ने गाल फोर्ट को ध्वस्त किया था। इसी के साथ भारत ने अपने 600वें टेस्ट मैच में शानदार जीत हासिल की। श्रीलंका के विरुद्ध भारत को मिली शानदार जीत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बूस्टर डोज का काम किया है। श्रीलंका पर जीत के बाद भारत की जीत का प्रतिशत बढ़कर 53.33 हो गया है। हालांकि अंक तालिका में भारतीय टीम की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह 5वें स्थान पर भी है। इस जीत से पहले भारत का जीत प्रतिशत 48.15 था। इस जीत ने भारत की WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जरूर मजबूती मिली है। विश्व कप हॉकी में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह और स्ट्राइकर अभिषेक के 2-2 गोल की बदौलत भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध अपना एक दशक लंबा अजय अभियान जारी रखते हुए FIH विश्व कप के पूल डी के हाई वोल्टेज मुकाबले में 5-3 से जीत दर्ज की और दूसरे दौर में प्रवेश किया। इस हार के साथ ही पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में अभियान ही समाप्त हो गया है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के संक को यहीं विराम। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुतकर्ता थे OP सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, पेश है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को रेणु कोटनाला का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में। कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोताओं के मैसेजेस हमें मिलने शुरू हो गए हैं और अगर श्रोताओं अभी अभी आप हमसे पहली बार जुड़े हैं और चाहते हैं कार्यक्रम में हमसे जुड़ना और अपनी पसंद का गीत सुनना तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9457078288 पर। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत। तो आइए लेते हैं कार्यक्रम का पहला मैसेज जो कि हमें मिला है शिवाजी चौक कटनी से। अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू सोना, मोना हनी, यश और उनके मम्मी पापा। और ये फरमाइश हम तक पहुंची है

संघ मित्र श्रोता संघ से वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से श्रोता हैं जयराम सिंकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार और इनके परिवार के सभी सदस्य। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। और मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी और बाबू अंसारी। फरमाइश करते हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जी एस नायक और शोभा नायक के साथ डागला परिवार के सभी सदस्य। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून फरमाइश करती हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से और कार्यक्रम का ये गीत सुनना चाहा है नई बस्तीगंज डुंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद करीम अंसारी ने। और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल और मलकापुरा महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोरहेकर और इनके सभी साथी। तो हमारे इन सभी श्रोताओं के साथ श्रोताओं आप भी सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है दोस्ताना।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म थी दोस्ताना। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, यशुदास का गाया हुआ, फिल्म है सुनैना, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप सभी श्रोता, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दगी, रजा रियाज, रिफाकत मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक और विनोद पुरी के साथ हैं जयपाल यादव, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसी, पलक लुबना और यश मंसूरी, चतुपुर कुंदरकी से मोहम्मद मुनाजिर खां, फिरासत फारूकी, मुआज़ मुस्तफ़ा और गौसिया भी। फरमाइश हम तक पहुंची है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। गंज डंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अब्दनान खान, फैजान खान और अनु खान। कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान और सादिक अली खान। फरमाइश करते हैं रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से बीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रिदान खुराना। लक्सर रोड गांव सोहाड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद

मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का आपकी फरमाइश। श्रोताओं, अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गीत कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9457078288 पर। इस नंबर पर आपको अपना नाम लिखना है और कहाँ से आप हैं आपको अपना पता भी लिखना है और जुड़ जाइए हमारे साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और एक श्रोता का मैसेज हम तक पहुंच गया है, ये है बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव और श्रोताओं के नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी दोबारा से श्रोता मैसेज कर रहे हैं। प्लीज़ श्रोताओं ऐसा ना करें, बाकी श्रोताओं के भी नाम पढ़ने हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत और अंकित कांगड़ा हमें फरमाइश करते हैं। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे यादव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव देशमुख, जगुताई राजे यादव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश, सर्वधर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। ये फरमाइश हम तक पहुंची है मास्टर किल्लू परवेज बेगम, इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव की गंज डिंडवारा उत्तर प्रदेश से। मोहल्ला ख्वाजा नगर कुंदरकी से जाकिर खान, नाजिम खान, शेब खान, जिक्रा नूर और अरीब खान के साथ हैं सदैया फातिमा। कुंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली और इनके सभी साथी। शेरवानी स्कूल गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह, अनारकली बाजार जगराव से। और श्रोता दोबारा मैसेज कर रहे हैं फरमाइश के लिए। ये फरमाइश आई है भाई रफत साहब, सईद मंसूरी, फिरोजा मुस्कान की और ये मैसेज हम शामिल कर चुके हैं। गांव हीरावाली फजल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, राम राम जी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोग्राम लाइव सुन रहा हूं। तो लीजिए आपका मैसेज भी हमने कार्यक्रम में शामिल कर दिया। ये मैसेज आया है गनगोला दातागंज जिला बदायूं से, इसरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, सबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्रामोगाला जिला अम्बाला हरियाणा से, अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डाबे राव और इनके सभी साथी, वर्निंग खेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और ये फरमाइश आई है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम केट कासगंज से, मोहम्मद असलम सैफी, जैबोनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान की। हमारे इन सभी श्रोताओं के साथ श्रोताओं भी सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म घर से। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत आर डी बर्मन का।

बच्चों, तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9457078288 पर। और लगातार मैसेज श्रोताओं के हम तक पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए मैसेज हमें आया है ग्राम गदारोना से। मदन गिरी, बिमला गिरी, बलराम गिरी, भरत गिरी, मधु गिरी, सोनिया गिरी, गोविंद गिरी, सिमरन गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी का ये फरमाइश आई है। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और इनके सभी साथी, योगनगर बुढ़लाड़ा पंजाब से नरेंद्र मेहता, सुनीता मेहता, हनी मेहता, सिमरन मेहता और प्रेमलता मेहता, राजेश खन्ना, चिन्ना आपासी, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना और अमित खन्ना के साथ हम ये फरमाइश करते हैं। तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट से और ये फरमाइश हम तक आई है। कमाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षित, अभिषेक श्रीवास्तव की, बिशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाठी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और बी आर खेड़ा, वाणी खेड़ा, जीवन सिंह और खेड़ा परिवार के सभी सदस्य, फजल का पंजाब से, नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान वर्ली मुंबई से दोबारा मैसेज कर रहे हैं। रुत जवां जवां, देखिए फरमाइश आपने भेजी है लेकिन अभी तो हम ये गीत नहीं सुनवा सकते, आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अपने श्रोताओं को। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में दिले नादान फिल्म से, गीत नक्श लयालपुरी का और संगीत खयाम का। तो आप सभी श्रोता सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: ये फरमाइश हम तक पहुंची है ग्राम नंगला उभन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, क्रीदा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम, देवा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। मलियाना सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या और अविरल सिंह, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, पहाड़गंज, मुल्तानी, डांढा से और ये फरमाइश आई है कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा की, मजनू का टीला से। तो श्रोताओं, उम्मीद है आप सभी ने अपनी पसंद के गीत सुन लिए होंगे। अगर किन्हीं श्रोताओं के नाम कार्यक्रम में शामिल होने से रह गए हैं तो अगली बार हम आपके नाम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं के मैसेजेस और पत्रों को कार्यक्रम में शामिल किया जाए। तो ये था आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया था फिल्म दिले नादान से, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। और अब इस गीत के साथ ही आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। रेणु कोटनाला को नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा

0: गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across